ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸੱਤੇ ਸਤ ਪਣੀਐ ਦੂਸਰਿਆਨ ਨਾ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪਉ ਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ।

बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पहावै देहु दर्श मन चाओ भगत इहो मन ठहरावै बलियो चिराग अंध्यार मह सब कल उधरी एक नाम धर्म प्रगट सब

पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहो अगम अपार हो श्री पतनाथ शरण नानक जन श्री पतनाथ।

रोग दुख अगमो छिदे हर नाम खग। उद्दम कर लागे बहु भांति, उद्दम कर लागे बहु भांति, बिचरह अनक शास्त्र बहु खटुआ, भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते, सूख मुंदे बंद है बहु जटुआ, बिन हर भजन।

मुन जन गावे अचल छला गावे गुण तोम अटल मंडल वे भगत पाए रस जाने कब कल सुजा

जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाने जप।

गुर अमर गुरु श्री सत, कल युग राखी पत, अगहन अगन देखत गात, चरण कवल जास। गुर

पुन दुखन नास सुखदायक सूरौ जो धरत ध्यान बस तेह नेरे पूरौ पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।

संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। फुन गुरु जल बिमल अथा मज्जन करहो, संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। सदा निर्वैर निरंकार निरभउ जपै, प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुग्ध मन भ्रम तजहो।

खेल गूढ़ो कियो हर राय संतोख समाचर्यो विमल बुद्ध सतगुर समाणो आजोनी संभव्यो।

जिनको पूर्व लिखिया तिना भेटिया गुरु गोविंद, नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद। सतगुर सेवन अपना गुर शब्द विचार, सतगुर का पहना मन लैन, हर नाम रख है।

सुहाग है मस्तक मणि लिखिया, हर हर नाम उरत हरिया, हर हृदय कमल प्रगास। सतगुर सेवन

उत्तम नीच हुकम लिख दुख सुख पाए इकना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाए हुक्म अंदर।

दूर कथना कथना आवे टोट कत कत कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे।

के अग्गै रखिए जित दिसै दरबार, मोह के बोलन बोलिए जित सुन करे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवे जानिए सब आपे सच्यार, खापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सो।

गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा इक दे बुझाई सबना जिया।

मत विच रतन जवाहर माणिक। जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता तो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानिए नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जप कीरत जगले, जे तिस नजर ना आवई ता बात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे, सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने तरप तवले आकाश। सुने दीप लो पाताल सुने पोह न सके काल, नानक भगता सदा विदास सुने दुख पाप का नाश। सुने ईसर बर्मा इंद सुने मुख सलाहन मंद, सुने जोग जुगत तन पेद सुने शास्त्र सिमरत वेद। नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश। सुने सत संतोष ज्ञान सुने अथट का स्नान, सुने पड़ पड़ पावे मान सुने लागे सहित्यान। नानक भगता सदा विगास।

नानक जे को आपो जाने अगै गया ना सो है। पाताल पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन इकवात सैस अठारे कहन कतेबा अपनू इक तात लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला है एती सुरत न पाया नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद ना जानिए।

गिरहा से ती माल तन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो न विसरे। अंत न सिकती कहना अंत अंत ना करने देन ना अंत अंत ना देखन सुनन ना अंत अंत ना जापे क्या मन मंत अंत ना जापे कीता आकार अंत ना जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो।

ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना समाए, केते मंगे जोद अपा।

जोर, जोर ना मंगन देन ना जोर, जोर ना जीवन मरण नह जोर, जोर ना राज माल मनसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटे संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती छित्ती वार, पौन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवे निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जा पै जाए, तरम खंड का एहो तरम, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पौन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे कार्त करिये, रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी केतिया बाणी, केते पाप नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत नांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद, धर्म खंड की बाणी रूप, तिथे कार्त करिये बहुत अनूप, ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे, जे को कहे पिछे पछताए, तिथे करिये सुरत मत मन बुद्ध, तिथे करिये सुरा सिदा की सुद्ध, कर्म

ताके रूप ना कथने जाए ना ओहे मरे ना ठागे जाहे जिनके राम वसै मन माहे तिथे भगत वसै के लो करें आनंद सच्चा मन सोए सत खंड वसै निरंकार कर कर वेखे नजर निहाल तिथे खंड मंडल वर पंड जे को कथे

नानक कथना करड़ा सार, जट पहाड़ा तीर सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत चित ताल, करिए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पावन गुरु पानी पिता, माता तरस महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगी आया बुरे आया, वाचे तर्म हदूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया, गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल, सोदर राग आ

गावन सुधनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा तरम द्वारे। गावन सुधनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे।

त्या दर नाले दामन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर दामन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडत पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन सुर्ग मच पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठ कीरत नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे तेई तुदनो गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर के ते तुदनो गावन से मैं चितना आमन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सत साहेब साचा साची नाई है भी होती जाए न जाती रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखे की ता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष भावे सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पातशाहो सा पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवट वड्डा दिशा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा के ताके वड़चीरा रहा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई कह न जाई तेरी तिलवड़े आई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुदवे सिद्धि किने न पाया कर्म मिले ना ही ठाक रहाया आखन वाला क्या विचारा सिफती परे तेरे पंडारा जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक सच सवारन हारा आसा मेला पहला आखा जीवा विसरे मर जाऊं आखन औखा साचा नाओ साचे नाम की लागे पूख उत पूख है खाए चलिए दुख तो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नाए राव साचे नाम की तिलवट आई आप थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखन पाए वदा न होवे काट न जाए ना उमरे न होवे सोग देंदा रहे न चूके भोग गुण एहो होर नाही कोए ना को हुआ ना को होए जे

नानक नाम है बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड पाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित में उद्दम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंतु पाए, ताका रिजक आगे कर तरया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया। तू के कास्त हरिया रहा, जनन पिता लोक सुख बनता, कोई न किसकी धरया। सिर सिर रिजक समाहे ठाकुर, काहे मन पौ करया। उड़े उड आवे सह कोसा, तिस पाछे बचरे चरया। तिन कमन खलावे कमन चुगावे, मन में सिमरन करया। सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरया। जन नानक बल बल सद बल जाये, तेरा अंत न पारा वरया। रागास्ता में

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे सब त्यावे तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक को पुरुष समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे पुगता जी हम कुछ बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवे तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुकत पै जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी पगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे पगत सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक परे बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से पगत परे जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेचल करता सोई तुद आपे पावे सोई वर्ते जी तू आपे करे सोई तुद आपे सिरत सब उपाय जी तुद आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जनोई आसा मेला चौथा तू करता सत्यार मैं डासाई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी प्याया जिसनों कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गुआया सुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझी माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया।

खबर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, चित सरवर लै पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतक मूर मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हूं जति पति नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिनकू ना ही विसरिया, आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल करन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के, रहाओ जप तप संयम तर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हमनी।

आओ नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देवो सज्जन आ

छह गुर छह उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए हो कर राख वडाई तोए रहाओ रित्वे चस्या घड़िया पहरा थित्ती वारी माओआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के तेवेश राग तना श्री मैला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती रूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी राव सहस तव नैन नन नैन है तोय कहो सहस मूरत नन्ना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब में ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानन सब में चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत इस पावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारं को होए जाते तेरे नाए वासा रागौड़ी पूर्वी मैला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव

मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर दंडौत पुन वड्डा है। रहाओ साकत हर रस साधना जानिया, तिन अंतर हो मैं कंडा है। ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पावे, जम काल सहे सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पव खंडा है। अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नाम में ही सुख मंडा है। रागौड़ी पूर्वी मैला पंजवा, करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा। आगे बसन सुहेला, औद कटे दिन सुरहारे। मन गुरु मिल काज सवारे, रहाओ ए संसार विकार संसे में। तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एहो रस। अकथ कथा तिन जानी, जा को आए सोई बिहाजो। हर गुर ते मने बसेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे। बहुर न होए गो फेरा, अंतर जामी पुरख विधाते। सरदा मन की पूरे, नानक दास।

अगर चंदन लीप आवे चाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखे।

रंग पसाओ मत देख पूला विसर तेरा चितना आवे ना सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसर तेरा चितना आवे ना सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पूला।

हौ केवड आखानाओ। श्री राग महला पहला, लेखे बोलन बोलना, लेखे खाना खाओ, लेखे वाट चलाइया, लेखे सुन वे खाओ, लेखे सा लवाई है, पड़े के पुछन जाओ। बाबा माया रचना तो हो, अंधे नाम विसारिया, ना तिस एह

रोवन वाले जेतड़े सब बनने पंड पराल, सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए, कीमत किने ना पाया कहन ना वड्डा होए, साचा साहिब एक तू होर जिया के तेलो। नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्या स्यों क्या रीस, जिथे नीच

पर निंदा परमल मुख सुदी अग्न क्रोध चंडाल रस तस आप सलाहना ए कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामण।

कह कच नाम निवास, जित बोले पत पाये सो बोलिया परवान, फिका बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान, जो तिस पावे से पले होर के कहन वखान, तिन मत तिन पत तिन तन पल्ले, जिन हृदय रहा समाए तिनका क्या सालाना, अवर स्वाल्यो काए नानक नदरी बाहरे राचे दान ननाए। श्री राग महला पहला, अमल गलोला कूड़ का जित्ता देवन हार, मत्ती मरण विसारिया खुशी की ती दिन चार, सच मिलिया तिन सोफिया राखन को दरबार, नानक साचे को सत जान, जित सेवे सुख पाईए तेरी दरगह चले मान। रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा

कारमंदर खुशी नाम की नजर तेरी परवार। हुक्म सोई तुद पावसी होर आ

पार, गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार, तिद कर्म कमाइए आस अंदेशा होए, क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए, निज कर मैल पछाणिए नदर करे मल तोए।

मिले गुरमत पल्ले पाए सुर नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दर्जे पैदा जाए श्री राग महला पहला तन जल बल माटी।

हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगे मान राव। राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। नित एनस हर प्रभ सेवे।

जम मार करे खुलहान, मन मुख सुख न पाइए गुरमुख सुख सुवान, ऐसे तंग पिटाइए।

सो प्रभ सेज पतार। चारे अग्न निवार मर गुरुमुख हर जल पाए, अंतर कमल प्रगाशया अमृत पया अघाए, नानक सतगुर मीत कर सच पावे दरगे जाए। श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल, मन सच कसवटी लाई है तुलिए पूरे तोल, कीमत किने न पाई है रिद मानक मोल।

गुरुमुख पूर्ण न पावई, सच रत्ते सच भाए, साकत सच न भावई, कूड़े कूड़ी पाए, सच रत्ते गुर मेले है, सच्चे सच समाए, मन में मानक लाल नाम, रतन पदार्थ हीर, सच वखर तन नाम है, कट कट गहर गंभीर, नानक गुरमुख पाई दया करे हर हीर। श्री राग महला पहला, परने पाए ना विजवे, जे पवे दिसंतर देश, अंतर मैल ना

मिल सत्संगत हर पाए, गुरमुख हर निविलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलले सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो, सो अवगुण आवे जाए, जिस सतगुर पुरख न पेट्यो, सो पौ जल पचे पचाए। ए मान के जियो निर्मोल है, क्यों कौडी बदले जाए। जिना सतगुर रस

तैसी वस्त विसाहिए, जैसी निभ नाल अग्गे साव सुजान है, लैसी वस्त समाल। पाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर

तिन हर गुर दर्स न होए, खोटे जात न पत है खोट न सी जिस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए, नानक मन समझाई है गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रखिया।

मन के शान हर हृदय जमाए ले, क्यों पावस पद निर्वाणी काहे गर्भस मूड़े माया, पित सुतो सगल काल त्र माता, तेरे हो है ना अंक सखाया। रहाओ विषय विकार दुष्ट किरखा करे, इन तज आत्मे होए त्याई, जब तप संयम हो है जब राखे, कमल बिकसे मद आश्रमाई, बीस सप्ताह रो बासुरो संग्रह, तीन खोड़ा नित काल सारे, दस अठार में अपरम्परो चीने, कहे नानक इव एक तारे।

ऐब तन चुकड़ो इन मन मिलद को कमल की सार नहीं मूल पाई। पौर उस्ताद नित पाखिया बोले क्यों बूझे जाने बुझाई। आखन सुनना पौन की बानी इन मन रत्ता माया। खसम की नजर दिले पसंदे जिनी कर एक तियाया। ती कर रखे पन कर साथी नाव शैतान मत कट जाए। नानक आखे

आदमी जाने नाम खुदाई, जे बहु तेरा पढ़िया होवे को रह ना पढ़िए पाई। सोई काजी जिन आप तजिया।

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंज में आनो आपे वे सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस पा

आपे सच पावे तो सच, अंधा कच्चा कच न कच रहाओ, जाके रुख बिरख आ रहाओ, जे ही ताप ते हाथ नाओ, फूल पाओ फल लिखिया पाए,

सतगुरु मन कामना तीर्थ है, उसनु दे बुझाए मन चिंदिया वर पावना, जो इच्छा सो फल पाए, नाउ तिया।

जिना नाम अखुट अपार। गुर मिले नाम पाईए चूके मुह प्यास, हर सेती मन गबरिया कर ही मन उदास। जिन्ना हर का साध आया हो तिन बलिहारे जास, नानक नदरी पाईए सच नाम गुण तास। श्री राग महला तीजा, बो पेश कर परमाईए मन हृदय कपट कमाए। हर का मेल न पावे मर गुस्ता माए समाए, मन रे ग्रेही माए उदास। सच संजम करनी सो करे गुरमुख होए परगास। राव गुर के शब्द मन जीतिया गत मुक्त करे में पाए, हर का नाम त्याए सत संगत मेल मिलाए। जे लख स्त्रियां पोग करे नवखंड राज कमाए, बिन सतगुरु सुख न पावे फिर जोनी पाए। हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चित लाए, तिना पिछे रिद सिर फिरे ओ ना तिल ना तमाए। जो प्रभु पावे सोचिए अवर न करना जाए, जन नानक जीवे नाम ले हर देवो सहज सुवाए।

सेवा पवे सब थाए, पारस परसे पारस होए, ज्योति ज्योत समाए, जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मन पुखा पुखा मत करें, मत तू करें पुकार, लख चौरासी जिन श्री सबसे दे आधार, निरपौ सदा दयाल है सबना करदा सार, नानक गुरु।

चुप कट है परदास। मन मेरे हर हर निर्मल ध्याए, तुर मस्तक जिनको लिखिया से गुरुमुख रहे निवलाए। राव हर संतो देखो नदर कर,

नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदिन नाम त्याये सहजे नाम समाए। अंदर रचे हर सच सिओ रसना हर गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे भाए गुर सरनाई सुख लहे। अंदिन नाम त्याये रहाओ साचे मैल ना ला गई मन निर्मल हर त्याये। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए। मन मुख मैले मल परे हों मैं तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल ना उतरे मर जम्मे हुए खुआर। तातुर बाजी पलच रहे ना उर्वार न पार। गुरमुख जप तप संजमे हर के नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याये।

मन मुख मोए व्यापिया बैराग उदासी ना होए सबद ना चीने सदा दुख हर दरगे पथ खोए हों मैं गुरमुख खोए नाम रते सुख होए मेरे मन एनस पूर रही नित आशा सतगुर सेव मोह।

नानक शब्द रते हर नाम रंगाए बिन पै के ही लाग। श्री राग महला तीजा कर ही सौदा पाई है अंतर सब वथ होए खिन खिन नाम समालिए गुरमुख पावे कोए नाम निधान अकुट है वड पाग प्राप्त होए। मेरे मन ताज निंदा हो मैं अहंकार हर जियो सदा ते आए तू।

गुर प्रसादी मन वसै हों मैं दूर करे एहो मन तावत तां रहै जा आपे नदर करे पाई रे गुरमुख हर नाम से आए नाम निधान सद मन वसै महली पावै थाओ रहाओ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाओ बहु जोनी पौंदा फिरै ज्यों सुन्ये कर काओ गुरमति कट चान।

कृपा में लायन हर नाम वस्या मन आए पोते जिन कै पुन है तिन सत्संगत में लाए पाई रे गुरमत साच रहाओ साचो साच कमावना।

आए लाहा हर हर नाम मिले सहजे नाम समाए बिन गुरु महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुरु लोड़ लहो जिद्दू पाईए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक

अपना धर्म गवावे बूझे नाही अंधन दुख विहानी मन मुख अंध न चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा पजो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसे ता हर विसर न जाई रहाओ इहो शरीर माया का पुतला विच हो मैं दुष्टि पाई आवन जाना जम्मन मरना मन मुख पत गवाई सतगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलाई सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छे सो फल पाए जत सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए सदा आनंद रहे दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए जो सतगुर की शरण

पाई रे, गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ, लख चौरासी फेर पया कामन दूजे भाए, बिन गुर नींद ना आवई दुखी रहन विहाए, बिन शब्द फिर ना पाई है, बिरथा जन्म गवाए।

आए देख कुटुंब मोह लुबाना चलदियां नाल न जाई सतगुर सेव गुण निदान पाया तिस दी कीम न पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई अपने मन चित कहे कहाए बिन गुर आप न जाई हर जियो दाता भगत वचल है कर कृपा मन वसाई नानक सो

सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलिया आए गुर शब्दी सालाई है रंगे सह सुवाए सच्चे सच समाया मिल रहे न विछड़ जाए जो किछ करना सो कर रहा अवर न करना जाए चिरी विछुन्ने मेलियन सतगुर पन्ने पाए आपे कार कराए सी अवर न करना जाए मत तन रता।

अंत ना पाया जाए, कतनी बदनी ना पाई है, हों मैं विच्चों जाए, सतगुर मिले है, सद पैर चै, आप बसे मन आए, पाई रे गुरमुख बूझे कोए, बिन बूझे कर्म कमावणे।

देवन वाले के हाथ दात है, गुरु द्वारे पाए, जेहा की तुन तेहा हुआ, जेहे कर्म कमाए, जात सत संजम नाम है।

पाए गुर कै सबद जीवत मरे हर नाम वसै मन आए। सुन मन मेरे पाच सत गुर सरना गुर प्रसादी छुट्टी है बिख पवजल सबद गुर तरना। रहाओ त्रै गुण सभा तात है दूजा पाओ विकार पंडित पढ़े बंधन मोह बाधा ने बूझे बिखिया प्यार। सतगुर मिले तृप्ति छूटे चौथे पद मुक्त द्वार गुर ते मार।

गुर पाये हर नामो दे दृढ़ाए, बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए, मन मुख कर्म कमावणे दरगे मिले सजाए, मन रे दूजा पाओ चुकाए, अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए, रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे होमे क्रोध निवार, मन निर्मल नाम।

आप गवाए, हम दिन भगत करे सदा साचे की लिवलाए, नाम पदार्थ मन वस्या नानक सह समाए, श्री राग महला तीजा। जिन्नी पुरखी सतगुर ना सेवियो से दुखिए जुग चार, कर होंदा पुरख ना पछाणिया अभिमान मुठे अंकार, सतगुरु क्या फिटकिया मंग थके संसार, सच्चा शब्द ना सेवियो सब काज सवारनहार, मन मेरे सदा हर वेख

क्यों आया त्यों जाए। मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मो देसी जाए। सब किछ आपे आप है हौ मैं विच कहन ना जाए। गुर कै शब्द पछाणिए दुख हौ मैं विचों गवाए। सतगुर सेवन आपना हौ तिन कै लागो पाए। नानक दर सच्चै सच्यार है हौ तिन बलिहारे जाओ। श्री राग महला तीजा। जे वेला वक्त विचारिए ता कित वेला भगत होए। अंदर नामे रतिया सच्चे सच्ची सोए। एक तिल प्यारा विसरै भगत किने ही होए। मन तन शीतल साथ स्यों सास न बिरथा कोए। मेरे मन हर का नाम दियाए साची भगत तासी है। जा हर वसै मन आए रहाओ सहजे खेती राही है। सच नाम बीज पाए खेती जमी अगली मनुआ रजा सहज।

अपना पाओ तिन पायोन, जिन गुरु का शब्द विचार, सत संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार, दुबदा मैल चुकायन हर राख्या उरदार, सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार, मन मेरे हो मैं मैल पर नाल, हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारण हार, रहाओ सच्चे शब्द मन मोहया, प्रभ आपे लय मिलाए, अंदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए, ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ न पाए, जिनको पूरब लिखिया सतगुर पेटिया तिन आए, विण नावे सब डुमणी दूजे पाए खुआए।

मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए, सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना बिछड़े नानक गुरमुख होए।

तिना सुखे सुख विहाए। ज्ञान विहूनी पिर मुतिया पिरम न पाया जाए, अज्ञान मती अंधेर है बिन पिर देखे पुख ना जाए।

हम दिन रावे फिर अपना सहजे सच समाए रहाओ। शब्द रतिया सुहागणी सच्चे शब्द सिगार, हर वर पायन कर अपने गुर के हेत प्यार। सेज सुहावी हर रंग रवे भगत परे पंडार, सो प्रभ प्रीतम मन वसे जे सबसे दे आधार। फिर सालाहन अपना तिनके हो सद बलिहारे जा।

गुरमती नाम सलाही है, दूजा अवर न कोए रहाओ। धर्म राय नो हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार। दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास, मन जपे एक मुरार। तिनकी सेवा धर्म राय करे, तन सवारण हार। मन के विकार मनह तजे, मन चूके मोह अभिमान। आत्म राम पछाणिया, सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाईए, मन मुख फिरे दीवान। शब्द न चीने कथनी बदनी करे, बिख्या माए समान। सब किछ आपे आप है, दूजा अवर न कोए। ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। नानक नाम समाल तू, जित सेवे सुख होए। श्री राग महला तीजा। जग हो मैं मैल दुख पाया, मल लागी दूजे भाए। मल हो मैं तोती किवे ना उतरे, जे सो तीर्थ नाए। बहुविध कर्म कमा

गुर शरण आवे ता निर्मल होए, मनमुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए, मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मल हो मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजा।

नानक नाम ना विसरे सच्चे माए समाओ। श्री राग महला चौथा कर पहला, मैं मन तन बिरहो अत अगला, क्यों प्रीतम मिले कर आए, जा देखा प्रभ अपना प्रभ देखे दुख जाए, जाए पूछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिले मिलाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवरना कोए, हम मूरख मुगत शरणागति कर कृपा मेले हर सोए। रहाओ सतगुरु दाता हर नाम का प्रभ आप मिलावे सोए, सतगुरु हर प्रभ बुझिया गुरु जेवड अवरना कोए, हौ गुरु शरणाई टह पवा कर दया मेले प्रभ सोए।

तंग ना होए, कूड़ कपट किने न पायो, जो बीजे खावे सोए, सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास, प्रभ तुद्दो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो सावास, बिख पौजल डुब दे कड़ ले, जन नानक की अरदास, श्री राग महला चौथा, नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे

ना हो जीवा नाम ते आए, बिन नामे जीवन ना थी है, मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए रहाओ। नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुरु पास सतगुरु सेवे लग्या, कड रतन देवे प्रगास, तन वड़ पागिया जो आए मिले गुरु पास। जिना सतगुरु पुरख ना पेट्यो, से पागहीन बस काल, ओए फिर जोन पवाइए विच विस्ता कर विकराल, ओना पास दुआस ना पिटिए जिन अंसर क्रोध चंडाल। सतगुरु पुरख अमृत सर वड़ पागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की निवलाए। श्री राग महला चौथा, गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए, गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाए, हीरे हीर मिल बेदिया रंग चलू लेनाए, मेरे गोविंदा गुण गावा त्रिपत मन होए, अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मिलावे सोए रहाओ। मन रंगो वड पागियो गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो हों सतगुर के बल जाओ, बिन सतगुर हर नाम न लब्बे लख कोटी कर्म कमाओ। बिन पागा सतगुर नाम मिले कर बैठिया निकट नित पास, अंतर अज्ञान दुख परम है विच पड़दा दूर पयास, बिन सतगुर पेटे कंचन नासिए मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। सतगुर बोहित हर नाम है कित बिद चढ़िया जाए, सतगुर के पाने जो चले विच बोहित बैठा आए, तन तन वड पागी नानका जिना सतगुर ले मिलाए। श्री राग महला चौथा, हों पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे।

अहंकार करें अहंकारिया, व्याप्या मन की मत तिन प्रभु आप बुलाया, ना तिस जात ना पत सतगुर पुरख मिलाया, इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है, क्या मानस हो मैं रोए, जो हर जन पावे सो करे, दर फेर ना पावे कोए, नानक रता रंग हर सब जग में चानन होए। श्री राग महला पंजवा। मन बिलास बहु रंकना दृष्ट पूल खुशिया, छत्र तार बादशाहियां विच सहसे परिया, पाई रे सुख साध संग पाया, लिखिया लेख तिन पुरख विदाते, दुख सहसा मिट गया। रहाओ जेते थां सनंतरा तेते पव आया, तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया, हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया, सबको वसगत कर लेन बिन नावे खाक रलिया, कोट तेपी सेवका सिद्ध साधक दर खरिया, गिरमबारी वड साहेबी सब नानक सुपंथिया। श्री राग महला पंजवा। पलके उठ पपोलिए बिन बुझे मुगद अजान, सो प्रभ चित न आयो छुटेगी बेबान, सतगुर से ती चित लाए सदा सदा रंगमान, प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कित को पकड़े।

पंजवां कड़ी मौत का पाहुना काज सवारन हारे माया काम व्यापिया समझे नहीं गवार उठ चलिया पछताया परया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे हो भी पूरब लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ हरी नाही नै डडुरी पक्की वडन हार ले ले दात पहुत्या।

पया तीजे चाक चखाया चौथे पोर पया तद ही चितना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिससे सोजी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हर अंतर जामी जान। श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरन इको विसरना जाओ तंदा सब जलाए कै।

जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुरते महल प्राप्त जिस लिखिया हो वह मत मेरे मन एक स्यों चित लाए एक बिन सब तंद है सब मिथ्या मो।

सतगुर चरण गहे सफल मूरत सफला करी जिस सच्चे नाल प्यार दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार बाह पकड़ गुर का।

जपना आठ पहर प्रभ त्याय तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवर न कोए जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास सुख दाता पै पंजनो।

उपाव स्यान सगल छाड़े गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रव्याप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सहो में ताप नानक कहो गुर पेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का इको रखनहार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार। मन मेरे सगल उपाव त्याग गुर पूरा आराध नित इकस की लिव लाग रहाओ इको पाई मित इक इको मात पिता इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनो न विसरे जिन सब किछ वस कीता। कर इको बाहर इको थान थनंतर आप जी जंत सब जिनकी

जिना सतगुर से चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजे मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम। मन मेरे एको नाम से आए।

पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख वसिया मन आए अंतर जोत प्रगासिया एक स्यों लिवलाए मिल साधु मुख उजला पूरब लिखिया पाए गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचे नाए मेरे मन गुर शब्दी सुख होए गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए न कोए रहाओ मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निधान अंतर

पाया लाहा लाभ नाम पूरन होए काम कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम आवन जाना रह गया आप हुआ मेरवान सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार हलत पलत मुख उजने।

हो वड पागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर है सिरसाहा पास साहो चरण कमल का आसरा।

हर जपिए आ राजिए आठ पहर गोविंद। जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद। नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा। प्रीत लगी तिस सच स्यों मरे ना आवे जाए। ना वे छोड़िया विछड़े सब में रहा समाए। दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत भाए। अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए। पाई रे मीत करो प्रभ सोए। माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसे कोए रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार। सखा सहाय अत वड़ा ऊंचा वड़ा अपार। बालक बिरद ना जानिए।

हिरै मन तन होवे शांत, एक मन एक त्याय मन की लाए भ्रांत। गुण निधान नव तन सदा,

जात। जिनको पूरब लिखिया तिनका सखा गोविंद, तन मन तन अर्पी सबो सगल वारिय एह जिंद। देखे सुने हदूर सद

मन तन तन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार सर्व कला कर था प्या अंतर जोत अपार सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रख उधार मेरे मन हर बिन अवर न कोय प्रभ शरणाई सदा रहो दुख ना

मनमुख पसना पाक अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर भगती नाम विहुणिया आवे मंजे पूर राख ले हो प्रभ करणहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम पाया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हरमया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश सुतदारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश हर नाम हृदय न वसई कारज कित न लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी गुर चरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक हो वै पाग कारज सब सवारियां।

जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ। ऐसे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ, करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ, मार आपे जी वालदा अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा। शरण पए प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल, सतगुर के उपदेश है बिनसे सर्व जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार, रहाओ गुण गोविंद नित गाविए अवगुण कटन हार, बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्तार, सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार, तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर, लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर, थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा परपूर, सच पात साही अमर सच सच्चे सच्चा थान, सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान, नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा। उद्दम कर हर जापना वड़ पागी तन खाट, संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट, मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू, सब चूके सोग संताप, रहाओ जिस कारण तन तारिया सो प्रभ डिठा नाल, जल थल मैयल पूरिया प्रभ अपनी नजर निहाल, मन तन निर्मल होया लागी साच परीत, चरण पजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत, रतन जवे हर मान का अमृत हर का नाओ, सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ। श्री राग महला पंजवा। सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ, चरण कमल गुर तन दिया मिलिया निथावे थाओ, साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ, कर कृपा प्रभ पेटिया मरण न आवन जाओ, मेरे मन हर पज सदा एक रंग, कट कट अंतर रव रहा सदा सहाई संग, रहाओ सुखा की मित क्या गणी जा सिमरी गोविंद, जिन चाखिया से तृप्ता सिया ओह रस जाने जिंद, संता संगत मन वसे प्रभ प्रीतम बख्शिंद, जिन सेव्या प्रभ आपना सोई राज नरिंद, अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मज्जन स्नान, रसना उचरे गुणवती कोई न पुजे दान, दृष्ट तार मन तन वसे दयाल पुरख मेहरवान, जियो पिंड तन तिसदा हों सदा सदा कुर्बान, मिलिया कदे ना विछड़े जो मेलिया करतार, दासा के बंधन कटिया साचे सिरजनहार, पूला मार्ग पायुन गुण अवगुण ना विचार, नानक तिस शरणागति जे सगल कटा आधार। श्री राग महला पंजवा। रसना सच्चा सिमरिए मन तन निर्मल होए, मात पिता साथ अगले तिस बिन अवर न कोए, मेर करे जे आपनी चसा न विसरे सोए, मन मेरे साचा सेव जिचर सास, बिन सच्चे सब कूड़ है अंते होए विनाश, रहाओ साहिब मेरा निर्मला तिस बिन रह न जाए, मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए, चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर न जाए, तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुर दाता नाम का पूरा जिस भंडार, सदा सदा सालाही है अंत न पारावार, परवदगार सालाही है जिस दे चलत अनेक, सदा सदा आराध

करण कारण समरथ से मथे नहीं चल रहे जिन गुर तारिया हाथ गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ गुर परमेश्वर सेविया पै पंजन दुख लथ सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अगखंड जिन गुर सेविया अपना जमदूत ना लागे डंड गुर नाल तुल ना लगई खोज डिठा ब्रह्मंड नाम निदान सतगुर दिया सुख नानक मन में।

मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब का हाथ जा उठी चलसी कंकड़ा ता कोई ना पूछे तेरी बात। पेई रणै सौ सेव तू सौ रणै सुख वस गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सबना सोहरे वंजना सब मुकलावन हार नानक तन।

दुख कलेश ना पौ व्यापै, गुरु मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुरु बिन तरयो ना कोए, देख दर्शन मन साधारण है, पाप सगले जाहे, हौं तिनके बलिहारण है, जे गुर की पैरी पाहे, साध संगत मन वसे साच हर का नाओ, सेवड पागी नानका जिना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा। संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार, जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार, जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार। रहाओ काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे ए करनी सार, आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार, कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा। दुखरित सुकृत मंदे संसार सगलाना, दोहूं ते रहत भगत है कोई विरला जाना, ठाकुर सर्वे समाना, क्या कहो सुनो स्वामी तू वड पुरख सुजाना। रहाओ मान अभिमान मंदे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संतो कोई कोट मंदा ही, कहन कहावन एहो कीरत करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरुमुख कोई विरला, गत अविगत कछ नदर ना आया, संतन की रेण नानक दान पाया। श्री राग महला पंजवा। कर सतवा तेरे परोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, फूले चूके बाल तू हर पिता माया।

रहाओ। सतगुरु विटो वारिया जिन दिता सचनाओ, अंदिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाओ, सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ, सास गिरास ना विसरे सफल मूरत गुर आप, गुर जेवड अवर ना दिसई आठ पहर तिस जाप, नदर करे ता पाई है सच नाम गुणतास, गुर परमेश्वर एक है सब में रहा समाए, जिनको पूरब लिखिया सेई नाम ते आए, नानक गुर शरणागति मरे ना आवे जाए।

हुकम ना जापी केतड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ शायर मेली है तिल ना पुजावे रोए कीमत किने न पाया सब सुन सुन आखें सोए पीर पे कामर सालक साधक सौदे और शहीद शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तिन को अगली पढ़दे रहन दरूद पुछन ना साजे पुछ ना टाहे पुछ ना दे वैले अपनी कुदरत आपे जाने आपे करण करे सब ना वेखे नजर कर जय पावे ते दे थावा नाम ना जानी है नावा केवड़ नाओ जिथे वसे मेरा पासाओ सो केवड़ है थाओ अंबड़ कोई ना सकई हो किसको पुछन जाओ वरना वरन ना पावनी जे किसे वड़ा करे वड़े हाथ वड़े आईया जय पावे ते दे हुकम सवारे आपने चसा ना तिल करे सबको आखे बहुत बहुत लेने के विचार केवड़ दाता आखी है।

पाखंड प्रेम ना पाइए, खोटा पाज खुआर हर जियो त्यों फिर रावे नार। तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लहै सवार। रहाओ गुर शब्दी सिगारिया, तन मन फिर कै पास, दोए कर जोड़ खड़ी तकै।

मन वेदिया हो सद बलिहार जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुरु माए समाए फिर रिसालू नौतनो साचो मरे न जाए नित रवै सुहागणी साची नजर जाए साच तड़ी तन मांडिये कापड़ प्रेम सिगार चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहणी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावणी साचे प्रेम अपार बिन पिर पुरख न जाने साचे गुर कै हेत प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों पिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए जा तन कंत न राविया ता बिरथा जो बन जाए से जय कंत महेलड़ी सूती बूझ न पाए हौ सुती फिर जागना किसको पूछो जाए सतगुर मेली पैवसी नानक प्रेम सखाए श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथे आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचो मन महत तू आपे देवनहार हर जियो तू करता करतार ज्यों पावे त्यों राख तू हर नाम मिले आचार रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीत आपे मोती उजलो आपे भगत बसीठ गुर कै शब्द सलाहना कट कट डीठ अडीठ आपे सागर बोहे था आपे पार अपार साची वाट सुजान तू सब

मुख झूठे झूठ बोलना क्यों कर सूचा होए, बिन अब शब्द न मांझिए साचे ते सच होए, मुंदे गुणहीनी सुख के है पिर रलिया रस मानसी साच शब्द सुख ने है, रहाओ पिर परदेसी जेसी है तन वांडी चूरे, ज्यों जल सोड़े मछली करण पलाव करे, फिर पावे सुख पाईए जा आपे नदर करे, फिर साला ही अपना सखी सहेली नाल, तन सो है मन मोहया रत्ती रंग निहाल, सबत सवारी सोहनी फिर रावे गुण नाल, कामन काम ना आवे खोटी अवगणियार, ना सुख पेई है सहुरे झूठ जली बेकार, आवन

विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म न छुटसी कह सुन आख वखान सब गुणवंती आखिए मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं पावे प्रव सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधिए तीरथ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिन साचे क्या तास जेहा रा दे तेहा लुणे बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुणदासी सुख होए अवगण त्याग समाये गुरमत पूरा सोए रहाओ विन राशि वापारिया तके कुंडाचार मूल न बुझे अपना वस्त रही कारबार विन वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ियार लाहा एनस नौतना परखे रतन विचार वस्त लह कार अपने चले कारज सार वन जारिया स्यो वनज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाईए जे मेले मेलनहार मिलिया होए ना विछुड़े जिस अंतर जोत अपार।

त्रिभवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए। सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग, मैली मैल बुलाये सो पिर रावे रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग, पूली पूली थल चढ़ा थल चा डूगर जाओ। बन में पूली जे फिरा बिन गुर बूझ न।

गुरुमत पत सावा तिस तिस कै संग मिलाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवउ बिन नावे मर जाओ। मैं अंधले नाम ना विसरे टेक टिकी कर जाओ, गुरु जिना का अंधुला चेले नाही ठाओ। बिन सतगुरु नाव ना पाई है बिन नावे क्या सुआओ, आए गया पछतावना ज्यो सुनजे कर काओ। बिन नावे दुख देहोरी ज्यो कलर की पीत, तब लग महल न पाईए जब लग साच न चीत। शब्द रपे कर पाईए निर्बाणी पदनीत, हों गुर पूछो आपने गुर पुछ कार कमाओ। शब्द सलाही मन वसे हों मैं दुख जल जाओ, सहजे हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ। शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार, नाम सलाहन सद सदा हर राखे उर्धार। सो क्यों मनो विसारिय सब जिया का आधार, शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार। शब्द ही ते पाये हर नामे लगे प्यार, बिन शब्द जग पूला फिरे मर जन्मे वारो वार। सब साला है आपको वढो वडेरी होए, गुर बिन आप ना चीनिए कहे सुने क्या होए। नानक शब्द पछाणिए हो मैं करे न कोए। श्री राग महला पहला। बिन फिर तन सिगारिए जोबन बाद खुआर, ना माने सुख सेजड़ी बिन फिर बाद सिगार। दुख कणो दोहागणी ना कर सेज पतार, मन रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम ना पाईए शब्द मिले रंग होए। रहाओ गुर सेवा सुख पाईए हर वर सह सिंगार। सच माने फिर सेजड़ी गूड़ा हे प्यार, गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुणचार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साच विकसिया कीमत कह न जाए। हर वर कर सुहागणी निर्मल साचे नाए, मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार। इकत तागे रल मिले गल मोतियन का हार, संत सवा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाणे रव रहे ना तिस काल संताए। साहिब अतुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए, वापारी बन जा रहा आए वजो लिखाए। कार कमावे सच की लाहा मिले रजाए, पूंजी साची गुर मिले ना तिस चिल ना तमाए।

छुटी है ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच न पाइए बिन हर भगत प्यार नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले पाइए रतन विचार मन दीजे गुर आप

ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफल्यो बिरख हरियावला छाव कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार पवजल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार सतगुर पैका बोहे था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए जेवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए कट बिन सह दुख अगलो जम पकड़े पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ बिन नामे तन बाध है पूलो मार गयाथ साचो साहिब सेवी।

ताकी कीमत ना पवे, जे लोचे सब कोए, गुरमत होए ता पाये, सच मिले सुख होए। सच्चा निहो नाक तई, जे सतगुर ते तै सोए, ज्ञान पदार्थ पाए।

हमें मैल न जाए। सोहम आप पछाणिए शब्द तेज पति आए, गुरुमुख आप पछाणिए अवर के करे कराए। मिलिया का क्या मिलिए शब्द मिले पति आए, मन मत सो जीना पवे बिचर चोटा खाए। नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला, मन मत पुले पुलाइए पुली थौर न काए। गुरु बिन को ना दिखावे अंधी आवे जाए, ज्ञान पदार्थ खोया ठगिया मुठा जाए। बाबा माया परम पुलाए, परम पुली दोहागनी ना फिर अंक समाए। रहाओ पुली फिरे दिसंतरी, पुली द्रोह तज जाए। पुली डूंगर थल चढ़े पर में मन डोलाए, तुरो विछनी क्यों मिले गर्भ मुठी बिरलाए। विछड़िया गुर मेल सी हर रस नाम प्यारे, साथ सहज शोभा कणी हर गुण नाम आधार। ज्यो पावे क्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार। अखर पढ़ पढ़ पुलिये पेखी बहुत अभिमान, तीरथ नाता क्या करे मन में मैल गुमान। गुरु बिन किन समझाइए।

आसा अंदर जमिया आसा रस्त खाए आसा बंद चलाए मोहे मोहे चोटा खाए अवगुण बद्दा मारिए छूटे गुरमत नाए सर्वे खाई एक तू ज्यो पावे त्यों रास गुरमत साचा मन वसे नाम पलो पत साथ हो मैं रोग गवाई है सबत सच्चे सच

ज्यों पावे त्यों राख तू, मैं हर नाम आधार, मन रे साची खसम रजाए, जिन कन मन साज सिधारिया, तिस सेती निवलाए, रहाओ। तन दै संतर होमी है, इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी, अंदिन अगन जलाए, हर नाम में तुल न पुजई, जे लख कोटी कर्म कमाए, अर्ध शरीर कटाइए, सिर करवत धराए, तन है मंचल गालिए, ती मन के रोग न जाए, हर नाम में तुल न पुजई, सब जिथी ठोक बजाए, कंचन के कोट बत करी।

ऊंचो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तिस पास, गुरमुख अंतर जानिया गुरमेली तरियास। पाई रे पाउजल बिखम डराओ, पूरा सतगुर रस मिले।

गुरुमुख कृपा करे भगत की जय, बिन गुरु भगत न होए। आपे आप मिलाए बूझे, ता निर्मल होवे कोई। हर जियो सच्चा सच्चा।

आओ आपे हर जग जीवन दाता आपे बख्श मिलाए जी जंत एक क्या विचारे क्या को आप सुनाए गुरुमुख आपे देव आए आपे सेव कराए देख पुटंब मोह लुभाना चल दिया नाल न जाए सतगुरु से गुण निधान पाया किसकी कीम न पाई प्रभ सखा हर जियो मेरा अंते होए सखाई तेरी अड़े जग जीवन दाता मन मुखपत गवाई बिन सतगुरु को मग न जाने अंधे छौर न काई हर सुख दाता मन नहीं वस्या अंत गया पछताई तेरी अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया हम दिन भगत करें दिन राती हूँ मैं मोह चुकाया जिस्यों राता कैसो हो गए सच्चे सच समाया आपे नदर करे पाओ लाए गुर शब्दी विचार सतगुर सेवे सहज उपजे हूँ मैं तृष्णा मार हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उधार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए नाम निधान हर मन वसे हो मैं दुख सब जाए सतगुर शब्द सुनाया हो सद बलिहार जाऊं अपने मन चित कहे कहाए दिन गुर आप ना जाए हर जियो भगत वचन सुख दाता कर कृपा मन वसाई नानक शोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरुमुख दे वलियाई श्री राग महला तीजा हो मैं कर्म कमाव दे जम दंड लगे तिन आए जे सतगुर सेवन से उबरे हर सेती लिवलाए मन रे गुरमुख नाम ते आए गुर पूरब करते लिखिया किना गुरमत नाम समाए रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई नाम ना लागो पाओ सुपने सुख ना पावई दुख में सवे समाए जे हर हर की कै बहुत लोची है किरत नामे ते आ जाए हर का पाना भगती मनिया से भगत पे दर खाए गुर शब्द दिलावे रंग स्यों बिन कृपा ले आना जाए जो सो अमृत नीरी है पी दिख फल लागे ताए से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुरु नाल प्यार सतगुरु का पाना

हर का नाम निधान है, जिस अंत ना पारावार, गुरुमुख से ही सो दे जिन कृपा करे करतार। नानक दाता एक है दूजा और न कोए, गुरु प्रसादी पाए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा पंखी दीर्घ सुहावना, सच चुग गए गुरु।

ना अमृत फल पाए। गुरुमुख ब्रह्म हरियावला साचे सह सुवाए, साखा तीन निवारिया एक शब्द निर्लाए। अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना चाओ, तिन्ना पास ना बहती है ओना कर ना गिराओ। कटिया तै नित जालिए ओना शब्द ना नाओ। हुक्मे कर्म कमावने पए किरत फिराओ, हुक्मे दर्शन देखना जह ते जह तह जाओ। हुक्मे हर हर मन वसे हुक्मे सच समाओ। हुक्म ना जाने बपुड़े पूले फिरे गवार, मन हट कर्म कमाऊं दे नित नित होए कुआर। अंतर शांत ना आवई ना सच लगे प्यार। गुरमुखिया मोह सोहने गुर के हेत प्यार, सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्यार। आए से परवा

नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा। गुरुमुख नाम से आये मनमुख बूझ न पाए, गुरुमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही सुख पाये सहजे रह समाए, पाई रे दासन दासा होए। गुरु की सेवा गुरु भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुरु भाए, सदा फिर नहीं चल पाये ना ओ मरे न जाए। शब्द मिली ना बिछड़े फिर कै अंक समाए, हर निर्मल अप उजला बिन गुरु पाया न जाए। पाठ पढ़े ना बुझई तेती परम पुलाए, गुरुमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरुमति सह सुवाए, बिन सबद जग दुखिया फिरे मन मुखानो गई खाए। सबदे नाम ते आये सबदे सच समाए, माया पूले सिद फिरे समाग ना लगे सुवाए। पीने लो व्यापत है अधिक रही लपकाए, बिन गुरु मुक्त न पाए।

आए बिन शब्द परम न चूके न विच्चों हो मैं जाए बिन प्रीति भगत न हो वही बिन शब्द छाए न पाए शब्दे हो मैं मारिए माया का परम जाए नाम पदार्थ पाइय गुरमुख सह सुवाए बिन गुर गुण न जापनी बिन गुण भगत न होए भगत वसल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए नानक शब्दे हासा लाही है करम प्राप्त होए श्री राज महला की जा माया मोह मेरे प्रभ कीना आके परम पुलाए

ना मिलते पाई। दैत पुत कर्म तर्म किस संजम ना पड़े, दूजा पाव ना जाने। सतगुर पेके निर्मल हुआ, अंधन नाम बखाने। एको पड़े एको नाव बूझे, दूजा अवर न जाने। खट दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम पुलाए। सतगुर सेवे ता गत मित पावे, हर जियो मन वसाए। सच्ची बाणी सोचित लागे, आवन जान रहा है। पंडित पर पढ़वा।

सतगुरु मिले फेर ना पवे जन्म मरण दुख जाए। पूरे शब्द सब सोजी होई हर नाम रह समाए। मन मेरे सतगुरु से चित लाए निर्मल नाम सद नवतनो आप वसे मन आए। रहाओ हर जियो राखो अपनी शरणाई ज्यो राखे त्यों रहना। गुर कै शब्द जीवत मरे गुरमुख पव जल करना। वड्डे पाग नाउ पाईए गुरमुख शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहा समाई। इतना मनमुख शब्द न पावे बंधन बंद पवाया लख्यो राशि फिर आवे दिसा जन्म गवाया। पगता मन आनंद है सच्चे शब्द रंग राते अंगिन गुण गावे सब निर्मल सहजे नाम समाते। गुरुमुख अमृत बाणी बोले सब आत्म राम पछाणी एको सेवन एक आराधे गुरुमुख अकथ कहानी। सच्चा साहिब सेवी है गुरुमुख वसे मन आए।

का तान आए न जाई फिर सदा गुर सब जी सच जान रहाओ जो को होवे दुबला नंग पुख की तीर दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे तीर स्वार्थ स्वाओ ना को करे।

विचरे तपे तपीसर जोगिया तीर्थ गमन करे खट कर्मा के दुगने पूजा करता नाए रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलक सिकदारिया रस ओगन विस्तार बाग सुहावे सोने चले हुक्म अपार रंग तमाशे बहुविधि चाहे लग रहा चितना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाद अचार वंत शोभा निर्मल रीत मात पिता सुत

एक लूक न देवे दर्शा, एक मन ही जाता काट ना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया जिसमें ले सो पगता, सगल उकत उपावा त्याग शरण पावा, नानक गुरचर।

चुकाया। नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो। सतगुर मिले फल पाया जिन विचों ए करन चुकाया। दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो। अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतार रह समा।

सतगुरु बाज न पायो सब सच्ची कर्म कमाए जियो। औ सतगुरु विटो कुमाया जिन परम पुला मार्ग पाया, नदर करे जे आपनी आपे लहर लाए जियो। तू सबना माहे समाया तिन करते आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया जाको जोत करी सरकार जियो। आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया, अपने सेवक की तैज रखिया दोए कर मस्तक तार जियो। सब संजम रहे स्यान पा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो सब लोक करे जयकार जियो। मेरे गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरज समारिया, कंठ

निर्मल ज्योत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगियाया मैं रात दिह वडियाया

मन चिंदी सो फल पाईंदा सबे काज सवारियन लायन मन की भुख जियो मैं सदिया सबो तंगड़ा दोसाई सेवी सचड़ा नौ निज नाम निदान हरे मैं पल्ले बद्दा छिक जियो मैं सुखी हूँ सुख पाया गुर अंतर समद वसाया सतगुर पुरख विखा लिया मस्तक तरके हाथ।

لگا پائے جیو۔ سن گلاں گر کہ آیا، نام دان اس نام دڑایا،

हर लोचा पूरन मेरिया देहो दर सुख दात्या मैं गल विच लेहो मिलाए जियो तुद जेवर और न पालिया तू दीप लोक पयालिया तू थान सनम कर रव रहा नानक भगता सच आधार जियो हौ गोसाई दा पहलवानड़ा मैं गुरमिल उच दुमानड़ा सब होई छिंज इकट्ठिया दे बैठा बैठे आप जियो वात वजन तमक तेरिया मल लखे लेंदे तेरिया नेते पंच जवान मैं गुर थापी दित्ती कंड जियो सब इकट्ठे होए आया कर जासन वात वटाया गुरमुख लाहा ले गए मनमुख चले मूल गवाए जियो तू वरना चेहना बारा हर दिसे हाजिर जाहरा सुन सुन तुझे ते आएंगे तेरे भगत रखे गुणतास जियो मैं जुग जुग दया सेवड़ी गुर कट्टी मेहंदी जेवड़ी हौ बाहड़ छिंज ना नचू नानक अवसर लग

तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा ना मर जाद आया कल पीतर बाहुर जासी नागा जैसी कलम बुड़ी है मस्तक तैसी जीड़े पास कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुकुम पया गरवास दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान हथो हथ नचाई वन जा रहा मित्रा ज्यो जसदा कर कान हथो हथ नचाई प्राणी माप कह सुत मेरा चेत अचेत मूर मन मेरे अंत नहीं कच तेरा जिन रच रचिया तिसे न जाने मन भीतर कर ज्ञान कहो नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया ध्यान तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा तन जोबन स्यो चित हर का नाम न चेत ही बन जा रहा मित्रा बद्दा चुके जित हर का नाम न चेत प्राणी विकल पया संग माया तन स्यो रता जोबन मता अहला जन्म गवाया धर्म से की वापार ना की तो कर्म ना की तो मित कहो नानक की जय पहरे प्राणी तन जोबन स्यो चित चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा लावी आया खेत जा जम पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा किसे न मिलिया पेट पेट चेत हर किसे न मिलियो जा जम पकड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दो आले खिन में पया पराया साई वक्त प्राप्त हो।

ज्ञान ज्ञान गुण संयम नाही जन्म मरोगे झूठे। कीरत वर्त सुच संयम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा।

चोट न खावे ना किस जमन मरना काल जाल जम जोहे न साके पाए भगत पै तरना पप छेती जावे सहल समावे सगले दुख मिटावे कहो नानक प्राणी।

तन चितवै तन संचवै वन जा रहा मित्रा हर नामा हर ना समाल हर नामा हर हर कदे ना समाल जे होवे अंत सखाई त्यो तन संपै माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछताई जिसनो कृपा करे गुर मेले सो हर हर नाम समाल।

वो पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्रा सब चली रहन विहांदी हर सेवो खिन खिन टिल मूल न करे हो जित अस्थिर जुग जुग हो वो हर से ती सद मानो रलिया जन्म मरण दुख खो वो गुर सतगुर स्वामी पेद न जानो जित मिल हर भगत।

कर्म कमाने जैसा लिख तुर पाया, मात पिता पाई सुख बनता तिन पीतर प्रभु संजोया। कर्म सो कर्म कराए आपे इस जनते वस किछ न

काम से आया। हर पुरुख ना कभी बिन सह जावे, नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सुहंदी, हर राम।

मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम समा ले। मन प्यारिया जी मित्रा हर निभै तेरे नाले। संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई न जाए। मन सिंधे से ही फल पावे चरण कमल चितलाए। जल थल पूर रहा बनवारी कट कट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग प्रम जाले।

आठ पहर प्रभ जापे। आप जुगादि सेवक स्वामी पगता नाम आधारे, नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे।

मिले हो आपे ही आप मोहे हो जस नानक आप सुनियो हो संत प्रेम खगौरी पाए रिजाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दो सब जोया भगत लखन कर वस भये मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच्छ पुजाया बहुड़ न माया होया कर गैली ने नानक प्रभ प्यारे संसार सागर नहीं पोया दखना साईं नाम अमोल।

सब तन लिखती कुल तारिया जियो, जिनको साधु संग नाम हर रंग, तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो। ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया, पूरन कृपा प्रभ करी, कर गहली ने हर जसोदी ने, जोन ना पावे नह मरी। सतगुर दयाल कृपाल पेटत हरे, काम क्रोध लोभ मारिया, कथन न जाए अकस स्वामी, सद कह जाए ना।

हर हर उत्तम नाम है जिन श्रेया सब कोई जियो। हर जी सबे प्रतपाल दा कट कट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर न कोए। जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए। मैं हर दिन अवर न कोए। हर गुरसरण आई पाई है मन जारिया मित्रा। वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाया हर किने न पाया नाओ। विच हो मैं कर्म कमाव दे ज्यों वेसुआ पुत ने नाओ। पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाओ। वद पागी गुर पाया हर एनस लगा पाओ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ गुर पूरे नाम दृढ़ाया। हर मिलिया हर प्रभ नाओ रहाओ। जब लग जोबन सांस है तब लग नाम से आए। चल

नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए। दुर्मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम से आए। मन हर हर प्रीत लगाए वडपागी गुर पाया गुर सबदी पार लगाए। रहाओ हर आपे आप उपायदा हर आपे दे वैले हर आपे परम पुलायदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन प्रगास है से विरले के ही के। हौ बलिहारी तिन कौ जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल प्रगासिया मन हर हर उठड़ा है। मन हर हर जपन करे हर गुर शरणाई पज पो। जिंदु सब किल विख दुख पर हरे। रहाओ कट कट रमैया मन वसे क्यों पाये कित पत। गुर पूरा सतगुर पेटिए हर आए वसे मन चित। मैं तार नाम आधार है हर नाम में ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नाम में ही जत पत। जन नानक नाम से आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरु बचनी हर प्रभ जानिया। सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिनको पूरब लिखिया से आए मिले गुर पास। सेवक पाए बन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वणज वपारिया जिन वखर लगेड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया जिना आप तुखा गुणतास। हर त्यावो सांस गिरास मन प्रीत लगी।

जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै नेचल मत अपार रतन अमोलक पाया गुरखा शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर आकार नानक सच्चा सतगु सेवे है सदा सच व्यापार महला तीजा और बिरहा सब तात है जब लग साहिब प्रीत न होए एहो मन माया मोया वेखण सुनन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजे अंधा क्या करे नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी हर इको करता इक इको दीवान हर इक सैदा है अमर इको हर चित तार हर किस बिन कोई ना है डर परम पौ दूर कर हर किसे नो साला है जे तुद रखे बार कर हर जिसनो हुए दयाल सो हर जप पौ विखम कर श्लोक महला पहला दासी साहे

आओ आपो जे को पला कहाए नानक ता पर जा पै जा पत लेखे पाए। महला दूजा जिस प्यारे सोने हो तिस आगे मर चलिए त्रिज जीवन संसार ताके पाछे जीवना पौड़ी। खुद आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट खुद साजिया व्यापार करीवे इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख सीवे तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे कोई आप छुटे परवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला कुदरत करके वस्या सोए वक्त विचारे सो बंदा होए कुदरत है कीमत नहीं पाए जा कीमत पाए ता कहीं ना जाए सरे सरयत करें विचार बिन बूझे कैसे पावे पार सिद्ध कर सिजदा मन कर मकसूद जे तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा गुर सभा एव ना पाईए ना नेड़े ना दूर नानक सतगुर ता मिले जा मन रहे हदूर। पौड़ी सपत दीप सपत सागरा नव खंड चार वेद दस अस्त पुराणा हर सबना विस्तु वर्तदा हर सबना पाना सब तुझे त्यावे जी जंत हर सारग पाना जो गुरमुख हर आराध दे तिन्हो कुर्बाना तू आपे आप वर्तदा कर चोज विडाना। श्लोक महला तीजा कलो मसाजनी क्या सदाई है हिरदे ही लिख ले हो सदा साहिब कै रंग रह कबू न टूटसने हो। कलो मसाजनी जायसी लिखिया भी ना ले जाए नानक सह प्रीत।

सतगुरु सत दृढ़ाया सत रहो निवलाए, नानक सब जी सच है करमी पल्ले पाए पौड़ी। हर अंदर बाहर इक तू तू जाने पेत, जो की कह सो हर जानदा मेरे मन हर चेत। सो डरे जे पाप कमावदा धर्मी विगसेत, तू सच्चा आप न्याओ सच

पौड़ी शिष्ट उपाय सब तुद आपे रिजक समाया एक वल छल करके खाव दे मुंह कूर कुसत तिन्नी ताया तुद आपे पावे सो करें तुद ओते कम कोई लाया इकना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हथ तदाया। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाने माया मोह सुआए दूजे पाए हर नाम विसारिया मन मूरख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते जो देंदा रिजक समाए जम का पाथा गलो न कटिए फिर आवे जाए मन मुख किछु न सूजे अंधले पूरब लिखिया कमाए पूरे पाग सतगुर मिले सुख दाता नाम वसे मन आए सुख माने सुख पहनना सुखे सुख विहाए नान सो ना मनो ना।

माया सच नाम गुण तास गुरमति आप पछाणिया राम नाम प्रगास सचो सच तमावना वडियाई वड्डे पास जियो पिंड सब तिस्ता शिव करे अरदास सचे सब सलाना सुखे सुख निवास जप तप संजम मने माहे बिन नावे त्रिग जीवास गुरमति नाव पाईए मन मुख मोह विनाश ज्यों पावे त्यों रास तू नानक तेरा दास।

आप पछाने, सावत राखे इकत करियाने, जीवत मरे हर नाम वखाने, ऐसा भगौती उत्तम होए, नानक सत समावे सोए। महला तीजा, अंतर कपट भगौती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे न पाए, पर निंदा करे अंतर मल लाए, बाहर मल तोवे मन की जूठ न जाए, सत्संगत त्यों बाद रचाए, अंगन दुखिया दूजे पाए रचाए, हर नाम न चेते बहु कर्म कमाए, पूर्व लिखिया सो मेटना न जाए, नानक बिन सतगुर सेवे मोख न पाए। पौड़ी, सतगुर जिन्नी त्याया से कर न सवाही, सतगुर जिन्नी त्याया से त्रिपत अगाही, सतगुर जिन्नी त्याया तिन जम डर नाही, जिनको हो आ कृपाल हर से सतगुर कैरी पाही, तिन ऐसे ओथे मुख उजले।

सो ऐसा हर नाम से आए मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय चढ़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी तिन निंदक दुष्ट सब कैरी पाए। नानक नाम अराध सबना ते वड़ा सब नामे अगे आन निवाए। श्लोक महला तीजा वेस करे कुरूप कुलखणी मन खोटे कूड़ियार तिरके पाने ना चले हुकम करे गावार। गुर के पाने जो चले सब दुख निवारण हार लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को सब दे तरे प्यार बिन नावे किने न पाया देखो हृदय विचार। नानक सा सुवालियो सुलखणी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा माया मोह गुवार है तिसदा ना दिसे उरवार ना पार। मन मुख अज्ञानी महा दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार। पलके उठ बहु कर्म कमावे दूजे पाए प्यार सतगुरु सेवे अपना पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावे सच नाम उरधार। पौड़ी हर जल तल मैयल भरपूर दूजा नाहे कोए हर आप बह करे न्याओ कुड़ियार सब मार कडोए। सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए सब हर की करो उस्तत जिन गरीब अनाथ राख।

सुहागणी सतगुर कै पाए प्यार, सदा रावे फिर आपना सच्चे प्रेम प्यार। अत सुआल्यो सुंदरी शोभावंती नार, नानक नाम सुहागणी मेली मेलनहार। पौड़ी हर तेरी सब करे उसकत, जिन फाफे काढ़िया हर तुदनो करे सब नमस्कार। जिन पापे ते राखिया हर निमाणिया तू मान, हर डाडी हूँ तू डाडिया, हर अंकारिया मार निवाए मन मुख मूड सादिया। हर भगता दे वड्याई गरीब अनाथिया। श्लोक महला तीजा, सतगुर के पाने जो चले तिस वड्याई वड्डी होए, हर का नाम उत्तम मन वसे मेट न सके कोए। कृपा करे जिस आपनी तिस कर्म प्राप्त होए, नानक कारण करते वस है गुरमुख बूझे कोए। महला तीजा, नानक हर नाम जिनी आराध्या अंदिन हर लिवतार, माया बंदी खत्म की तिन अगे कमावे कार। पूरे पूरा कर छोड़िया हुक्म सवारण हार, गुर प्रसादी जिन बुझिया तिन पाया मोख द्वार। मनमुख हुक्म ना जाननी तिन मारे जम जंदार, गुरमुख जिन्नी आराध्या तिन्नी तरिया पौ जल संसार। सब अवगण गुणी मिटाया गुर आपे बख्शनहार। पौड़ी हर की भगता प्रतीत हर सब किस जानदा, हर जेवड़ नाही कोई जान हर धर्म विचारदा। कारा अंदेसा क्यों कीजे जा नाही अतर्म मारदा, सच्चा साहिब सच न्याओ पापी नर हारदा। साला हो।

सो प्रभ सदा सदा गुर कै हे प्यार। नानक जिस नजर करे तिस मेल ले, साई सुहागण नार महला तीजा। गुर सेवा ते हर पाई है जा को नजर करे, मानस ते देवते पए त्याया नाम हरे। हौ मैं मार मिलायन गुर कै शब्द तरे, नानक सहज समायन हर अपनी कृपा करे पौड़ी। हर अपनी भगत कराए वड्याई वे खालियन, अपनी आप करे प्रतीत आपे सेव कालियन। हर भगतानो दे आनंद फिर करी बहालियन, पापियानो ना दे फिर रहन चुन नरक कोर चालियन। हर भगतानो दे प्यार कर अंग निस्तारियन। श्लोक महला पहला। कबुद्ध डूमणी कुदया कसायन, पर निंदा कट चूड़ी मुठी क्रोध चंडाल। कारी कड्डी क्या की है जा चारे बैठिया नाल। सच संजम करनी कारा नावन नाव जपेरी, नानक अगे उत्तम सही जे पापा पंद न देही। महला पहला। क्या हंस क्या बगुला जा को नदर करे, जो तिस पावे नानका कागो हंस करे पौड़ी। कीता लोड़ी है कम सो हर पै आखी है, कारज दे सवार सतगुर सच साखी है। संता संग निधान अमृत चाखी है, पै पंजन मेरवान दास की राखी है। नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखी है। श्लोक महला तीजा। जियो पिंड सब तिसका सबसे दे आधार, नानक गुरमुख से भी है सदा सदा दातार। हौ बलिहारी तिन को जिन त्याया हर निरंकार, ओना के मुख सद उजले ओना नो सब जगत करे नमस्कार। महला तीजा। सतगुरु मिले है उल्टी भई नवनिध खर्चियो खाओ, अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिरन निज कर वसे निज खाए। अनहद तुनी सद वज दे उन मन हर लिव लाए, नानक हर भगत बिना कै मन वसे जिन मस्तक लिखिया तुर पाए पौड़ी। हौ टाडी हर प्रभ खसम का हर कै दर आया, हर अंदर सुनी पुकार टाडी मुख लाया। हर पुछिया टाडी सद कै कित अर्थ तू आया, नित देवो दान दयाल प्रभ हर नाम ते आया। हर दाते हर नाम जपाया नानक पैन आया सुध।

इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड कर, देखत ही जमराव हसे, ऐसा तैं जग परम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया। रहाओ कह कबीर छोड़ बिखिया रस, इस संगत ने चो मरना, रमैया जपो प्राणी अनंत जीवन बाणी, इन विद पव सागर तरना, जा तिस पावे ता लागे पाओ, परम पुलावा विचों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिवलागे, इत संगत नाही मरना, हुकम पछाण ता कसमे मिलना, रहाओ दूजा श्री राज त्रिलोचन का, माया मोह मन अगलड़ा प्राणी, जरा मरण पौ विसर गया, कुटुंब देख बिगसे कमला ज्यों, पर कर जो है कपट नरा, दूरा आयो हो जमे तना, तिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीसला ले बाहरी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए। रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे, प्राणी संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया, बिखम कोर पंख चालना प्राणी, रव सत तहना परवेसं, माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रगट भया है, पेखियले तर्म राओ, तह कर दल करन महाबली, तिन आग लड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिन रतड़ा नारायण, ए जी तू आपे सब किस जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जियो का। अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किस कह न जाए, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन मेखली लाए, राजा राम अनहद किंगरी बाजे, जाकी दिस्त नाद लिव लागे। रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश इक पाया, तिस में तार चुए अत निर्मल, रस में रसन चुआया, एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा, ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता, और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राजबाणी भगत बेणी जियो की, पहरियां कह कर।

रे नर गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रस मिस मेद अमृत बिख चाकी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज परत्रय मुख जो है सर अफसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख पूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख एओ मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म विगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पताल की बाणी लोचन समय बुद्ध बल नाथी ता काम पवस माधानी ताते बिखे पई मत पावस काया कमल कुम लाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुटी देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे साका तेज उड़िया मन पंखी कर आंगन ना सुखाई बेनी कह सुनो रे भक्तो मरण मुकत किन पाई श्री राग तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा जो पे हम ना पाप करंता अहे अनंता पतित पावन नाम कैसे हुंता रहाओ तुम जो नायक आछो अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जंते स्वामी शरीर अरा दे मोको विचार देवू रविदास समदल।

हर हर नाम में हर मन भाया, वडपागी हर नाम ते आया। गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले। गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया। हों रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हों रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हों हर बिन दूजा अवर ना जाना। कोई सज्जन संत मिले वडपागी, मैं हर तक प्यारा दसे जियो। हों मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसे जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विकसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे। हर हर दया करो।

हर गुण पढ़िए, हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए, मिल सत्संगत हर गुण गाए, जग पौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर मेल करेहा, मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा, मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे हर नर हरिए जियो। मेरी बेदन हर गुरु पूरा जाने, हौ रह ना सका बिन नाम वखाने, मैं औखद मंत्र दीजे गुरु पूरे, मैं हर हर नाम उधरिए जियो। हम चात्रिक दीन सतगुरु शरणाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिए जियो। माज महला चौथा, हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन पी जय जियो। मिल सत्संग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन भाणी, हर हर अमृत हर मन पावे, मिल सतगुर अमृत पी जय जियो। वड पागी हर संगत पावे, पागहीन प्रम चोटा खावे, बिन पागा सत्संग न लब्बे, बिन संगत मैल परी जय जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पी जय जियो। माज महला चौथा, हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौदा जियो। आवो संत मैं गल मेल आईए, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौदा जियो। वड पागी हर संत मिलाया, गुरपूरे हर रस मुख पाया, पागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो। आप दयाल दया प्रभ तारी, मल हौ मैं बिखिया सब निवारी, नानक हट पट्टन विच काया, हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो। माज महला चौथा, हौ गुण गोविंद हर नाम ते आई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो। तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पाप मलोवा मल मल तोवा, मिल हर जन हर रस पी चै जियो। सतगुर दाते नाम दृढ़ाया, वड पागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली, गुर पूरे अमृत ली चै जियो। हर सत्संगत सतपुरख मिलाइए, मिल सत्संगत हर नाम ते आइए, नानक हर कथा सुनी।

तिसके हौवारियां। मिल सत्संगत लद्दा हर सज्जन, हौ सतगुरु विट्टो कुमाइया जियो। जै जै देखा तै तै स्वामी, तू कट कट रविया अंतर जामी। गुरपूरे हर नाल दिखा लिया, हौ सतगुरु विट्टो सदवारिया जियो। एको पवन माटी सब एका, सब एका जोत सबाइया। सब इका जोत वरते पिन पिन ना रलई, किसे दीर लाइया। गुर प्रसादी इक नदरी आया, हौ सतगुर विट्टो बताया जियो। जन नानक बोले अमृत बाणी, गुर सिखा कै मन प्यारी पानी। उपदेश करे

हाँ को लीजियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ। पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अवनाशी कर में पाया सेव करी पल चसा ना बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो। हाँ को लीजियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। राग माज महला पंजवा सारुत सुहावी जित तुद समाली सो कम सुहेला जो तेरी काली सो रिदा सुहेला जित रिदै तू उठा सबना के दाता राजियो। तू सांझा साहिब बाप हमारा नौ निद तेरे अखुट पंडारा जिस तू दे सो त्रिपत अघावे सोई भगत तुम्हारा जियो। सबको आते तेरी बैठा कट कट अंतर तू है उठा सबे सांझी वाल सदाइन तू किसे न दिसे बहरा जियो। तू आपे गुरमुख मुक्त कराए तू आपे मनमुख जन्म पवाए नानक दास तेरे बलिहार है सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा अनहद वाजे सहज सुहेला सबद आनंद करे सद केला सहज गुफा में

पाणे हर गुण गुरमुख गावा, पाणे परम पवे बहु जूनी, सब किछ तिसे रजाई जियो, ना को मूरख ना को स्याणा, वरते सब किछ तेरा पाणा, अगम अगोचर बे अंक अथ।

दर्शन पेखत मन आघावे, नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा। दुख तदे जा विसर जावे, उख व्यापे बहु विदतावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड समरथा, जी समाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हौ पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो। बारिक वांगी हौ सब किछ मंगा, देन दे तोट नाही प्रभ रंगा, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो। हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हृदय नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रसाला।

जित मैं सतगुरु मिलिया सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया तन मूरत चसे पल कड़िया तन सो ओए संजोगा जियो उद्दम करत मन निर्मल होआ हर मार्ग चलत परम सगला खोया नाम निधान सतगुरु सुनाया मिट गए सगले रोगा जियो अंतर बाहर तेरी बाणी तुद आप कथी तै आप वखाणी गुर कहया सब एको एको अवर न कोई होएगा जियो अमृत रस हर गुर ते पिया हर पैनन नाम भोजन थिया नाम रंग नाम चोज तमासे नाउ नानक कीने भोगा जियो माज महला पंजवा सगल संतन पै वस्त इक मांगो करो बिनंती मान त्यागो वार वार जाई लख वरिया

मेहरवान कृपाल दयाला सगले तृप्त अघाए जियो। वन त्रिण त्रिभवन की तोन हरिया करण हार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसे अराधे मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदक तू मेरा प्राता तू मेरा राखा सबनी थाई तांबो के आकारा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाना तू मेरी ओत तू है मेरा माना तुझ बिन दूजा अवर न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तुद उपाए जित जित पाना तित तित लाए सब किछ कीता तेरा होवे नाही किछ असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया गुरपूरे वजी वधाई नानक जिता विखाड़ा जियो। माज महला पंजवा जी प्राण प्रभ मने अधारा भगत जीवे गुण गाए अपारा गुण निधान अमृत हर नामा हर त्याय त्याय सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूरे होवे पेटत गुर दर्शाया जियो। अगम अगोचर किछ मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्यावे ज्ञानी खुद ही मिटी चूका पोलावा गुर मन ही मैं प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निधाना सुख सहज हर नाम वखाना होए कृपाल स्वामी।

प्रीतम ठाकुर अति पारी तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो तुमरी ओट गोपाला जियो गुण गावत मन हरिया होवे कथा सुनत मल सगली खोवे पेटत संग साध संतन के सदा जपो दयाला जियो प्रभ अपना साथ साथ समारो ए मत गुर प्रसाद मन पारो तुमरी कृपा ते हुए परगासा सर्व मया प्रतपाला जियो सत सत सत प्रभ सोई सदा सदा सद आपे होई चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे देख नानक पै निहाला जियो माज महला पंजवा हुक्मी वर्षण लागे मेहा साजन संत मिल नाम जपेहा शीतल सांत सहज सुख पाया ठांड पाई प्रभ आपे जियो सब किछ बहुतो बहुत उपाया कर कृपा प्रभ सगल रजाया दात करो मेरे दातारा जी जंत सब त्रापे जियो सच्चा साहिब सच्ची नाई गुर प्रसाद तिस सदा त्याई जन्म मरण पै काटे मोहा बिनते सोग संतापे जियो सास सास नानक साला है सिमरत नाम काटे सब पाहे पूरन आस करी खिन पीतर हर हर हर गुण जापे जियो माज महला पंजवा आओ साजन संत मीत प्यारे मिल गावे गुण अगम अपारे गावत सुनत सदे ही मुक्ते सो त्याये जिन हम किए जियो जन्म जन्म के किल विख जावे मन चिंदे से ही फल पावे सिमर साहिब सो सच स्वामी रिजक सबस को दिए जियो नाम जपत सर्व सुख पाये सब पौ बिन से हर हर त्याये जिन से व्या सो पार ग्रामी कारज सगले थिए जियो आए पया तेरी शरणाई ज्यों पावे त्यों लह मिलाई कर कृपा प्रभ भक्ति लावो सच नानक अमृत पिए जियो माज महला पंजवा पय कृपाल गोविंद गोसाई मेघ वर्ष

जो बार माता संहारे दुख पंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारे जियो। जल थल पूर रहा मेरवाना सद बलिहार जाइए कुर्बाना रैन दिन स्थित सदा ते आए जे खिन में सगल उधारे जियो। राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो। माज महला पंजवा जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सोइन चुबारे जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से नगर उजाड़े जियो। हर रुखी रोटी खाए समाले हर अंतर बाहर नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसु की वाड़ी जियो। संता सेती रंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए दुलब दे कोई अज्ञानी जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो। तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला कर कृपा नानक गुण गावे राखो शर्म असाड़ी जियो। माज महला पंजवा चरण ठाकुर के हृदय समाने कल कलेश सब दूर पयाने सांत सुख सहज तुन उपजी साधु संग निवासा जियो। लागी प्रीत ना टूटे मूले हर अंतर बार गया पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जम की फाता जियो। अमृत वर्षे अनहद बाणी मन तन अंतर सांत समाणी त्रिपत अघाए रहे जन तेरे सतगुरु किया दिलासा जियो। जिसका साथ तिसते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवन जान रहे वड पागी नानक पूरन आसा जियो। माज महला पंजवा मियो पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसाया दया कलेस पया सुख साचा हर हर नाम समाली जियो। जिसके से तिन ही प्रतपारे पार ब्रह्म प्रभ पैर खवारे सुनी बिनंती ठाकुर मेरे पूरन होई काली जियो। सर्व जिया को देवन हारा गुर प्रसादी नदर निहारा जल खल मैयल सब तृप्ताने साधु चरण पखाली जियो। मन की इच्छे पुजावन हारा सदा सदा जाई बलिहारा नानक दान की।

जल फल मैयल दैदिश्वर साया, सांत पल बुझी सब कृष्णा, आनंद पया सब थाई जियो। सुखदाता दुख पंजन हारा, आते बख्श करे जी सारा, अपने की तेनो आप प्रतपाले, तै पैरी तिसे मनाई जियो। जां की शरण पया गत पाये, साफ साफ हर नाम ते आये, तिस बिन होर न दूजा ठाकुर, सब तिसे किया जाई जियो। तेरा मान तान प्रभ तेरा, तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा, नानक दास कह बेनंती, आठ पहर तू त्याई जियो। माज महला पंजवा, सबे सुख परे प्रभ तुठे, गुरपूरे के चरण मन उठे, सह समाज लगी लिव अंतर, सो रस सोई जाने जियो। अगम अगोचर साहिब मेरा, कट कट अंतर वरते मेरा, सदा अलिप्त जिया का दाता, को विरला आप पछाने जियो। प्रभ मिलने की ए निशानी, मन इको सच्चा हुकुम पछाने, सहज संतोष सदा तृप्ता से, आनंद खसम कह पाने जियो। हथी दिती प्रभ देवन हारे, जन्म मरण रोग सब निवारे, नानक दास किए

गुरु के चरण वसे मन माही, अंगीकार किया तिन करते है दुख का डेरा काया जियो। मन तन वसिया सच्चा सोई, बिखड़ा खान न दिसे कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आया जियो। जो किस करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाण किछु न जापे, अपने संतानो आप सहाये, प्रभ परम पुलावा लाया जियो। चरण कमल जन का आधारो, आप पैर राम नाम वपारो, सहज आनंद गावे गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्व समाया जियो। माज महला पंजवा, सो सत मंदर जित सच चित आई है, सो रिदा सुहेला जित भर गुण गाई है, सा तर्क सुहावी जित वसे हर जन सच्चे नाम वितों कुर्बानो जियो। सच वडाई कीम न पाई, कुदरत कर्म न कहना जाई, त्याए त्याए जीवे जन तेरे, सच शब्द मन मानो जियो। सच सालाहन बड़ पाजी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है, रंग रते तेरे तुद पावे है, सच नाम निशानो जियो। सच्चे अंत ना जाने कोई, थान संतर सच्चा सोई, नानक सच त्याए।

जप अमृत नाम संत संग मेला, करी मूरत सिमरत पल वंजे, जीवन सफल तिथाई जियो। सिमरत नाम दोख सब लाके, अंतर बाहर हर प्रभु साथे, तै पाओ परम खोया गुरु पूरे, देखा सब नी जाई जियो। प्रभु समरथ वड ऊंच अपारा, नौ निज नाम परे पंडारा, आद अंत मद प्रभ सोई, दूजा लवे न लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला, जाचित जाचे सादर वाला, देह दान नान।

खाते, खुद बिन अवर न कोई करते, मैं कर ओत तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवे स्वामी, पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी, जिन सेव्या तिन ही सुख पाया, सो जन्म न जुए हारी जियो। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जियो। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, इकत बिन होर दूजा नाही, बाबा नानक ए मत सारी जियो। माज महला पंजवा, मन तन रत्ता राम प्यारे, सर्व सुख दीजे अपना वारे, आठ पैर गोविंद।

कटिए जम की फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलख अपेवा, काम क्रोध किल दुख गुर काटे, पूरन होई आशा जियो। पूरन पाग पै जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी, नानक नाम वस्या जिस अंतर, परवान ग्रस्त उदासा जियो। माज महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया, कर कृपा पंक्ति प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपिया, बिन से आलस रोगा जियो। जा कै गृह नव निध हर पाई, तिस मिलिया जिस पूर्व कमाई, ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर, प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो। किन में थाप उठा पनहारा, आप इकंती आप पसारा, लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लहन विजोगा जियो। अंचल लाए सब सिस्त्राई, अपना नाव आप जपाई, गुरबो हित पाया कृपा ते, नानक तुर संजोगा जियो। माज महला पंजवा, सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा पली जाए, सोई सियाना सो पतवंता, हुक्म लगे जिस लीठा जियो। सब परोई इकत तागे, जिस लाए ले सो चरणी लागे, ऊंड कवल जित होए पर।

सेवा सुरत शब्द चित लाए, होमे मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावणिया, हों वारी जियो वारी सतगुर के बलिहारणिया, गुरमति प्रगास हुआ जी अंगन हर गुण गावणिया। रहाओ तन मन खोजे ता नाउ पाए, तावत राखे ठाक रहाए, गुर की बाणी अंगन गावे सहजे भगत करावणिया। इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साच मिले ता वेखा, नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया। सच्चा साहिब सच्ची नाई, गुर प्रसादी मन वसाई, अंगन सदा रहे रंग राता, दर्श कै सोजी पावणिया। पाप पुन की सार न जानी, दूजे लागी परम पुलाणी, अज्ञानी अंधा मग न जाने फिर आवन जावणिया। गुर सेवा ते सदा सुख पाया, हों मैं मेरा ठाक रहाया, गुर साखी मिटिया अंधियारा, बजर कपाट खुलावणिया। हों मैं मार मन वसाया, गुर चरणी सदा चित लाया, गुर कृपा ते मन तन निर्मल, निर्मल नाम ते आवणिया। जीवन मरना सब तू दैताई, जिस बख्शे तिस दे वडियाई, नानक नाम त्याए सदा तू जम्मन मरण सवारणिया। माज महला तीजा, मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा, बिन तकड़ी तोले संसारा, गुरमुख हो वे तोई बूझे गुण कह गुणी समावणिया। हों वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावणिया, जो सच लागे से अंदन जागे, दर्श कै शोभा पावणिया। रहाओ आप सुने ते आपे वेखे, जिसनो नजर करे सोई जन लेखे, आपे लाए ले सो लागे, गुरमुख सच कमावणिया। जिस आप पुलाए सो किथे हथ पाए, पूरब लिखिया सो मेकना ना जाए, जिन सतगुर मिलिया से बड पागे, पूरे कर्म मिलावणिया। पेयड़े तन अंगन सुती, कंक विसारी अवगण मुती, अंगन सदा फिरे बिल लादी, बिन फिर नींद न पावणिया। पेयड़े सुखदाता जाता, हों मैं मार गुर शब्द पछाता, सेज सुहावी सदा फिर रावे, सत सिगार बनावणिया। लख चौरासी जी उपाय, जिसनो नजर करे तिस गुरु मिलाए, किल बिख का सदा जन निर्मल, दर सच्चे नाम सुहावणिया। लेखा मांगे ता किन दिए, सुख नाही फुन दूए तीए, आपे बख्श ले प्रभ साचा, आपे बख्श मिलावणिया। आप करे तै आप कराए, पूरे गुर के शब्द मिलाए, नानक नाम मिले वडियाई, आपे मेल मिलावणिया। माज महला तीजा, इको आप फिरे परछन्ना, गुरमुख वेखा ता एहो मन पिन्ना, तृष्णा तज सहज सुख पाया, एको मन वसावणिया। हों वारी जियो वारी इकस क्यों चित लावणिया, गुरमती मन इकत कर आया, सच्चे रंग रंगावणिया। रहाओ एहो जग पूला ते आप पुलाया, इक विसार दूजे लोभाया, अन दिन सदा फिरे परम पूला, दिन नावे दुख पावणिया। जो रंग राते कर्म बिदाते, गुर सेवा ते जुग चारे जाते, जिसनो आप दे वडियाई, हर के नाम समावणिया। माया मोह हर चेते नाही, जमपुर बद्दा दुख सहाही, अन्ना बोला किछ नदर ना आवे, मन मुख पाप पचावणिया। इक रंग राते जो तुद आप लिव लाए, पाए भगत तेरे मन पाए, सतगुर सेवन सदा सुख दाता, सब इच्छा आप पुजावणिया। हर जियो तेरी सदा शरणाई, आपे बख्शे दे वडियाई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, जो हर हर नाम ते आवणिया। अंग दिन राते जो हर पाए, मेरे प्रभ मेले मेल मिलाए, सदा सदा सच्चे तेरी शरणाई, तू आपे सच बुझावणिया। जिन सच जाता से सच समाणे, हर

काल ना चापे दुख ना संतापे ज्योति विच मिल जोत समाणी सुन मन सच समावने हों वारी जियो वारी हर कै नाए शोभा पावने सतगुर सेव सच चित लाया गुरमती सहज समावने रहाओ काया कच्ची कच्चा चीर हंडाए दूजे लागी महल ना पाए।

है सच कमाए सतगुर सेवन से तनवंते एथे ओथे नाम समावणिया तै पाए सिंगार बनाए गुर प्रसादी महल कर पाए अन दिन सदा रवे दिन राती मजीठे रंग बनावणिया सबना पिरवसे सदा नाले गुर प्रसादी को नदर निहाले मेरा प्रभ अत ऊंचो ऊंचा कर कृपा आप मिलावणिया माया मोय इहो जग सुत्ता नाम विसार अंत विगुत्ता जिते सुत्ता सो जा गाए गुरमत सोजी पावणिया अप्यो पिए सो परम गवाए गुर प्रसाद मुकत गत पाए भगती रखा सदा बैरागी आप मार मिलावणिया आप उपाए संदै लाए लख चौरासी रिजक आप अपड़ाए नानक नाम से आए सच राते जो तिस पावे सो कार करावणिया माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर के शब्द परख परखाया जिन सच पल्ले सच वखाणे सच कसवटी लावणिया होवारी जियो वारी गुर की बाणी मन वसावणिया अंजन माहे निरंजन पाया ज्योति ज्योत मिलावणिया रहाओ इस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अत अगम अपारा गुरमुख हो वै सोई पाए आपे बख्श मिलावणिया मेरा ठाकुर सच दिड़ाए गुर प्रसादी सच चित लाए सचो सच वरते सबनी थाई सच्चे सच समावणिया रे प्रवाहो सच मेरा प्यारा किलविख अवगुण काटन हारा प्रेम प्रीत सदा त्याय पै पाए भगत दृढ़ावणिया तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावे आपे दे ना पछो तावे सबना जिया का एको दाता सब दे मार जीवावणिया हर तुद बाजो मैं कोई नाही हर तुद ऐ सेवी तै तुद सलाही आपे मेल लहो प्रभ साचे पूरे कर्म तू पावणिया मैं होर न कोई तुदे जेहा तेरी नदरी सीजस देहा अंदिन सार समाल हर राखे गुरमुख सह समावणिया तुद जेवड़ मैं होर न कोई तुद आपे सिरजी आपे गोई तू आपे ही कर पन सवारे नानक नाम सुहावणिया माज महला तीजा सब कट आपे भोगण हारा अलख वरते अगम अपारा गुर के शब्द मेरा हर प्रभ त्याये सहजे सच समावणिया हौ वारी जियो वारी गुर शब्द मन वसावणिया शब्द सूजे ता मन स्यों लूजे मनसा मार समावणिया रहाओ पंच दूत मुहे संसारा मनमुख अंधे सुध ना सारा गुरमुख हो वैसो अपना कर राखे पंच दूत शब्द पचावणिया एक गुरमुख सदा सच्चे रंग राते सहजे प्रभ सेवे अंदिन माते मिल प्रीतम सच्चे गुण गावे हर दर शोभा पावणिया एकम एक है आप उपाया दुबदा दूजा त्रिविध माया चौथी पौड़ी गुरमुख ऊंची सच्चो सच कमावणिया सब है सच्चा जे सच्चे पावे जिन सच जाता सो सह समावे गुरमुख करनी सच्चे सेवे साचे जाए समावणिया सच्चे बाजो को अवर ना दुआ दूजे लाग जग खप खप मुआ गुरमुख हो वैसो एको जाने एको सेव सुख पावणिया जी जंत सब शरण तुम्हारी आपे तर देखे कच्ची पक्की सारी अंग दिन आपे कार कराए आपे मेल मिलावणिया तू आपे मेले वेखे हदूर सब मैं आप रहा भरपूर नानक आपे आप वरते गुरमुख सोजी पावणिया माज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरले किने चख दीठी अंतर प्रगास महारस की वह दर सच्चे शब्द बजावणिया हौ वारी जियो वारी गुर चरणी चित लावणिया सतगुर है अमृत सर साचा मन नावे मैल चुकावणिया रहाओ तेरा सच्चे किने अंत न पाया गुर प्रसाद किने विरले चित लाया तुझ सला है न रजा कबहू सच्चे नावे की पुखलावणिया एको वेखा अवर न बिया गुर प्रसादी अमृत पिया गुर के शब्द तिखा निवारी सहजे सुख समावणिया
रतन पदार्थ पलर त्याग है, मन मुख अंधा दूजे पाए लागे, जो बीजे सोई फल पाए, सुखने सुख न पावण्या, अपनी कृपा करे सोई जन पाए, गुर का शब्द मन बसाए, अंदिन सदा रहे तै अंदर, तै मार परम चुकावण्या, परम चुकाया सदा सुख पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया, अंतर निर्मल निर्मल बाणी, हर गुण सहजे गावण्या, सिमरत शास्त्र वेद वखाणे, परमे पूला तक न जाने, बिन सतगुर सेवे सुख न पाए, दुखो दुख कमावण्या, आप करे किस आखे कोई, आखन जाइए जे पूला होई, नानक आपे करे कराए, नामे नाम समावण्या, माज महला तीजा, आपे रंग हर रंग चढ़ाए, मन तन रत्ता रसना रंग चलूली, पै पाए रंग चढ़ावण्या, हों वारी जियो वारी निरपौ मन वसावण्या, गुर कृपा से हर निरपौ त्याया, बिख पौ जल शब्द करावण्या, रहाओ मन मुख मुग्ध करे चतुराई, नाता तोता थाए ना पाई, जेहा आया तेहा जाती, कर अवगण पछोतावण्या, मन मुख अंधे किछु न सूजे, मरण लिखाए आए नहीं बुझे, मन मुख कर्म करे नहीं पाए, बिन नावे जन्म गवावण्या, सच करनी शब्द है सार, पूरे गुर पाईए मोख द्वार, अंधिन बाणी शब्द सुनाए, सच राते रंग रंगावण्या, रसना हर रस राती रंग लाए, मन तन मोहया सह सुभाए, सहजे प्रीतम प्यारा पाया, सहजे सहज मिलावण्या, जिस अंदर रंग सोई गुण गावे, गुर के शब्द सहजे सुख समावे, हौ बलिहारी सदा तिन विटो, गुर सेवा चित लावण्या, सच्चा सच्चो सच पति जय, गुर प्रसादी अंदर पी जय, बैठ सुखान हर गुण गावे, आपे कर सत मनावण्या, जिसनो नजर करे सो पाए, गुर प्रसादी हो मैं जाए, नानक नाम वसे मन अंतर, दर सच्चे सोबा पावण्या, माज महला तीजा, सतगुर सेवे वड्डी वड्याई, हर जी अचिंत वसे मन आई, हर जी ओ सफल्यो बिरख है अमृत, जिन पीता तिस तिखा लहावण्या, हौ वारी जियो वारी सत्संगत मेल मिलावण्या, हर सत्संगत आपे मेल है, गुर शब्दी हर गुण गावण्या, रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया, जिन हर का नाम मन वसाया, हर निर्मल हो मैं मैल गवाए, दर सच्चे शोभा पावण्या, बिन गुर नाम न पाया जाए, सिद्ध साधक रहे बिन लाए, बिन गुर सेवे सुख न होवी, पूरे पाग गुर पावण्या, एहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखे, मोर्चा ना लागे जाहो मैं सोखे, अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए, गुर शब्दी सच समावण्या, बिन सतगुर क्यों ना देखिया जाए, गुर कृपा कर आप जित्ता दिखाए, आपे आप मिल रहया, सहजे सहज समावण्या, गुरमुख हो वै सो इक्कस क्यों लिवलाए, दूजा परम गुर शब्द जलाए, काया अंदर वणज करे वा पारा, नाम निधान सच पावण्या, गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, अंदिन रंग रता गुण गावे, अंदर महल बुलावण्या, सतगुर दाता मिले मिलाया, पूरे पाग मन शब्द वसाया, नानक नाम मिले वड्याई, हर सच्चे के गुण गावण्या, माज महला तीजा, आप बंजाए ता सब किछ पाए, गुर शब्दी सच्ची लिवलाए, सच वणन जै सच संग्रह, सच वापार करावण्या, हौ वारी जियो वारी हर गुण अंदिन गावण्या, हौ तेरा तू ठाकुर मेरा, शब्द वड्याई देवण्या, रहाओ वेला वक्त सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन भाया, सच्चे सेवे सच वड्याई, गुर कृपा ते सच पावण्या, पाओ पोजन सतगुर तुथे पाए, अनरस चूके हर रस मन वसाए, सत संतोख सहज सुख बाणी, पूरे गुरते पावण्या।
सतगुर ना सेवै मूरख अंध गवारा, फिर ओए कित्थों पाएं मोख द्वारा, मर मर जमे फिर आवे जमदर चोटा खावणिया। शब्द साफ जाने ता आप पछाने, निर्मल बाणी शब्द वखाने, सच्चे सेव सदा सुख पाएन नौनिद नाम मन वसावणिया। सो थान सुहाया जो हर मन भाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अंदिन हर साला है साचा निर्मल नाद वजावणिया। मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूर कमावन दुख लागे पारा, परमे पूले फिरन दिन राती, मर जन्मे जन्म।

अनमुख अंधे शुद्ध नाकाई, आत्म काती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु पार उठावे, बिन मजूरी पार पहुंचावनिया। एहो जगवाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जे ही वासना पाए ते ही वरत वासु वास जनावनिया। मन मुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अगम अपारा, दुखिए नित फिरे बिल्ला दे, बिन गुर सांत न पावनिया। जिनकी ते सोई विद जाने, आप करे ता हुकम पछाने, जेहा अंदर पाए तेहा वरत आपे बाहर पावनिया। तिस बाजो सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाए लय सो निर्मल होई, नानक नाम वसै कट अंतर, जिस देवे सो पावनिया। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाए, हौ मैं मेरा सब दुख गवाए, अमृत बाणी सदा सलाहे, अमृत अमृत पावनिया। हौ वारी जियो वारी, अमृत बाणी मन वसावनिया, अमृत बाणी मन वसाए, अमृत नाम ते आवनिया। रहाओ अमृत बोले सदा मुख वैणी, अमृत वेखे परखे सदा नैनी, अमृत कथा कहे सदा दिन राती, अवरा आख सुनावनिया। अमृत रंग रता लिव लाए, अमृत गुर प्रसादी पाए, अमृत रसना बोले दिन राती, मन तन अमृत पियावनिया। सो किछ करे जो चित न होई, किसदा हुक्म मेट न सके कोई, हुक्मे वरते अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पियावनिया। अजब कम करते हर केरे, क्यों मन पूला जांदा फेरे, अमृत बाणी क्यों चित लाए, अमृत शब्द बजावनिया। खोटे खरे तुद आप उपाए, तुद आपे परखे लोक सवाए, खरे पर खजाने पाए, खोटे परम पुलावनिया। क्यों कर वेखा क्यों सलाही, गुर प्रसादी शब्द सलाही, तेरे पाने विच अमृत वरसे, तू पाने अमृत की आवनिया। अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवे हृदय समाणी, नानक अमृत नाम सदा सुखदाता, पी अमृत सब भुख ले जावनिया। माज महला तीजा, अमृत वरसे सह सुवाए, गुरमुख विरला कोई जन पाए, अमृत पी सदा तृप्ता से, कर कृपा तृष्णा बुझावनिया। हौ वारी जियो वारी, गुरमुख अमृत पी आवनिया, रसना रस चाख सदा रहे रंग राती, सहजे हर गुण गावनिया। रहाओ गुर प्रसादी सहज को पाए, दुबदा मारे इक क्यों लिवलाए, नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावनिया। सदना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी, तुझते बाहर किछ न होवे, गुरमुख सोजी पावनिया। गुरमुख तत है बिचारा, अमृत परे तेरे पंडारा, बिन सतगुर सेवे कोई न पावे, गुर कृपा ते पावनिया। सतगुर सेवे सो जन सो है, अमृत नाम अंतर मन मोहे, अमृत मन तन बाणी रता, अमृत सह सुनावनिया। मन मुख पूला दूजे पाए खुआए, नाम ना लेवे मरे बिख खाए, अंदिन सदा विस्ता में वासा, बिन सेवा जन्म गवावनिया। अमृत पीवे जिसनो आप पियाए, गुर प्रसादी सहज लिव लाए, पूरन पूर रहा सब आपे, गुरमत नदरी आवनिया। आपे आप निरंजन सोई, जिन फिर जी तिन आपे गोई, नानक नाम समाल सदा तू, सहजे सच समावनिया। माज महला तीजा, से सच लागे जो तुद पाए, सदा सच सेवे सह सुभाए, सच्चे सबद सच्चा सलाही, सच्चे मेल मिलावनिया। हौ वारी जियो वारी सच सलाणिया, सच त्याएन से सच राते, सच्चे सच समावनिया। रहाओ जह देखा सच सबनी साई, गुर प्रसादी मन वसाई, तन सच्चा रसना सच राती, सच सुन आख वखानिया। मनसा मार सच समाणी, इन मन दीठी सब आवन जानी, सतगुर सेवे सदा मन नहीं चल, निज कर वासा पावनिया। गुर के शब्द हृदय दिखाया, माया मोह शब्द जलाया, सच्चो सच्चा वेख सलाही, गुर शब्दी सच

जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम समाले सेवड पागी, सच्चे सबद आप मिलाए, सत संगत सच गुण गावनिया। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे, ओ अगम अगोचर सबद सुध होवे, अंदिन सच सबद सालाही, होर कोई ना कीमत पावनिया। पर परखा के सांत ना आई, त्रिष्णा जाले सुध ना काई, बिख बिहाजे बिख मोह प्यासे, कूर बोल बिख खावनिया। गुर प्रसादी एको जाना, दूजा मार मन सच समाना, नानक एको नाम वरते है, मन अंतर गुर प्रसादी पावनिया। माज महला तीजा, वर्ण रूप वरते सब तेरे, मर मर जम्मे फेर पवे कनेरे, तू एको ने चल अगम अपारा, गुरमती बूझ बुझावनिया। हों वारी जियो वारी, राम नाम मन वसावनिया, तिस रूप न रेखिया वरन न कोई, गुरमती आप बुझावनिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई, सतगुर सेवे है प्रगट होई, गुप्त प्रगट वरते सब थाई, ज्योति ज्योत मिलावनिया। तिसना अगन जले संसारा, लोभ अभिमान बहुत अहंकारा, मर मर जन्म पत गवाए, अपनी बिरथा जन्म गवावनिया। गुर का शब्द को विरला बूझे, आप मारे तांत्र।

गुर के सब सदर है समाए, सच सलाहे सब कट अंतर, सचो सच सुहावणिया। सच सलाही सदा हजूरे, गुर के शब्द रहा पर पूरे, गुर प्रसादी सच नदरी आवे, सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहा समाए, सदा सच निश्चल आवे न जाए, सच्चे लागे सो मन निर्मल, गुरमती सच समावणिया। सच सलाही अवर न कोई, जित सेवे सदा सुख होई, नानक नाम रते विचारी, सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा, निर्मल शब्द निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहे समाणी, निर्मल बाणी हर सा लाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हों वारी जियो वारी, सुख दाता मन वसावणिया, हर निर्मल गुर सब सलाही, सबदो सुन पिसा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वस्या मन आए, मन तन निर्मल माया मोह गवाए, निर्मल गुण गावे नित साचे के, निर्मल नाद बजावणिया। निर्मल अमृत गुर ते पाया, विच्चों आप मुआ सिखे मोह न माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल बाणी मन वसावणिया। जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे, होमे मैल गुर सबदे तोवे, निर्मल वाजे अनहद तुन बाणी, दर सच्चे सोबा पावणिया। निर्मल ते सब निर्मल होवे, निर्मल मनुआ हर शब्द पर होवे, निर्मल नाम लगे बड़ पागी, निर्मल नाम सुहावणिया। सो निर्मल जो सबदे सो है, निर्मल नाम मन तन मोह, सच नाम मल कदे न लागे, मुख उजल सच करावणिया। मन मैला है दूजे पाए, मैला चौका मैले छाए, मैला खाए फिर मैल वधाए, मन मुख मैल दुख पावणिया। मैले निर्मल सब हुक्म सवाए, से निर्मल जो हर साचे भाए, नानक नाम वसे मन अंतर, गुरमुख मैल चुकावणिया। माज महला तीजा, गोविंद उजल उजल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मनसा, मन उजल सदा मुख सो है, अत उजल नाम ते आवणिया। हौ वारी जियो वारी, गोविंद गुण गावणिया, गोविंद गोविंद कहे दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुहावणिया। रहाओ गोविंद गावे सह सुबाए, गुर कै पै उजल होमे मल जाए, सदा आनंद रहे भगत करे दिन राती, सुन गोविंद गुण गावणिया। मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए, गुर कै शब्द मने मन मिलाए, सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए, शब्दे नृत करावणिया। ऊंचा कूके तने पछाड़े, माया मोह जोहया।

सुखदाता सेवन सुख पायन गुरमत मन वसावनिया हौ वारी जियो वारी सुख सह समाध लगावनिया जो हर सेवे थे सदा सोहे शोभा सुर सुहावनिया रहाओ सबको तेरा भगत कहाए से भगत तेरे मन पाए सत बाणी तुदे सलाहन रंग राते भगत करावनिया सबको सच्चे हर जियो तेरा गुरमुख मिले ता चूके फेरा जा तुद पावे ता नाए रचावे तू आपे नाउ जपावनिया गुरमती हर मन वसाया हरख सोग सब मोह गवाया इक्कस क्यों लिव लागी सधी हर नाम मन वसावनिया भगत रंग राते सदा तेरे चाए नौ निज नाम वखरा मन आए पूरे पाग सतगुर पाया सबदे मेल मिलावनिया तू दयाल सदा सुखदाता तू आपे मेले गुरमुख जाता तू आपे देवे नाम वडाए नाम रते सुख पावनिया सदा सदा साचे तुद सलाही गुरमुख जाता दूजा को नाही एक सो मन रहा समाए मन मने मन है मिलावनिया गुरमुख होवे सो साला है साचे ठाकुर वे परवाहे नानक नाम वसै।

है, तेरे भगत सो है साचे दरबारे, गुर के शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया।

तू ना होए, तू कह कर वेखे जाने सोए, आपे करे कराए करता, गुरमत आप मिलावणिया। कामन गुणवंती हर पाए, पै पाए सिगार बनाए।

परम पूले जो सुन्ने कर पाओ हलत पलत तिनी दोवे गवाए दुखे दुख विहावनिया। लिख दिया कागज मस कोई दूजे पाए सुख पाए न कोई कूड़ लिखे ते कूड़ कमावे जल जावे कूड़ चितलावनिया। गुरमुख सच्चो सच लिखे विचार से जन सच्चे पावे मोख द्वार सच कागज कलम मसवाणी सच लिख सच समावनिया। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे गुरु प्रसादी मिले सोई जन लेखे नानक नाम मिले वड्याई पूरे गुरते पावनिया। माज महला तीजा आत्म राम प्रवास गुरते होवे हों मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे मन निर्मल अंदिन भगती राता भगत करे हर पावनिया। हों वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावनिया तिना भगत जना को सदा नमस्कार कीजे जो अंदिन हर गुण गावनिया। रहाओ आपे करता कारण कराए जित पावे तित पारे लाए पूरे पाग गुर सेवा होवे गुर सेवा ते सुख पावने।

तू आपे दुख सुख दे रहे करते गुरमुख हर देखावने आपे करता करे कराए आपे शब्द गुर मन वसाए शब्दे उपजे अमृत बाणी गुरमुख आप सुनावने आपे करता आपे पुगता बंधन तोड़े सदा है मुक्ता सदा मुक्त आपे है सच्चा आपे अलक लखावने आपे माया आपे छाया आपे मोह सब जगत उपाया आपे गुण दाता गुण गावे आपे आप सुनावने आपे करे कराए आपे आपे थाप उठापे आपे तुझते बाहर कछु न होवे तू आपे कारे लावने आपे मारे आप जीवाए आपे मेले मेल मिलाए सेवा ते सदा सुख पाया गुरमुख सहज समावने आपे ऊंचा ऊंचो होई जिस आप विखाले सो वेखे कोई नानक नाम वसे कट अंतर आपे वेख विखालने माज महला तीजा मेरा प्रभ पर

जग जीवन मन वसावणिया, हर जग जीवन निरपौ दाता, गुरमत सहज समावणिया, रहाओ कर मैं करती तौल पताला, काही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रह सुखदाता, गुरमत सहज समावणिया, काया अंदर हो मैं मेरा, जमन मरण ना चूके फेरा, गुरमुख हो वैसो हो मैं मारे, सच्चो सच त्यावणिया, काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दोही मिलके सृष्ट उपाई, दोवे मार जाए इकत कर आवे, गुरमत सहज समावणिया, कर ही माहे दूजे पाए अनेरा, चानन होवे छोड़े हो मैं मेरा, प्रगट सब है सुखदाता, अंदर नाम ते आवणिया, अंतर ज्योत प्रगट पासारा, गुर साखी मिटिया अंधियारा, कमल विगास सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलावणिया, अंदर महल वतनी परे पंडारा, गुरमुख पाए नाम अपारा, गुरमुख वन जे सदा वपारी, लाहा नाम सद पावणिया, आपे वस राखे आपे दे, गुरमुख वणजे केई के, नानक जिस नजर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावणिया, माज महला तीजा, हर आपे मेले सेव कराए, गुर के शब्द पाओ दूजा जाए, हर निर्मल सदा गुण दाता, हर गुण में आप समावणिया, हों वारी जियो वारी, सच सच्चा हृदय वसावणिया, सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावणिया, रहाओ आपे गुरदाता कर्म विदाता, सेवक सेवे गुरमुख हर जाता, अमृत नाम सदा जन सोवे, गुरमत हर रस पावणिया, इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हों में परम चुकाया, अंजन नाम सलाहन रंग राते, गुर कृपा ते पावणिया, गुर के शब्द एहो गुफा विचारे, नाम निरंजन अंतर वसे मुरारे, हर गुण गावे शब्द सुहाए, मिल प्रीतम सुख पावणिया, जम जागाती दूजे पाए कर लाए, नामो पुल्ले देश जाए, करी मोहत का लेखा लेवे, रतियो मास

तो पंडित होई आस करे सगले कुल तारे हर नाम मन वसावणिया हो वारी जियो वारी हर रस चख साध पावणिया हर रस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौनिद पाए त्रै गुण मेट समावणिया हो मैं करे ने कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नित गुरमुख होई इस नाम करे सदा दिन राती हो मैं मैल चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर वसे हो मैं मार एनस प्रीत सबद साचे हर सर वासा पावणिया मन मुख सदा बग मैला हो मैं मल लाई इस नाम करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हो मैं मैल चुकावणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा फट चानन आप पछानणिया आप उपाय तै आपे वेखे सतगुर सेवे सो जन लेखे नानक नाम वसे कट अंतर गुर कृपा ते पावणिया माज महला तीजा माया मोह जगत सवाया तै गुण दीसे।

माया मोह जलाए सो हर्षो चित लाए हर दर मैली सो बा पावण्या रहाओ। देवी देवा मूल है माया सिमरत सास जिन उपाया काम क्रोध पथरिया संसारे आए जाए दुख पावण्या तिस विच ज्ञान रतन इक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जप सत संजम सच कमावे गुर पूरे नाम ते आवण्या पेयड़े तन परम पुलाणी दूजे लागी फिर पछो ताणी हलत पलत दोवे गवाए सुपने सुख न पावण्या पेयड़े तन कंत संभाले गुर प्रसादी वेखे नाले फिर सहज रह रंग राती शब्द सिंगार बनावण्या सफल जन्म जिना सतगुर पाया दूजा पाओ गुर शब्द जलाया एको रव रहा कट अंतर मिल सत्संगत हर गुण गावण्या सतगुर ना सेवे सो काहे आया त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया मन मुख नाम चेतना आवे बिन नावे बहु दुख पावण्या जिन शिष्ट साजी सोई जाने आपे मेले शब्द पछाने नानक नाम मिलिया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लिखावण्या माज महला चौथा आद पुरख अपरंपर आपे आपे थापे थाप उथा

गुर प्रसाद करे नाम देवै नामे नाम समावणिया। तू आपे सच्चा सृजनहारा पगती परे तेरे पंडारा गुरमुख नाम मिले मन पीजे सहज समाध लगावणिया। आन दिन गुण गावा प्रभ तेरे तुझ साला ही प्रीतम मेरे तुझ बिन अवर न कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावणिया। अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करे तू लह मिलाई।

गुरुमुख सदा रह रंग राती मिल सच्चे शोभा पावणिया। मनमुख कर्म करे अंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महागुबारा फिर आवन जावणिया। आपे करता दे वड़ियाई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ पंजन गुरु सबदी सुख पावणिया। माध महला पंजवा कर पहला अंतर अलख ना जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर सब।

तगती पाए परे पंडारा दया तार राखे तुझसे पूरे कर्म समावण्या। अंधकूप ते कंडे चाड़े कर कृपा दास नगर निहाले गुण गावे पूरन अगनासी कह सुन तोट ना आवण्या। ऐसे ओथे तू है रखवाला मात गर्भ में तुम ही पाला माया अगर न पोहे तिनको रंग रते गुण गावण्या। क्या गुण तेरे आख समाली मंतन अंतर तुद नगर निहाल।

तिस तत्ती वाव ना लगे पाई, तू साहिब शरण सुख दाता, सत संगत जप प्रगटावणिया, तू ऊंच अथाओ अपार अमोला, तू साचा साहिब दास तेरे गोला, तू मीरा साची ठकुराई, नानक बल बल जावणिया, माज महला पंजवा कर दूजा, नित नित दया समालिए, मूल न मनो विसारिए, रहाओ संता संगत पाइए, जित जम के पंख न जाइए, तोसा हर का

तक जिसने भाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया ए रस पोगण पातशाहिया मंदा मूल न उपजियो तरे सच्ची कारे लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हरे तेरा थिर होआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल ना।

0: सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे कट कट एक वर्तदा जल फल महियल पूरे पाप विनाशन सेवया पवित्र संतन की दूरे सब छड़ाई खसम आप हर जप पई थरूरे करते किया कपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे नानक रत्ता सत नाए हर वेखे सदा हजूरे।
1: बारह माह मांझ महला पंजवा कर चौथा

जल बिन साफ कुमलावती उपजे नाही दाम हर ना न मिलिए साजने कत पाये विश्राम जित कर हर कंस न प्रगटी पथ नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंक विहूनिया।

वैसाख सुहावा तां लगे जा संत पेटे हर सोए। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अगे सब निवन। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है।

मानन हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन असार तपंदा तिस लगे हर नाम जिन्ना पास असार तपंदा तिस लगे

करम मिलावन हार जिन्ने सखिए प्रभ पाया हौ तिनके सब बलिहार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार पादोए परम कुलानिया दूजे लगा हेत लख सिगार बनाया कारज नाही केत जित दिन देह बिनस सी तित वेले कैसन प्रेत पकड़ चलाएन दूत जम किसे ना देनी पेत छंद खड़ोते खिने माहे जिनस्यों लगा हेत हाथ मरोड़े।

इच पुनी वड पागनी वर पाया हर राय। मिल सैया मंगल गावही गीत गोविंद अलाय। हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लाए। हालत पलक सब

करे हर गुरु पूरा आराध्या दरगे सच करे सर्व सुखा निज चरण हर पौध।

खेड, पंजवें खान पीन की तात, छेवें कामना पुछे जात, सतवें संज किया करवास, अठवें क्रोध हुआ तन नाश।

मर जम में आया जाया दिन सतगुरु मोह न टूटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम की आई है सुख रजा जा कुद पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया शोभा सुरत।

क्यों गल लगे ताए तैके चरण कर पाव के लोइन सुरत करे नानक कह सियाणिए इव कंत मिलावा होए पौड़ी। सदा सदा तू एक है तुझ दूजा सेल रचाया हौ मैं गर्व उपाय के लोभ अंतर जनता पाया ज्यों पावे त्यों रख तू।

मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया, सुखों उठे रोग पाप कमाया, हरखों सोग विजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणत गणाए चगड़ा पाया, सतगुर हथ निबेड़ चगड़ चुकाया, करता करे सोहोग न चले चलाया। श्लोक महला पहला। कूड बोल मुर्दार खाए, अवरी नो समझावन जाए, मुठा आप मुहाए साथ है, नानक ऐसा आगू जापे। महला चौथा। जिस दे अंदर सच है, सो सच्चा नाम मुख सच अलाए, ओ हर मार्ग आप चलदा, होर नानो हर मार्ग पाए। जे अग्गे तीर्थ होए ता मल लहे, छप्पड़ नाते सगरी मल लाए, तीर्थ पूरा सतगुरु जो अंदिन हर हर नाम के आए, ओ आप छुटा कुटुंब स्यो, दे हर हर नाम सब सृष्टि सदाए, जन नानक तिस बलिहारण है, जो आप जपे अवरा नाम जपाए। पौड़ी। एक कंद मूल चुन खाए वन खंड वासा, एक पगवा वेश कर फिरे जोगी सन्यासा, अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आशा, बिरथा जन्म गवाए न गिरही ना उदासा, जमकाल सिरो ना उतरे त्रिविद मनसा, गुरमति काल ना आवे नेड़े जा होवे दासन दासा, सच्चा शब्द सच मन कर ही मह उदासा, नानक सतगुर सेवन अपना से आसा ते निराशा। श्लोक महला पहला। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत, नानक नाम खुदाई का दिल हच्छे मुख ले हो, अवर दिवा

तहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर पड़े पंडार रीते इक खने ताजी रथ सुखार हाथी पाथरे बाग मिलक कर बार किथे से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दा तार सिनाखत कुदरती। श्लोक महला पहला। नदियां होवे तीनवा सुम होवे दुध कियो सगली धरती शक्कर होवे खुशी करे नित जियो पर्वत सोयना रूपा होवे हीरे लाल जड़ाओ पी तू है सालाहना आखन लह न चाओ। महला पहला। पार अठारह मेवा होवे गरुड़ा होए सुआओ

आओ सुर्ग दिया मोहनिया स्त्रियां होवन नानक सबो जाओ पी तू है सालाहना आखन लह न चाओ। पौड़ी बद शैली गै बाना कसम ना जानई सो कही है देवाना आप ना पछाणई कल्ले बुरी संसार वादे खपी है विर नावे बेकार परमे पची है राह दोवे इक जाने सोई सिज सी कुफर गो कुफराने पया गज सी सब दुनिया सुबहान सच समाई है सिजे दर दीवान आप गवाई है। महला पहला श्लोक सो जीव्या जिस मन वस्या सोए नानक अवर न जीवे कोए जे जीवे पत लखी जाए सब हराम जेता किच खाए राज रंग माल रंग।

ब्राह्मण नाही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या त्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मांस, क्या कपड़ क्या सेज खाली कीजे भोग विलास। क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे महली वास। नानक सच्चे नाम विण, सबे तोल विनाश। पौड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोहरा होवे हाथ मरिए चखिए। सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए, हुक्म मने सिरदार दर दीवानिए। फुरमानी है कार खसम पठाया, तबलबाज विचार सबक सुनाया। एक होए असवार, इतना साखती,

कण लया तन चार दो कुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए बैठ जो दर रहे सोबरे नानक अजब जिठ मैला पहला वेख जे मिठा कटिया कट कुट बद्दा पाए कुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाए रस कस टत्तर पाई है तपे तै बिल लाए पीसो फोग संभालिए दिच्चे अग जलाए नानक मिठे पत्री है वेखो लोका आए पावड़ी इकना मरन ना चित आस कने रिया मर मर जम्मे नित किसे ना के रिया आप नड़े मन चित कहन चंगे रिया जमरा जय नित निक मन मुख हे रिया मन मुख लून हराम क्या ना जानिया बद्दे करन सलाम खसम ना पाणिया सच मिले।

बेटा गंद बोले सच कोए, मोया गंद ने की सत होए, एस गंद वरते संसार, मूरख गंद पवे मोहे मार, नानक आखे एहो विचार, सिफती गंद पवे दरबार, पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे

पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमती आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशानिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मन मुख सदा कूड़ियार परम भुलाणिया विष्टा अंदर वास साध ना जानिया गिन नामे दुख पाए।

एक निरंकारी नाम आधार जीवा दाता मरे न कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम त्याई है दूजी कार है लग जन्म गवाई है बिन नाम है सब विश तै जय खाई है सच्चा सब सलाह सच समाई है बिन सतगुर सेवे नाही सुख निवास फिर आई है दुनिया खोटी रास।

जात पावे ता अपने कतेबा मुला शेख कहावे जात पावे ता होवे राजे रसकस बहुत कमावे जात पावे तेग बगावे सिर मुंडी कट जावे जा तुद पावे जाहे शंकर सुन गल्ला कर आवे जा तुद पावे नाए रचावे तुद पाने तू पावे नाम के एक कह बेनंती होर सगले कूर कमावे महला पहला जा तू वड्डा सब वड्याईया चंगा चंगा होई जा तू सच्चा ता सब को सच्चा कूड़ा कोई न कोई आसन वेखन बोलन चलन जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्मे विच रखे नानक सच्चा आप पौड़ी सतगुर सेव निसंग परम चुकाई है सतगुर आखे कार सो कार कमाई है सतगुर होए दयाल ता नाम ते आई है लाह भगत सो सार गुरमुख पाई है मन मुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है सच्चे दे दर जाए सच कमाई है सच्चे अंदर महल सच बुलाई है नानक सच सदा सचियार सच समाई है श्लोक महला पहला कल का तीरा जे का साई करम पंकर उड़िया पूर अमाव सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया हो पाल विकुन्नी होई अधेरे राहो न कोई विच हो में कर दुख रोई कहो नानक किन विदगत हो।

अगर शराब की बहुर ना पाई ताओ सती पैरी सत पला बही है पड़िया पास उसे पाप पुन बिचारी है पूरे कत्ते रास उसे खोटे सती है खरे की चैसा बास बोलन फादल नान का दुख सुख खसमे पास महला दूजा पौन गुरु पानी पिता माता करतमा।

समानी वुठे अन कमाद कपाहा सबसे पर्दा होवे वुठे काहु चरे नित सुरही सातन दही बिलोवे तित के होम जग सद पूजा पे कारज सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वजाई नानक जे सिर कुत्ते नावन नाही ता सत चटे सुरछाई महला दूजा अग्नि पाला के करे।

सिर पर चलिए सही है पार, नगरी कर्मी गुर विचार। कै बिन कोई ना लंगस पार, कै पौ राख्या पाए सवार। रहाओ कै तन अगन पखे पै नाल, कै पौ कड़िए सब दुसवार। कै बिन काड़त कच निकच, अंधा सच्चा अंधी सच। बुद्धि बाजी उपजे चाओ, सह स्याणप पवे न पाओ। नानक मन मुख बो

डर डर जाए, सो डर के हाँ जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी ना ही जाए, जो किछ वरते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर हो वै होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आखा समान, फिस विच पूख बहुत नैसान।

देही माटी बोले पौन, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन। मुई सुरत बाद अंकार, ओ नाम हुआ जो देखन हार। जय कारण पट तीरथ जाही, रतन पदार्थ कट ही माही। पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने, पीतर हो दी वक्त न जाने। हाँ नाम हुआ मेरी मुई बलाए, ओह नाम हुआ जो रहा समाए। कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर न आया। गौड़ी मेला पहला दखनी, सुन सुन गूजे माने नाओ। ताके सब बलिहारे जाओ, आप पुलाए ठौर न ठाओ। तू समझावे मेल मिलाओ, नाम मिले चले मैं।

लिख हुकम संजोगी गढ़ दस द्वार पंच वसे मिल जोत अपार आप तुले आपे वनजार नानक नाम सवारन हार गौड़ी महला पहला जातो जाए कहां पे आवे कह उपजे कह जाए समावे।

मन से उपजे मन माए समाए, गुरुमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाग तक है आगास, देह दिस सारे कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोयल फाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरव संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन सन दे ले सहज सुभाए, नानक तिन कै लागू पाए। गौड़ी महला पहला।

होए, पर पंच व्याप रहा मन दोए, फिर नारायण करे सो होए, बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार, सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एकंकार, गौड़ी महला पहला, उल्टियो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार गगन बस द्वार, त्रिभुवन वेदिया आप मुरार, रे मन मेरे पौम न कीजे, मन माने अमृत रस पीजे रहाओ, जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर कई कर कर ते जानिया, जप सत तीरथ मज्जन नाम, अजक विचार करो किस काम, नर नारायण अंतर जाम, आन मनो तो कर कर जाओ, किस जाचो नहीं को थाओ, नानक गुरुमत।

मरण रहन रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगनपुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर शरणा रहाओ, सतगुरु मिले त दुगदा पागे, कमल विगास मन हर

आ गए होए, ज्योतिष पाना सोई हुआ, अगर न करने वाला दुआ, न जाना कर्म केवट तेरी दात, कर्म कर्म तेरे नाम की जात रहाओ, तू एवड दाता देवन हार, सोत ना ही खुद भगत पंडार, किया गर्द न आवे रात, जियो पिंड सब तेरे पास, तू मार जीवाले बख्श मिलाए, जो पावी त्यों नाम जपाए, तू दाना बीना साचा सिर मेरे, गुरमत दे परोसे तेरे, तन में मैल नाही मन राता, गुरबचनी सच शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड्याई, नानक रहना भगत शरणाई, गौड़ी महला पहला, जिन अतख कहाया अपियो पी आया, हम सह मिश्रे नाम समाया, क्या डरिए डर डरे समाना, पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर रास, सह सुभाए मिले सावास, जाए सवारे सांझ बिहाल, इत उत मन मुख बांधे काल, एनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले परम दूरे, गौड़ी महला पहला।

सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा करना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत पास्त पंडित भुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जां कह हृदय वस्या हर सोई, गुरुमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरुमत पाए परमानंद। जिन पाया गुरु देख दिखाया, आशा माहे निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत पाया रह सुखाली, बाजी एहो संसारो, लग लोभ मुझ कूड़ कमावे, बहुत उठावे।

हौ तुद आखा मेरी काया तू सुन सिखामारी निंदा चिंदा करे पराई झूठी लाए तवारी वेल पराई जो है जियड़े करे चोरी बुरियारी हंस चलिया तू पिछे रहिए छुटर होइए नारी तू काया रहिए सुपनंतर तुद क्या कर।

सुन मूरख मन अजाना, भोग तिसे का पाना, रहाओ साओ हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके वन जा रे, जियो पिंड सब रास तिसे की, मार आपे जी वाले, गौड़ी चेती महला पहला। अगर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना, मारे लूटे नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना, श्री राम नामा उचर मना, आगे जम बल बिखम कना, रहाओ उसार मरोली राखे द्वारा, पीतर बैठी सातना, अमृत केल करे नित कामन, अवर लुटेन सो पंच जना, ताहे मरोली लूटिया देहोरा, सातन पकड़ी एक जना, जम डंडा गल

जमपुर बाधाता गौड़ी चेती मेला पहला मुंद्रा से कट पीतर मुंद्रा काया की जय खिंसाता पंच चेले वस की जय रावल इहो मन की जय डंडाता जोग जुगत इव पावसता एक शब्द दूजा होर नास्त कंद मूल मन लावस्ता रहाओ मूंड मुंडाये जे गुर पाये हम गुर की नी गंगा पार त्रिभवन तारण हार स्वामी एक न चेत समझाता कर पटंग गली मन लावस संसा मूल न जावस्ता एक चरणी दे चित लावे लब लोभ की तावस्ता जपस निरंजन रचस मना काहे बोले जोगी कपट खना रहाओ काया कमली हंस इआना मेरी मेरी करत बिहानी ता प्रणवत नानक नागी दाजे फिर पाछे पस्तानी ता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक है जे कर दृढ़ चित की जय रे जन्म जन्म के पाप कर्म के पातन हारा ली जय रे मन एको सा

केते पंख उड़ाए। अटपटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे, अगो देखे पिछो देखे तुझते कहां छपावे। तट तीरथ हम नवखंड देखे अटपटन बाजारा, लेके तकड़ी तोलन लागा।

ता सबको पाग छु होए कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोए नानक करना जिन किया सोई सार करे हुक्म न जाती खत्म का किसे बढ़ाई दे।

तेरा सौ मिले वार वार हों जाओ जियो। मैं बन जारन राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ। कोकिल होवा अंब बसा सहज सबद विचार सहज सुबह मेरा सौ मिले दर्शन रूप अपार। मछली होवा जल बसा जी जंत सब सार पुरवार पार मेरा सौ वसे हों मिलोंगी बां पसार। नागन होवा तर वसा शब्द वसे कौ जाए नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए। गौरी पूर्वी।

अंत न पारावार, मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। गुरु मिले सब मत बुद्ध होए, मन निर्मल वसे सत सोए, साच वसे साची सब पार, उत्तम करनी शब्द विचार। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाणे कोए, जीवे दाता देवन हार, नानक हरना में लगे प्यार, गौड़ी ग्वारे री।

पूरे पाग मिले गुर आए, साचे सहज साथ समाए रहाओ। गुर मिले कृष्णा अग्न बुझाए, गुर ते सांत वसे मन आए, गुर ते पवित्र पावन सुच होए, गुर ते शब्द मिलावा होए। बाज गुरु सब परम पुलाई, बिन नामे बहुता दुख पाई, गुरमुख हो वैसो नाम से आए, दर्शन सत्य सच्ची पत होए। किसनो कही है दाता इक सोई, कृपा करे शब्द मिलावा होई, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साथ समावा। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, सो थाओ सच मन निर्मल होए, सच निवास करे सच सोए, सच्ची बाणी जुग चारे जापे, सब किस साचा आपे आपे। कर्म होवे सब संग मिलाए, हर गुण गावे बैस सुखाए, रहाओ जलो एह जेवा दूजे पाए, हर रस न चाखे फीका आलाए, बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नावे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाखिया सहज सुदाए, गुर कृपा ते सच समाए।

साचे राती गुर शब्द विचार अमृत पीवे निर्मल तार नाम समावे जो पांडा होए उंदे पांडे टिके ना कोए गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस सब

दावत रहे जिस सतगुरु पावे मन सन राता नाम सुहावे रहाओ इक दावे इक भगत करे नाम न पावे बिन असनेह सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना तिर राखिया सदा उद्धार भगत करे मूर्ख आप जनावे नच नच तपे बहुत दुख पावे नचिए टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वछल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभु साचा सब विद जाने नानक बक्से नाम पछाने गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोए मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे देव डिहाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मित धारा गुर अंकत मार जीवा लनहारा मन असाध साधे जन कोए अचर चरे ता निर्मल होए गुरमुख एव मन ले।

नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी ग्वारे री महला की जा होमे विच सब जग बोराना दूजे पाए परम फुलाना बहुत चिंता चितवे आप न पछाना तंदा करत्या अंदिन विहाना हृदय राम रमो मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ गुरमुख हृदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हो मैं मार गुर शब्द पछा।

हर कृपा ते हर वसै मन आए। राम राम करत्या सुख सां शरीर, अंतर वसै न लागे जंपीर, आपे साहिब आप वजीर, नानक सेव सदा।

जे तुझ आप फुलाए तिन तू विसरे जे दूजे पाए मन मुख अज्ञानी जो नी पाए मन मुख अज्ञानी जो नी पाए जिन एक मन तुठा से सतगुरु सेवा लाए जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए।

तहां गुपत प्रगट प्रभु बनत बनाई, आपे सुतिया देह जगाई, किसकी कीमत किने न होई, कह कह कथन कहे सब कोई, गुर शब्द समावे बूझे हर सोई, सुन सुन वेखे शब्द मिलाए, वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, मनमुख सूता माया मोह प्यार, गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार, से जन जागे जिन नाम प्यार, सहजे जागे सवे न कोए, पूरे गुर ते बूझे जन कोए रहाओ, असंत अनाड़ी कदे न बूझे, कथनी करे ते माया नाल लूझे, अंध अज्ञानी कदे न सीजे, इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुर शब्द विचारा, आप करे सगले कुल उधारा, इस कल युग में कर्म कर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम बिना को मुक्त न होई, गौड़ी महला तीजा, ग्वारे री सच्चा अमर सच्चा पातशाह, मन साचे राते हर वे

परमे आवे परमे जाए ते जग जन्मिया दूजे पाए मन मुख न चेते आवे जाए आप फुला के प्रभ आप फुलाया इहो जियो विडानी चाकरी लाया मां दुख खटे बिरसा जंगवाया कृपा कर सतगुरु मिलाए एको नाम चेते विच्चों परम चुकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा जिना गुरुमुख त्याया तिन पूछो जाए गुरु सेवा ते मन पति आए से तनवंत हर नाम कमाए पूरे गुर ते सोजी पाए हर हर नाम जपो मेरे पाई गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ आप पछाणे मन निर्मल होए जीवन मुक्त हर पावे सोए हर गुण गावे मत उत्तम होए सहजे सहज समावे सोए दूजे पाए न सेवे आ जाए हों मैं माया महा बिख खाए पुत कुटुंब गृह मोहया माए मन मुख अंधा आवे जाए हर हर नाम देवे जन सोए अंजन भगत गुर सबदी होए गुरमत विरला बूजे कोए नानक नाम समावे सोए नानक नाम समावे सोए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा गुर सेवा जुग चारे होई पूरा जनकार कमावे कोई अखुट नाम तन हर कोट न होई ऐसे सवा सुख दर शोभा होई ए मन मेरे परम न कीजे गुरुमुख सेवा अमृत रस पीजे रहाओ सतगुर सेवे से महापुरुष संसारे आप उदरे कुल सगल निस्तारे हर का नाम रखे उदारे नाम रते पौजल उतरे पारे सतगुर सेवे सदा मन दासा हो मैं मार कमल परगासा अनहद वाजे निज कर वासा नाम रते कर माहे उदासा सतगुर सेवे तिन की सच्ची बाणी जुग जुग पवती आस वखाणी हम दिन जपें।

हृदय नाम नित हर रस कोग, गुरुमुख प्राणी नाम हर चाहे, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान स्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा से किने विरले चख जीठा, कर्म कांड बहु करे अचार, बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार, बंधन बांधियो माया पास, जन नानक छूटे गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती ऊपर मेघुला बरसत है, क्या धरती मदे पानी नाही, जैसे धरती मदे पानी प्रगासिया, बिन पगा बरसत फिराही।

पुरुष होए के क्या होए कर्म समाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझ ही माहि समाही। इतने जन्म फूल परे से जा पाया ता फूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने जे गुर के सबल समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाई, नानक तत् तत् क्यों मिलिया पुनरप जन्म न आही। गौरी बैरागन महला तीजा, सब जग काले वस है बांदा दूजे पाए, हो मैं कर्म कमाऊं दे मन मुख मिले सजाए, मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निधान ले दरगे ले छबाए। रहाओ लक्ष चौरासी परम दे मन हट आवे जाए, गुर का शब्द न चीने हो फिर जो नहीं पाए, गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आए, हम दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए हो मैं तजे विकार, जन नानक करमी पायन हर नामा भगत पंडार। गौरी बैरागन महला तीजा, कई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया, शोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया, तेल करे गुण समले सौरे वास पाया, गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया। ससुरे पेये फिर वसे कहो कित विद पाये, आप निरंजन अलख है आपे मेलाये। रहाओ आपे ही प्रभ देह मत हर नाम ते आये, वड़पागी सतगुर मिले मुख अमृत पाये। हो मैं दुबदा बिनस जाए सहजे सुख समाये, सब आपे आप वर्तदा आपे नाए लाये। मन मुख गर्भ न पायो अज्ञान इयाने, सतगुर सेवा न करें फिर पछताने। गर्भ जो नी वास पाए दे गर्भे गल जाने, मेरे करते एवे पामदा मन मुख परमाने। मेरे हर प्रभ लेख लिखाया दुर्मस्तक पूरा, हर हर नाम से आया पेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंधक बीरा हर हर बस मिलाए प्रभु जन नानक कीरा। गौरी बैरागन महला तीजा, सतगुर ते ज्ञान पाया हर सत बिचारा, मत मलीन प्रगट पई जत नाम मुरारा, शिव सकत मिटाया चूका अंधियारा। तुरमस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा, हर कित विद पाई है संत जनो जिस देख हो जीवा, हर दिन चसाना जीवती गुर मेलियो हर रस पीवा। रहाओ हर हर गुण गावा नित हर सुनी, हर हर गक्कीनी हर रस गुर के पाया मेरा मन तन लीनी। तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी। गुण दाता हर

हर शरणागत राखले हो, मूड मुग्ध निस्तारे सहज आनंद सदा गुरुमति, हर हर मन प्याया सज्जन हर प्रभ पाया, पर सोहेला गाया हर दया तार प्रभ बेनती, हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन, जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, चौथा चौक दे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। पंडित खास सिमरत पढ़िया, जोगी गोरख गोरख करिया, मैं मूरख हर हर जप पढ़िया, ना जाना क्या गत राम हमारी, हर पद मन में

सूद वैश पर किरत कमावे, मैं मूरख हर नाम छुड़ावे। सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक दे वड्याई। मैं अंधले हर टेक टिकाई, मैं अंधले हर टेक टिकाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की। पज मिल साधु संगत जन की, पर पौजल अकत कथा सुन हर की। गोविंद सत संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन प्यावे हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे। सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेण वड पागी पावे। संत जना स्यो प्रीत बन आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई। ते जन नानक नाम समाई, ते जन नानक नाम समाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, माता प्रीत करे पुत खाए। मीने प्रीत पई जल नाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए। ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे। रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर कर आवे। हर जन प्रीत जा हर जस गावे, सारंग प्रीत बसे जल तारा। नरपत प्रीत

जन नानक प्रीत साब तग चाटे। गौरी ग्वारे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए। भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए। हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी, हर कृपा लोच पूर हमारी। रहाओ चटवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारे सब दुख त्यागे। गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे, बछरे प्रीत खीर मुख खाए। हृदय बिबसे देखे माए, गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए। और सब प्रीत माया मोकाचा, बिनस जाए कूड़ा कच पाचा। जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा, जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा। गौरी ग्वारे री महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी। जित मिल हर नाम।

हर बोलत सब पाप लह जाए। राव जब गुर मिलिया तब मन वस आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदिन नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग तूर जिना मुख लाई, तिन कूड़ त्यागे हर लिव लाई, ते हर दरगे मुख उजल पाई। गुर सेवा आप हर पावे, कृष्ण बल पद्र गुर पग लग त्यावे, नानक गुरुमुख हर आप तरावे, नानक गुरुमुख हर आप तरावे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी, हर आपे रब रया बनवारी, हर आपे तप पापे लाए तारी। ऐसा मेरा राम रहा तरपूर, निकट वसे नाही हर दूर। रहाओ हर आपे सबद सुरत तुम आपे।

हर आप जपाए आपे हर जापे, हर आपे सारंग अमृत तारा, हर अमृत आप पियावन हारा, हर आप करे आपे निस्तारा, हर आपे बेड़ी।

चौथा साहो हमारा तू कणी जैसी तू रास दे तैसी हम ले हर नाम बनन जय रंग से हो जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के हर वंज करावे दे रास रे रहाओ लाहा हर तगत तन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया और वणज करें व्यापारिये अनंत तरंगी दुख माया कोई जे है वणज हर लाया फल से हाथिन पाया हर हर वणज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ दे जन नानक सा।

आए। हल जोते उद्यम करे मेरा पुत ती खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए। मैं मूरख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर सेवा।

आई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा हौ कुर्बानी गुर अपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहारा मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार मत निर्गुण हम मेले कबहू अपनी कृपा तार रहाओ हमरे अवगुण बहुत बहुत हैं बहु बार बार हम

सतगुरा, जब गुरु बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अगर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छदाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदब मेरा।

गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग न मेरा क्या मोह ले बोले गुण बिहू।

जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गुलामी। गौड़ी बैरागन महला चौथा। जो जननी सुत जन पालती राखे नगर मझार अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुरु गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारिक हर प्रभु के।

त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखे जी नाली। जैसे काकी तीस बतीस है, विच राखे रसना मास रत केरी। कोई जानो मास काकी कै किछ हाथ है, सब वसगत है।

मरा ताप सिरत साप सब हर कै बस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंति औ

कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए तोटा मूल न आवई हर लाभ नित दृढ़िए।

नानक तिस गुर मिल उदरे हर गुण गावाही। महला चौथा गौरी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी। मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पाया अत गूड़ा। हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर पद की हौ बोली। जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली। रहाओ करो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली। हर हर रूप सब जोत सवाई हर निकट वसे हर कोली। हर हर निकट वसे सब जगते अपरंपर पुरख अतोली। हर हर प्रगट कियो गुर पूरे सिर वेचियो गुर कह मोली। हर जी अंतर बार तुम शरणागत तुम वड पुरख वडोली। जन नानक अन दिन हर गुण गावे मिर सतगुर गुर वे चोली। गौरी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीशर पुरख विदाते। जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी तित मार्ग हम जाते। राम मेरा मन हर सेती राते सत संगत मिल राम रस पाया। हर रामे नाम समाते। रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते। तिनके पाप दोख सब बिन से जो गुरमत राम रस खाते। जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते। दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते। राम तुम आपे आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर न दाते। जन नानक नाम ले ता जीवे हर जपिए हर के।

हो सतगुर मेल मेरा प्राणे, राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने, हम मूर मुग्ध अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर के बचन हर हम जाने, राव जितने रस अनरस हम देखे, सब तितने फीक फीकाने, हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गाने, जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया, ते साकत मूड दीवाने, तिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोय कचाने, जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने, जन नानक हर हर, हर

मसीहे हर आपे बस ले प्रभ साचा हर आप छदाए छुटी है मेरे मन जप हर हर हर मन जपी है सतगुर की शरणाई पज पो मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटी है रहाओ मेरे मन सेवो सो प्रभ सर्व सुख दाता जित सेवे निज कर वसी है गुरुमुख जाए लहो कर अपना कस चंदन हर जस कसी है मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम ले लाहा हर मन हसी है हर हर आप दया कर देवे ता अमृत हर रस चखी है मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे ते साकत नर जम कुटी है ते साकत चोर जिना नाम विसारिया मन तिनके निकट न पिटी है मेरे मन सेवो अलक निरंजन नर हर जित सेवे है लेखा छुटी है जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल न कटी है गौड़ी पूर्वी महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करो हर दर्श दिखावो मेरे मन सन लोच कनेरी राम मेरे मन सन लोच मिलन हर केरी गुर किरपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिलिया आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी अंदिन नाम जपी सुख पाई नित जीवा आस हर तेरी गुर सतगुर दाते पंथ

मन ठाडे राम हम सतगुरु लाले कांडे रहाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साडे पर उपकार पुन बहु किया पौ दुतर तार पराडे जिनको प्रीत

ना जाने आगे जो हर राखे त्यों ठाने हम फूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे काडे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है राव सात हर रस साध।

जन नानक गुर के लाले बोले लग संगत करुआ मीठा गौड़ी पूर्वी महला चौथा हर हर अर्थ शरीर हम बेचिया पूरे गुर के आगे सतगुर दाते नाम दृढ़ाया मुख मस्तक पाग सब आगे राम गुरमत हर लिव लागे राम गुरमत हर लिव लागे रहाओ तट पट रमैया रमत राम राए गुर शब्द गुरु लिव लागे हो मन तन देवो काट गुरु को मेरा परम को गुरु बचनी पागे अंधियारे दीपक आन जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागे अज्ञान अंधेरा बिनस बिनास्यो कर वस्त लही मन जागे साकत बदक माया तारी तिन जम जोहन लागे उन सतगुर आगे शीश ना बेचिया ओए आवे जाए अपागे हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगे जन नानक की लज पात गुरु है सिर बेचो सतगुर आगे।

तन तन गुरु हर राया, राम गुर के बचन हर पाया। रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुरु मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुरु।

जाया हम अपराध पाप बोकी ने कर दुष्टि चोर चुराया अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद गुरमत मनुआ गावे बद पागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे हम मल मल तोवे पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे हृदय गुरमत राम रसायन जिहवा हर गुण गावे मन रसक रसक हर

ब्रह्मा मत माता मत जियो नाम मुख रामा संतोख पिता कर गुर पुरख अजन्मा बड़ पागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो वड पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो मेरा मन तन हर रंग तिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा रिच संगत नाम सदा लैलाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूरब लिखियड़े तुर कर्मा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया।

करी हाजियो मिल संत जना रंग माने रलिया जियो गुर दीपक ज्ञान सदा मन गलिया जियो हर तुठे टुल टुल मिलिया जियो मेरे मन तन प्रेम लगा।

मन अनदिन अनद्रस जियो, हर पायणा वद पागई मेरे गोविंदा, नित लैला हा मन हस जियो। हर आप उपाय हर आपे देखे, हर आपे कार लाया जियो। इक खावे बस तोट ना आवे, इक ना फक्का पाया जियो। इक राजे तख्त बहे निक सुखिए, इक ना भिख मंगाया जियो। सब इको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा, जन नानक नाम ते आया जियो। गौरी माज महला चौथा, मन माही मेरे गोविंदा, हर रंग रता मन माही जियो। हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा, गुरपुरा अलख लखाही जियो। हर हर नाम परदास।

हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख विहानी रहनी जियो। मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन, मैं मन तन भुख लगाया जियो। हऊ रह ना सकूं बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो। हर राया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो। मेरे मन तन आशा पू

हर प्रभ मेरा चोजी जियो, हर आपे कान उपाईदा मेरे गोविंदा, हर आपे गोपी खोजी जियो, हर आपे सब

ताजी वाजियो मन अंदर अमृत गुरमत हर मुनिवा जियो मन हर रंग रतना हर रस सदा पीवा जियो हर पायड़ा मन जीवा जियो मेरे मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो गुरमेले संत हर सुगड़ सुजान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो हर नामे नाम समाई जियो मैं वेदन प्रेम हर बिरहों लगाई जियो गुर सरदा पूर अमृत मुख पाई जियो हर हो दयाल हर नाम त्याई जियो जन नानक हर रस पाई जियो महला पंजवा राग गौड़ी ग्वारेरी चौपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद किन विद कुशल होत मेरे पाई क्यों पाई हर राम सहाई रहाओ कुशल ना ग्रह मेरी सब माया ऊंचे मंदर सुंदर छाया झूठे लालच जन्म गवाया हस्ती कोड़े देख विगासा लस्कर जोड़े नेब खवासा गल जेवड़ी हों मैं के फासा राज कमावे दैग सारी माने रंग पोग बहुनारी जो नरपत सुपने पे खारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किछ करे सो हर क्या पगता पाया जन नानक हों मैं मार समाया इन विद कुशल होत मेरे पाई क्यों पाई है हर राम सहाई रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा क्यों प्रमी है प्रम किसका होई जा जल थल मैयल रविया सोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखे आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब में वर्ते एक अनंता ताकू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किछ जान।

साफ कर उपाया, लख 84 जोन परमाया, साध संग पयो जन्म परापत, पर सेवा पद हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरहे दर्दे पर

उपाव छोट गहो तिसकी ओट, निमख माहे होवे तेरी छोट, सदा निकट कर तिसनो जान, प्रभ की आज्ञा

अविनाशी, गुर के बचन कटी जम फांसी, गुर का बचन जी के संग, गुर के बचन रचे राम के रंग, जो गुर दिया सो मन के काम, संत का किया सत्कर्मान रहाओ, गुर का बचन अटल अछेद, गुर के बचन कटे परम पेद, गुर का बचन कतो न जाए, गुर के बचन हर के गुण गाए, गुर का बचन जी के साथ, गुर का बचन

सब पूरन आशा, सिमरो दिन रहन सास गिरासा, जिस प्रसाद माया सिल्क काटी, गुर प्रसाद अमृत बिख खाती, तो नानक इस्ते किछ नाही।

एको मन एको सब ठाए, पूरन पूर रहो सब जाए, गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया, गौरी ग्वारे री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे, जो उबरे से बंद लख थरे।

सिर ऊपर ठाडो तब हराए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतुर सियाणा, करने हार न बुझे बिगाना। अपनी गत मित आपे जाने, क्या को कहे क्या आख वखाने। जित जित लावे तित तित लगना, अपना पला सब काहू मंगना।

पहला पंजवा अनिक जतन नहीं होत छुटारा, बहुत सियाणत आगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभ की दरगे शोभा सेत। मन मेरे गहो हर नाम का।

हजन शीत का लाह सुख, नाम जपत मन होवत सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिस आप दिवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसे, दुख दर्द ते नानक नसे। गौड़ी द्वारे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर मन ना अघाना। अनक रूप देख न पतियाना, पुत्र कलत्र उर्जो जान मेरी। ओ बिन सह ओ पसमे तेरी, बिन हर पर...

तन त्रिग तन माया संग राते राव जो बिगारी कैसिर दीजे दाम ओए खसमे कै गृह उन दुख सहाम जो सुपने हुए बैस

पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाये राम के दासा। कौन सो विद जित राम गुण गाए, कौन सो मत जित तरह ए माए राव। जो पलाई

जो हलाहल सो पीवे बौरा अमृत नाम जाने कर कौरा साध संग के नाही नेर लख चौरासी परमता फेर एक जाल पहाए पंखी रस रस को

तुद पावे ता सतगुरु मया सर्व सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद पावे सो निर्मल कर्मा, जो तुद पावे सो सच धर्मा, सर्व निदान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेवक अरदास, मन तन निर्मल होए हर रंग।

ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कतहु जाइए, साध संगत वड पा।

हर गुण दावत रसन अमौली बनस्पत मौली फल फूल पे दे ए रस राती बहु न छोड़े आन न रस कस लवे न लाई कहो नानक गुरु पे हैं सहाय गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा मन मंदर तन साजी बार इसी मदे बस्त अपार इसी पीतर सुनियत साओ कवन बपारी जाका उहां विसाओ नाम रतन को व्योहारी अमृत भोजन करे आहारी रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय कवन सो जुगत जित कर पी जय पाए लगो तज मेरा तेरे कवन सो जन जो सौदा जोरे।

सद ही संगार ठाकुर नाम कियो उन्वर्तन त्रिपत अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हर सोग दोहू ते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दिसे सब में सबते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान करते संतन की महिमा कवन वखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहे कृपा।

मोहि करना जह के खो तहां तुम बसना, निरपो नाम जपो तेरा रसना। तू मेरी नवनिध तू पंडार, रंग रसा तू मन है आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही से आया, मरम तुम्हारा गुर ते पाया। सब गुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर ते कै। गौड़ी ग्वारेड़ी महला पंजवा, व्यापत हरख सोग विस्थार। व्यापत सुर्ग नरक अवतार, व्यापत तन निरतन पेख शोभा। मूल व्यादि व्यापस लोभा, माया व्यापत बहु प्रकारी। संत जीवे प्रभ ओट तुम्हारी, रहाओ व्यापत अंग बुद्ध का माता। व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता, व्यापत हस्त कोड़े अर बस्ता। व्यापत रूप जोबन।

व्यापत कर्म करे हो फासा, व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा, आचार व्यवहार व्यापत ए जात, सब कुछ व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापै माए, तहु नानक जिन तू

समाद। इस गृह में कोई जागत रहे साबत वक्त को अपनी लह रहाओ सगल सहेली अपने रस्माती गृह अपने की खबर न जाती मुसनहार पंच बटवारे सुने नगर परे ठगहारे उनते राखे बाप न माई उनते राखे मीत न पाई दर्ब स्यानप ना ओई रहते साध संग ओई दुष्ट वस होते कर कृपा मोय सारंग पान संतन तूर सर्व निधान सागत पूंजी।

सगल भगत जाका नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तने जाकी शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कहे, जिस सिमरत जम किछु ना कहे, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा तो सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार। कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सतगुर दर्शन अग्न निवारी। सतगुर पेत तो हूं मैं मारी, सतगुर संग नाही मन डोले, अमृत बाणी गुरुमुख।

संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल ते आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक।

जाते है और ब्रह्म परमेश्वर क्या है गुरु पूरे ते ए मत पाए रहाओ करण करावन हार दयाल जी जंत सगले प्रतपाल अगम अगोचर।

प्रब सेवक साचा वेसा हो गुरपुर रथ दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे महला पंजवा गुरु प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ बाणी पूरे गुर की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बाँ पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुने चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर करे साध के संग सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खटियो जाका नहि सुमार जिसे प्राप्त किस गुर दे नानक बिरथा कोई नहे गौड़ी द्वारे री महला पंजवा हस्त पुनीत हो।

माया मगन न सचुए मोह उदरे आप करे संसार राम नाम जप के संकार आप कमाओ अमरा उपदेश राम नाम हृदय प्रवेश जाके माथे एहो निदान सोई पुरख जपे भगवान आप तैर हर हर गुण गाओ कहो नानक हो तिस

किरत संजोग सती उठ होई रहाओ। देखा देखी मन हट जल जाये, प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये। शील संजम प्रिय आज्ञा माने, किस नारी को दुख न जमाने। कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया, तन सती दरगे परवानिया। गौरी ग्वारेरी महला पंजवा, हम तनवंत पाग

सतगुरु अपने कौ बलिहार है, छोड़ न जाई सर पर तारे रहाओ। दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा पला कोई ना कही जाए, छोड़ मान हर चर

रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो जाका तहया दर्दे चले सो किसको नजर ले आवे तले जाका सब किस

सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए, ताको चिंता कतहु नाहे, जाके दिन सो मन से फरमा, ताके कछु नाही डर जमा, जाके हृदय दियो गुरु नामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन में थाना, गुरु प्रसाद किने विरले जाना, सहज कथा के

आपन तन नहीं जाके दरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं काको लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ, सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोयना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम, कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, किसका सब किस जिसका।

हरसा प्रीतम कर मन मीत, प्राण आधार राखो सब चीत रहाओ। रे मन मेरे तू ताको सेव, आद पुरख अपरंपर देव, किस ऊपर मन कर तू आसा, आद जुगाद जा का परवासा, जा की प्रीत सदा।

कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ आया, केवल नाम रिदमाए समाया। गौड़ी महला पंजवा, काकी माई काको बाप, नाम का रीत झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

राज योग हर के मार्ग पतित पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सद वसै हदूरा कहु नानक मेरा।

के अघकोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग मिटिया अंकार दृश्य आवे सब एक अंकार संत सो प्रसन्न आए वक्त पंचार अमृत नाम हृदय ले संचार कहो नानक जाका पूरा कर्म किस केते साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल प्रगाते हर सिमरत त्रास सब नाते सामत पूरी जित हर गुण गावे वडे पाव साधु संग पावे रहाओ साध संग पाये निज नामा साध संग पूरन सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम बखान कहो नानक सो जन परवान जाके हृदय वसे भगवान गौड़ी महला पंजवा एक जाका मन राता विसरी तिसे पराई पाता बिन गोविंद ना दिसे कोई करण करावन करता सोई रहाओ मने कमावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत्कत है न डोले जाके हर तन सो सत्साओ गुरपूरे कर दीनो विसाओ जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा नाम भगत के प्राण आधार नामो तन नामो व्योहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत के सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे सास सास जन नाम समारे कहो नानक जिस पूरा पाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा संत प्रसाद हर नाम से आया तब के तावत मन तृप्ताया सुख विश्राम पाया गुण गाए श्रम मिटिया मेरी हति बलाए रहाओ चरण कमल आराध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊंच स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसिया करण हार नानक मन

हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, इस जन दुख निकट नहीं आवे। हर की टहल कर जन सोहे, ताको माया अगर न पोहे, मन तन मुख हर।

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरपूरा पेटिया लिव लाए, रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेजम जाल, कहो नानक गुर पूरा पाया, ताके बहुर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा, रास लिया गुर पूरे आप, मन मुख को लागो संताप, गुरु

चोर मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुख छीना रहाओ। अनेक वस्त्र सुंदर पहराया जो डरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम नेफल मानुक जपे नहीं नाम। कहो नानक जा को कहे दयाला साध संग मिल पजे गोपाला। गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे। तय दिन से निरपो हर के आया साध संग हर के गुण गाया रहाओ। चरण कवल रिद अंतर तारे अग्न सागर गुर पार उतारे। बूढ़त जात पूरे गुर कांडे जन्म जन्म के टूटे गांडे। कहो नानक किस गुर बलिहारी जिस पेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा साध संग ताकी सरनी परो मंतन अपना आगे तरो। अमृत नाम पीवो मेरे पाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ। तज अभिमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो। सास सास प्रभ मने संभाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसे प्राप्त जिस मत।

अमृत दृष्टि संत जीवाए, पाते कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण पासा, दुख नाठे सुख आए समाए, कील न परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक के जन सुख।

सिमरत सिमरत प्रभु का नाम, सगल रोग का बिरसिया खाओ। सहज सुभाए बोले हर बाणी, आज पहर प्रभु सुमरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हौ बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल ओ परी, जित रसना उचरे हर हरी। सफल ओ माथा संत नमस्कार, चरण पुनीत चले हर मार्ग। कहो नानक भला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, गुरु का शब्द रास मन माहे। नाम सिमर चिंता सब जाहे, दिन भगवंत नाही अनकोए। मारे राखे को सोए, रहाओ गुरु के चरण हृदय उद्धार। अगन सागर जब उतरे पार, गुरु मूरख सो लाए ध्यान। ईहा ऊहा पावे मान, सगल त्याग गुर शरणी आया। मिटे अंधे से नान सुख पाया, गौड़ी महला पंजवा। जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसे मन आए। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी। रहाओ इक्कस बिन नाही दूजा कोए, जाकी दृष्ट सदा सुख होए। साजन मीत सखा कर एक, हर हर अक्षर मन में लेख। रव रया सर्वत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, तै में रचियो सब संसारा। तिस पौ नाही जिस नाम अधारा, पौ ना व्यापे तेरी सरना। जो तुझ पावे सोई करना, रहाओ सोग हरख में आवन जाना। तिन सुख पाया जो प्रभु पाना, अगन सागर मा व्यापे माया। से शीतल जिन सतगुरु पाया, राख ले।

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से ब्रह्म पौ पागे, पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सतरास, गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे सोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग जे बिगानी, रहाओ नाम बिना नाही।

जो कुछ वर्तै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रभु दान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्श पाये वड पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके

ताके संग किलविक दुख जाए, जन की महिमा कथी न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय, गौरी महला पंचमा। हर सिमरत तेरी जाए बनाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

ता निर्मलमंता सोड उपाव एक टेक राख महापदार्थ अमृत रस चाख बिखम सागर ते जन तरे नानक जाको नदर करे गौरी महला पंजवा हृदय चरण कमल प्रभ तारे पूरे सतगुर मिल निस्तारे गोविंद गुण गावो मेरे पाई मिल साधु हर नाम से आई रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग तय परम मिटाया जत तत देखो तत

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर सो लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा। करे दो कर्म दिखावे होर, राम की दरगह बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल तल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बादा चोटा खावे, अनित पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक किसके

हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूरन पुरुष विदाता रहाओ, संते संग बैठ गुण गाए, ताका रंग न उतरे जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया।

नाम जपत सब मिट्यो अंदेशा रहाओ साध संग कछ पौ ना पराती गुण गोपाल गाये दिन राती कर कृपा प्रबंधन छोटे चरण कमल की दीनी ओट कहो नानक मन पई प्रतीत निर्मल जस की रह जननीत गौड़ी महला पंजवा हर चरणी जा का मन लागा दुख दर्द प्रमता

सांस आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिटे कलेश चरण कमल मन में प्रवेश उचरो राम नाम लख बारी अमृत रस की वो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध के संग किल बिख सब टोए कर कृपा प्रभ जी।

तिस्यों आलस क्यों बने माए, खसम विसार आन कम लागे, कौडी बदले रतन त्यागे, रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोबा, दास सलाम करत कत सोबा, अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तिसे न जाने स्वान, कहो नानक हम लून हरामी, बख्श ले हो प्रभु अंतरगामी। गौड़ी महला पंजवा, प्रभु के चरण मन माए ध्यान, सगल तीर्थ मजन स्नान, हर दिन हर सुमरन मेरे पाई, कोट जन्म की मल ले जाए, रहाओ हर की कथा हृदय माए बताए, मन बाचत सगले फल पाए, जीवन मरण जन्म परवान, जा के हृदय वसै भगवान, कहो नानक से जन पूरे, जिना प्राप्त साधु पूरे। गौड़ी महला पंजवा, खादा पहनदा मुँह कर पाए, किसनो जो है दूत धर्म राए, किस त्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना, कोट जन्म पर मैं बहुजूना, रहाओ साकत की ऐसी है रीत, जो किस तरह सगल विपरीत, जियो प्राण जिन मन तन तारिया, सोई ठाकुर मनो विसारिया, बजे विकार लिखे बहु कागर, नानक उदर कृपा सागर, पार ब्रह्म तेरी।

सगल मनोरथ मुक्त पद दीत, ऐसा मीत करो सब कोए, जाके बिरथा कोए न होए। रहाओ अपने स्वाय हृदय ले सारिया, दुख दर्द रोग सगल बिदारिया। रखना गीदी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम। अनेक बार नानक बलिहारा, सफल दर्शन गोविंद हमारा। गौड़ी महला पंजवा, कोट बिगन हिरे खिन माहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे, पीवत राम रस।

औखद मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सब सब परम सजियो पार ब्रह्म कहो नानक अटल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग ना व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुरु मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै सहाई मान मोह खोए गुर परम तेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौरी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का ठौर न ठाओ चरण

कर कृपा प्रभ लय निवारे, ऐसा हर रस रमो सब कोए, सर्व कला पूरन प्रभ सोए। रहाओ महातप सागर संसार, प्रभ खिन में पार उतारन हार, अनित बंधन तोरे नहीं जाहे, सिमरत नाम मुक्त फल पाए, उकत स्यान किसके कछ नाहे, कर कृपा नानक गुण गाहे। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम, विचर संसार पूरन सब काम, वड पागी हर कीर्तन गाये, पार ब्रह्म तू देहता पाये। रहाओ हर के चरण हृदय उर्धार।

ब्रह्म बिन से गाए गुण नीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ, जा कह सिमरन जम नहीं डरुआ, रहाओ चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल दुख का होया नास, आशा मान तान तन एक, साचे साकी मन में टेक, महा गरीब जन साध अनाथ, नानक प्रभ राखे देहात, गौरी महला पन्नवा, हर हर नाम मजन कर तूचे, कोट ग्रहण पुन फल मूचे, रहाओ हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किल विखनते, साध संग कीर्तन फल पाया, जम का मार्ग दृष्ट न आया, मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुटियो बिक संसार, कर कृपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना, गौरी महला पंजवा, पौ शरणाई जिन हर जाते, मन तन शीतल चरण हर गाते, कै पंजन प्रभ मन ना बसाही, दरपत दरपत जन्म बहुत जाही, रहाओ जा कै हृदय बस्यो हर नाम, सगल मनोरथ ताके पूरन काम, जन्म जरा मृत जिस वास, सो समरथ सिमर सास गिरास, मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक, गौड़ी महला पंजवा, बार राख्यो हृदय समाल, कर आए गोविंद ले नाल, हर हर नाम संतन कै संग, मन तन राता राम कै रंग, रहाओ गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किल विख सब हिरिया, शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत, चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जीवे प्रताप, गौड़ी महला पंजवा, तन एहो थान गोविंद गुण गाए, कुशल खेम प्रभ आप बसाए, रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जह हर गुण गाही, हर विसरिय दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे ननेरे, सोवड पागी निचल थान, जह जपिय प्रभ केवल नाम, जह जाय तह नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी, गौड़ी महला पंजवा, जो प्राणी गोविंद त्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परम

रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मानिया प्रब का पाणा, जग में आया सो परवान, कट कट अपना।

अंधकूप ते काढे आप गुण गोविंद अचरज प्रताप वन त्रिण त्रिभुवन पूरन गोपाल ब्रह्म पसार जी संग दयाल कहो नानक साथ।

साध तूर कर सुड मंजाई, अनक जला जे तो वै दे मैल न उतरे सुध ना पे। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौकाल, मुकत पुगत जुगत हर नाम।

हर का सिमरन सुन मन कानी, सुख पावे हर द्वार प्राणी। रहाओ आज पैर आई है गोपाल, नानक दर्शन देख निहाल। गौड़ी महला पंजवा सांत पाई, गुरु गोविंद पाई। पाप पाप दिन से मेरे पाई, रहाओ राम नाम नित रसन बखान। दिन से रोग पे कल्याण, पार ब्रह्म गुण अगम विचार।

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की कैद रखी करकारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मारे।

अस्थिर पर बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौरी महला पंजवा, कोट मज्जन चीनो स्नान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे, अनेक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम।

नाम जपते प्रभु सो मन माने, अदाज बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभु कृपा धारे। गौरी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरु हृदय बसाया, गुरु गोविंद।

नित प्रतिपारे बाप जैसे माई, प्रभु की शरण उभरे सब कोए, करण करावन पूर्ण सच सोए रहाओ। अब मन बसिया करने हारा, कै दिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापे काई। रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निर्भोगाई। गौरी महला पंजवा, उज बल वीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत गह लेहो अंगुरिया, रहाओ श्रवण ना सुरत, नैन सुंदर नहीं आरत। द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ, करुणा में साजन नीत।

करी ना जीवना त्रिग्रहणा संसार जी प्राण सुख दात्या निमक निमक बलिहार जी हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्तो

हर कल्याण सुख सच पावे रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिजले काहू एक लिवलागी, जिन हर पाया सेवड पागी। ब्रह्मादित सनकादित चाहे, जोगी जति सिद्ध हर आहे। जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहे, ताकी शरण जिन बिसरत नाही। वद पागी हर संत मिला।

तो संत मिले वडपागी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोय सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे हम दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरुष रसिक बैरागी मिटियो अंधेर।

है कोई संत मिला वे नेरा रहाओ। सेवा करो दास दासन की अनित पांच किस करो निहोरा। तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा। संत प्रसाद दाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा। अनद सुख पेटत।

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोह मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हूँ मैं पाई माया मोह सबो जग सोया क्यों परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते पाई एक बस्त दिन पंच दुहेले ओ बस्त अगोचर ठाई जिसका ग्रोह तुम दिया ताला कुंजी गुर सो पाई।

कर कृपा संत मिले मोहतिन के तीरज पाया संती मंत दियो मोह निरपो गुरु का शब्द कमाया जीत ले ओए महाविखादी सहज सुहेली बानी कहो नानक मन पाया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा ओ अविनाशी राया निरपो संग तुम्हारे बसते इहो धर्म कहाँ ते आया रहाओ एक महल तू होए असारो एक महल निमानो एक महल तू आपे आपे एक महल गरीबानो एक महल तू पंडित बखता एक महल खल होता एक महल तू सब कुछ ग्राहज एक महल कछु न लेता काश की पुत्री कहाँ करे बकरी खिलावन हारो जाने जैसा पेट करावे बाजीगर ओ कैसो ही साज आने अनक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या हो करे बिचारा जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक अप

क्यों फिर कह रहे आओ पशुआ रहाओ, जो जाने तू अपने काजे, सो संग ना चाले तेरे पशुआ। नांगो आयो नाग सुदासी, फेर फिरो अरकाल ग्रसुआ। एक देख रे कसुम की लीला, राज मात तिन्हों।

जो मोहयो उन मोहनी बाला उसके कटे नाही रुच चसुआ जग ऐसा मोहे गुरह दिखायो तो शरण पर्यो तज गर्भसुआ मार्ग प्रभ को संत बतायो दृढ़ी नानक दास पग

सदन सुहेले सर्व सुखा में तुझते पाए मेरे ठाकुर अगे अतोले वरन ना साको तुमरे रंगा गुण निधान सुख दाते अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते प्रम्पो काट किए ने केवल जब से हूँ मैं मारी जन्म मरण को चू

जन पार ब्रह्म रंग राते सूख सहज आनंद तिना संग उन समसर अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण पर ऐसो तरिया संत संग पूर्ण आसा। ताके चरण पर होता जीवा जन के संग निहाला भगतन की रेण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला। राज जोवन अवध जो दिस है सब किछ जुग में तातया नाम निधान।

पंच चेले मिल पे इकतरा एक के वस्तिये दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थी कर्म जराए चराई विपूता पंच एक कर पेखिया सहज सुख सोकीनी पुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जय कहो नाही ता आसन बांधियो सिंगी अनहत बानी तत विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वद पागी पे तै माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औषध जाको गुर दिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो तिह तंते गुर शब्द दीपक पर दासा।

रंगा पूरन हुई मन की आशा गुरु के त्योहर रंगा नाम खजाना पगती पाया मन तन तृप्त।

तुम प्रवराते पोत पोत भगतन संग जोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत में तेज किछ नाही एक जन कई महलाख करोरी जा कहिय प्रगट प्रभु हुआ हम दिन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अत ऊंचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक को प्रभु की जय कृपा उन संतन के संग संगो।

ईंट ऊंट प्रभ तुम समरथा, सब कुछ तुम रहे हाथे, ऐसा निधान देहो मोको, हर जने चले हमारे साथे, निर्गुण आरे को गुण की जय, हर नाम मेरा मन जाते, संत प्रसाद नान खर पेटे, मन तन शीतल त्राके, गौरी महला पंजमा, सह समायो देव, मोको सतगुर

जिन तारे ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जय रे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाए रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याए रे कोट पतित उधारे खिन में करते बार न लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे रे

सर्व सुख दाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ मां कष्ट काते खिन पीतरे रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्नि निवारे गर्भ कुंड नरक के राख पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वरे ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत।

जीत जन्म के रतन अमौलक साध संगत जप इक किना रहाओ सुख संपत बनता विनोद छोड़ गए बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चलियो है मूड़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन कर संग रूलिया मोहे मोया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है। गौरी महला पंजवा मन तर कर दे हर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नो रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक

तेरे ओला नाम का, अवर जे कर्म करावनो तिन में पव है जाम का रहाओ, अवर जतन नहीं पाये वदे पाग हर क्या है।

आनंद कहा आग जी के संग काम रहाओ कटिए तेरा अनुरोग तू गुरु प्रसाद कर राज योग हर रस जिन जन चाखिया ताकि कृष्णा लाखिया हर विश्राम निध पाया सो

साध संगत मिल हर रवे से गुणी गहीर राव जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ताके कर तल नवनिध सिद्ध जो जाने हर पद तनी किछ नाही ताके कमी करने हार पछानिया सर्व सुख रंग मानिया हर तन जाके गृह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै।

पान सब का खाना रहाओ ऐसे है रे खसम हमारा छिन में साज सवार नहारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभु के गुण।

अज्ञानी मानस पया जो नाही सो लो रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे प्रम तो हारिया।

सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग थे कृपा निज प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाओ एक रैन के पावन तुम आए बहु जुग आस बदाए गृह मंदिर संपे जो दिसे जो तरवर की छाए तन मेरा संपे सब मेरी बाग मिलख सब जाए देवन हारा बिसरियो ठाकुर किन में होत पराए

जन्म सफल गुर किया दर्शन को बलहरिये रहाओ जेते सास ग्रास मन लेता तेते ही गुण गाइये जो होए दयाल सतगुर अपना ताए मत बुद पाइये मेरे मन नाम ले जम बनते छूटे सर्व सुखा सुख पाइये शेर स्वामी सतगुर दाता मन बंचत फल आइये।

सुंदर नारी अनेक प्रकारी पर गृह बिकारी बुरा पला नहीं सुजिए, बुरा पला नहीं सुजिए। अनेक बंधन माया परमत परमाया गुंडित नहीं गाया मन बिछे ही मैं लुजिए। जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया।

डाले हो। अब दुखन पंथ कयान रहाओ, सेवक सेवक सदा सेव तेरे संग बस्त है पाल। कर सेवा तू साध की हो काटी है जम जाल, होम जग तीरथ की बिच हो में बदे विकार, नरक सुरग दोए पुंचना।

पायो बाल बुद सुखरे हरक सोग हान मृत दुख सुख चित संसर गुर मिले राव जौ लो हो किस सोचो चितवो तौ लो दुखन परे जो कृपाल गुर पूरा पेटिया सो अनद सहजे जेती सियान कर्म हों किए तेते बंद परे जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भये जो लो मेरो मेरो करतो तौ लो बिखेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सह सोए जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान परे कोट डार गुर पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा पावन त्यागियो री त्यागियो त्यागियो मैं गुरु मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आग्यो रहाओ मान अभिमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख न आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्ट आग्यो निरपो पे संत प्रम डार्यो पूरन सर्वाग्यो जो किछ करते कारण कीनो मन बुरो न लाग्यो साध संगत पर साध संतन के सोयो मन जाग्यो जन नानक और तुहारी परयो आयो शरण आग्यो नाम रंग सहज रस माने।

किया। सतगुरु सब समाया रहाओ, लाठी भूख तृष्ण सब लाठी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुरु पूरे तरयो, मन जीतो जग सारी। त्रिपद अधाए रहे रिद अंतर, दोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुरु दिया, तोट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाए परदा ठाकुर जो पेट्यो, तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई एहो अचंबो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पै बिगाता, गुर निधान हृदय ले राखिया। गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरणी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरणी रहाओ। शास्त्र सिमरत वेद विचारे, मां पुरखन यो कहया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख न किन्हू लया। तीन पवन की लखनी जोरी, बूझत नाही लहरे, बिन हर भगत कहां स्थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मनमोहन, पूरन होत न कामा, जलतो जलतो कभू न बूझत, सगल बिरसे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, यह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की तू।

हर दिन अवर क्रिया बिरथे जप तप संजम कर्म कमाने एह ओरे मूसे रहाओ वर्त नेम संजम में रहता तिनका आद न पाया आगे चलन और है पाई ऊहा कामना आया। तीरथ नाए अर करनी प्रमता आगे ठौर न पावे ऊहा कामना आवे एह बिद ओ लोगन ही पति आवे। चतुर्वेद मुख बचनी उचरे आगे महल न पाये बूझे नाही एक सुदाकर ओ सगली चाक चखाइए। नानक कह तो यो बिचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर से वो अर नाम त्यावो त्यागो मनोगुमानी। गौड़ी माला पन्नवा माधो हर हर हर मुख कहिए हम ते कछु न होवे स्वामी ज्यों राखो त्यों रहिए रहाओ। क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा

एहो जियो वताई बल बल जाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो। कोठी पंडित वेद खोजंता जी।

जिन प्रभ त्याया सो सो बावंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सो करनी जियो, जन नानक सह समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ सितारे जियो, संत देव संदेशा पै चरणारे जियो, खुद दिन कित बिद करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिद संदा जियो, पेट दर्शन इहो सुख लइए जियो, चरण पठार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पै कहिए जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, इहो अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन विच प्यारे जियो, मन तन तेरा इहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरण आई जियो, जिस मिले है मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाए जियो, प्रभ को सद बल जाए जियो, एहो निधान जपैवट पागी जियो, नाम निरंजन एक निवलागी जियो, गुर पूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पैर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा साहु भगत मन जारा जियो, हर तन रास सच

जोर तुम्हारे सुख बसां सत शब्द निशान राव सबे गल्ला जातिया सुन के चुकिया कद ही सुरत न लदिया माया मोहड़िया दे बुजार सारता से अखी जिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल न सुनी कहा इकस दो चौ क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए उठी भगत सच्चे दर सोंदे आनंद करें दिन रात रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी महिला पन्नवा माज दुख पर...

सिर जो करे फिट सो जीवन सोए अंचल गह के साध का तरना इव संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंध सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थ्यो कर हर के चरण निदान नानक जा।

आदो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते एनस पागो, रहाओ सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर्ष शोक ते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक ए खेल कथन है किन्हों गुरमुख जाना, गौड़ी महला नावा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने

जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एन इस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुन गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यो ए विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो इहो जग देख ताक उठतावे। भुगत मुकत का

0: साधो राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण, सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता सुन, औ बिकियन की सेवा। हर्ष शोक परस जे नाहिन, सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिक ए सब, क्यों कंचन अर पैसा। उस्तत निंदा ए समझा कै, लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए बांधे जे नाहिन, ते तुम जानो ज्ञानी। नानक मुक्त ताहे तुम मानो, हे विद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा, मन रे कहाँ पयो तै बौरा। एनक और कटे नहीं जाने, पयो लोग संग होरा। रहाओ जो पन ते अपनो कर मान्यो, अर सुंदर गृह नारी। इनमें कट से रोरे नाहिन, देखो सोच बिचारी। रसन जन्म अपनो तै हारियो, गोविंद दत्त नहीं जानी। निमख ना लीन पयो चरणन त्यों, बिरसा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे।
1: और सगल जग माया मुहिया, निरपय पद नहीं पावे।
0: गौड़ी महला नावा, नर अचेत पाप से डर रे। दीन दयाल सगल पै पंजन, शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत, ताको नाम ही है मो तर रे। पावन नाम जगत में हर को, सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बौर ने पावे, कछु उपाओ मुक्त का कर रे। नानक कहत गाए करुणा में, पाव सागर कह

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी विमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पय सुहा रंग माया नगर पई दिख ठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साध रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पथ के आचारा दृष्ट पई सुख आत्मा।

पाए, भगत करी राचो हर नाए, सिखिया दीखिया भोजन पाओ, हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म त्याना, जोत पई ज्योति माए समाना, लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना। न पंडित न चतर सियाना, न फूलो न परम फुलाना, कथो न कथनी हुक्म पछाना, नानक गुरमुख सहज समाना। गौड़ी ग्वारे री महला पहला, मन कुंचर काया उद्याने, गुर अंकस सच शब्द निशाने, राज द्वारे शोभ सुमाने, चतुराई ने चीनिया जाए, बिन मारे क्यों कीमत पाए। रहाओ कर में अमृत तस कर ले, नन्ना कार ना कोई करे, राखे आप वड्याई दे, नील अनिल अगन इकथाई, जल निवरी।

गुर बूझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा कर बाहर सो तैसा, बैस गुफा में आखो कैसा, सागर डूगर निरपो ऐसा। मुए को कहो मारे कौन, निडरे को कैसा डर कवन। शब्द पछाने कीने कौन, जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बूझिया तिन सहज पछानिया। देख विचार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त इक नाई। तही निरंजन रहा समाई, निज कर व्याप रहा निज ठाई।

करण गगन ने देखो दोए, नारी पुरुष सबाई लोए, रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मोको एक बुझाया, एक निरंजन गुरुमुख जाता, दूजा मार शब्द पचाता, एको हुक्म वर्ते सब लोई, एक से सब ओपत होई, राह दोवे खसम एको जान, गुर कै शब्द हुक्म पछाण, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्त फेर क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत विचार है, पंच मार साच उधार है, रहाओ जिसके अंतर साच बसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, राम सब एको गृह उद्यान है, करनी कीरत कर्म समान है, एक शब्द एक पिछला मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे, पैर अच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिवलाए, आपे मेले परम सुपाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हमें मारे करनी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौड़ी महला पहला, सीमा गही व्रत शील संतोखं, रोग ना व्यापे ना जम दोखं, मुक्त पाए प्रभ रूप न रेखं, जोगी को कैसा डर होए, रूख बिरख गृह बार सोए, रहाओ निरपौ जोगी निरंजन त्यावे, अंदिन जागे सच विवलावे, सो जोगी मेरे मन पावे, सो जोगी मेरे मन पावे, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्व निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरपो होए, जैसा सेवे तैसो होए, नर नहीं केवल निरपो ना हो, अनाथे नाथ करे बल चाओ, पुनरप जन्म ना ही गुण गाओ, अंतर बार एक हो जाने, गुर के शब्दे आप पछाने, साचे शब्द दर निशाने, शब्द मरे तिस निज कर वासा, आवे ना जावे चूके आसा, गुर के शब्द कमल पर गासा, जो दिसे तो आस निरासा, काम क्रोध बिख भूख से आसा, नानक बिरले मिले उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरे पावे सच सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अखट मज्जन चरने तूरी, रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर रस सारा, सच करनी अब अंतर सेवा, मंत्र तास्या अलक अपेवा, जय जय देखो तै तै साचा, दिन बूझे जगत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख बिरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु कहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीने सो तप विचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ताके दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्म में गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है, रहाओ बल राजा माया अंकारी, जगन करे बहु पार अपारी, दिन गुर पूछे जाए प्यारी, हरी चंद दान करे जस लेवे, दिन गुर अंक ना पाए अपेवे, आप पुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरनाथ दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ परहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, पूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्भ गया बिन सतगुर हेत, शैत बाहो मद कीट में खासा, हरनाकस ले नखो विदासा, दैत संगारे बिन पगत अभ्यासा, जरा संद काल जमुन संगारे,
रसत बीज काल नेम बिदारे, दैत संगार संत निस्तारे। आपे सतगुर शब्द विचारे, दूजे पाए दैत संगार।

जनमे जय गुर शब्द न जानिया, क्यों सुख पावे परम पुलानिया, इत तिल फूले बौर पछतानिया, कंस के चांडूर ना कोई, राम ना छीनिया अपनी पत खोई, बिन जगदीश ना राखे कोई, बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म तीरज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए। गौड़ी महला पहला, चोआ चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पहर हटावो, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पहरों क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोर सिगार करे अति प्यारी, बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दर कर महला सेज खाली, ऐनक फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लक्कर नेब खवासी पाजे, बिन जगदीश चूठे दिवाजे, सिद कहावो रिद सिद बुलावो, ताज पुल है सिर खतर बनावो, बिन जगदीश कहाँ सच पावो, खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सवरस काजा, हो में ममता।

पहला सेवा एक ना जानत अवरे पर पंच ब्याज त्यागे कवरे पाई मिले सच साचे सचरे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाय मिले मल सोई रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत अगन जगत पर जा रे सो उभरे गुर शब्द विचार है प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना मृग मरे सह अपना कीना तृष्णा रात तत नहीं दीना काम चित कामन हितकारी क्रोध विनाश है सगल विकारी पत मत खोवे नाम विसारी पर कर कीत मन मुख डोलाए गल जेवरी तंदे लपटाए गुरमुख छूटस हर गुण गाए जो तन विधवा पर को दे काम दाम चित पर वस्ते बिन फिर त्रिपत ना कभू होई पर पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़े सुन साटा बिन रस राते मन बौ नाटा ज्यों चात्रिक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस की तृप्ताता गौरी मैला पहला हट कर मरे ना देखे पावे वेद करे बहु पसन लगावे नाम विसार बहुर पछतावे तू मन हर जियो तू मन सुख नाम विसार सह जम दुख रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर माया मगन परम पद दूर नाम विसार है सब कूड़ो कूर नेजे वाजे तक सलाम अद की तृष्णा व्यापे काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अहंकार नाही प्रभ मेला मन दे पावे नाम सुहेला दूजे पाए अज्ञान दुहेला बिन दम के सौदा नहीं हाट बिन

नानक नाम रते पत पाए। कौड़ी मैला पहला हो मैं करप देखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया, हो करप नहीं सच पाई है, हो मैं जाए परम पद पाई है। रहाओ हो मैं कर राजे बहुत आवे, हो मैं खपे जन्म मर आवे, हो मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है, अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे, सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के कर तारी लावे, हो कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे, जेसी है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही। हो मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौरी मैला पहला प्रश्न ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया, हम हर राखे गुर शब्द विचारिया। रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा, ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो भूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यों राखो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम, मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकदम सिकदार है, नेचल कोई न दिसे संसार है, अफ्रयो काल कूर सिर मार है, नेचल एक सच्चा सत सोई, जिनकर साजी तिने सब गोई, ओ गुरुमुख जापे ता पत होई, काजी शेख पेख फकीरा, वडे कहावे हो मैं तन पीरा, काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा, काल जाल जेवा अरनैनी, कानी काल सुने बिख बैनी, बिन शब्दे मूठे दिन रैनी, फिर दे साच वसे हर नाए, काल न जो है सके गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए, गौरी मैला पहला बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकम रजाई, रहे अतीत सच्चे शरणाई, सच कर बैठे काल न जो है, मनमुख को आवत जावत दुख मोह है। रहाओ अपियो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैठ सहज कर रही है, हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल नहीं चल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत विरोले, सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पियो अंतर गत कीनी, गत मित्र पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार, परम हंस सच ज्योत अपार, जह देखो तह एकंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुर चरणी, मन से मन मानिया क्योंकि अंग प्रमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर न पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, नेचल महल नहीं छाया माया, साच संतोखे परम चुकाया, जिनके मन वसिया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मलख होई, गौरी महला पहला राम नाम चित्रा पै जाका, उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपार तुम्हारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा। रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा, चित कट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार, जिनके हृदय हर हर सोई, तिनका दर्श परस सुख होई, सर्व जिया में एको रवे, मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे, सो बूझे जो सतगुरु पाए, हो मैं मारे गुर शब्दे पाए, अर्ध उर्द की संग क्यों जाने, गुरमुख संग मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए,
प्रब होए दयाल नानक जन करिए हम पापी निर्गुण को गुण करिए प्रब होए दयाल नानक जन करिए सोलह अष्टपदिया।

सच मुख द्वारा। निज कर महल अपार को अपरंपर सोई, बिन शब्द फिर को नहीं बूझे सुख होई। क्या ले आया ले जाए क्या पासे जम जाला, डोल बदा कस देवरी आकाश पताला। गुरुमत नाम नाम इसरे सहजे पत पाये, अंतर शब्द निदान है मिल आप गवाये। नजर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावे, नानक मेल न चूके लाहा सच पावे। गौड़ी मेला पहला गुर प्रसादी बूझले तो होए नवेरा, कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा। बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा, जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा। रहाओ अंधे अकली बारे क्या तिन स्यों कही है, बिन गुर पंख ना सूझई चित विद निर्भय है। खोटे को खरा कहे

सेवा करें ठाकुर नहीं दीस है, पोखर नीर विरोली है, माखन नहीं दीस है। इस पद जो अर्थाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझ।

मन का सूतक दूजा भाओ, परने पूले आवो जाओ, मन मुख सूतक कवे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राओ, सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाए, सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, सातक सिमरत सोध देखो कोए, विण नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख उतरत पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी मैला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर्धारा, गुरमुख सोबा साथ द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा, रहाओ गुरमुख विच्चों हो मैं जाए, गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म कर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किछ कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे खौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग जो लाए बहन सियाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पत नाम।

पाए, गुर के शब्द सच लिवलाए। हो मैं मैला यो संसारा, नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा। बिन गुर पेटे जम करे खुआरा, सो जन साचा जे हो मैं मारे। गुर के शब्द पंच संगारे, आप तरह सगले कुल तारे। माया मोह नट बाजी पाई, मन मुख अंध रहे लपटाई। गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई, बहुते पेख करे पेख तारी। अंतर तिसना फिरे अंकारी, आप ना चीने बाजी हारी। कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलाई। बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रते सदा बैरागी। ग्रही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेवे सेवड़ पागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अव्यासा। तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा। हम हर राखे सतगुरु मिलाया, अनदिन भगत हर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पड़ वाद वखाणे सिर मारे जमकाला। तत नाचीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए। हर नाम विसारिया बहु

परम पुनाए, मन मुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सहे सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुरु ते कम

बंधन ना टूटे मुक्त ना पाए, मुक्त दाता सतगुरु जुगमाए, गुरुमुख प्राणी परम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिव लाए रहाओ। त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम न चेते उपावन हारा, मर जमे फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम न जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिका माता बिख माए समाई, माया तर मूल जंत्र परमाए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बार साच वरताए, साच न छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझे सह सुबाए, गुरुमुख साथ रहा लिव लाए, हों मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सो जी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरमुख बूजे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे, नामो सेवे नाम सह समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अंधिन हृदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सुखा रहाओ, हृदय सुख पया प्रगास, गुरमुख गावे सच गुण दास, दासन दास नित होवे दास, गृह कुटुंब मैं सदा उदास, जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए, जा हृदय वस्या सच सोए, गुरमुख मन वेदिया अस्थिर होए, हुकम पचाने बूझे सच सोए, तू करता मैं अवर न कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए, कृपा करें गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग में लोए, गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसे अंधिन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वड पागी, हो मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास, जब हृदय रवे

सबद मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुरु सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाईए गुणी निधान रहाओ। मन बैरागी जा शब्द पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पौ जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम ले विलाई, गुर मिलिए हमको सरी।

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंजन बदे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत मेलाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार नाम मिले पत पाए नाम मने सुख होए सतगुर ते नाम पाए कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए परम दे ना टिकन तर्क असमान ना चलई विच विस्ता पह पचन इहो जग परम पुलाया मोठ गौली पाए जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए सतगुर सेवन सो सोहणे हौ मैं मैल गवाए सबद रते से निर्मले चलने सतगुर पाए हर प्रभ दाता एक तू तू आपे

मिलिए हर माए गुर पाव पूरे पाया गल मिलिया प्याराए मन करहला सतगुरु पुरख त्याए रहाओ मन करहला विचारिया हर राम नाम त्याए जिथे लेखा मंगिए हर आपे ले छड़ाए मन करहला अप निर्मला मन लागी हो मैं आए प्रतख पिर कर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पालाए उपाय किते ना लबई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रैन हर लिवलाए कर जाए पावे रंग महली गुर मेले हर मेलाए मन करहला तू मीत मेरा पखंड लोभ तजाए पखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगति मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए ए मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगे पहनाया हर आप लिया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा

मन करहला गुरु गोविंद समाल रहाओ, मन करहला विचारिया मन मुख फाथिया महाजाल, गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल, मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याये हर हर चले तेरे नाल, मन करहला वड पादिया हर एक नजर निहाल, आप छाए छुट्टिये सतगुर चरण समाल, मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुरु नौ निज नाम विखा लिया हर दास करी दयाल, मन करहला तू चंचला चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल, मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हत तारिया जम मारे अड़ा जमकाल, अंतर निधान मन करहले प्रम पवे बार पाल, गुर पुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल, रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द समाल, हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल, वड पागी गुरु।

जब यो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाए कांते इस संग नहीं बहराए जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनों बांधियो

जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा, पेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किछ कर माने पेदा, तब ते दुख दंड अर खेदा, जब इन एको एक ही बूझिया, तब ते इसनो सब किछ सूझिया।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना

आस जपत पाव अपदा जाए तावत मनुआ आवे ठाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत ए हो मैं पागे जास जपत वस आवे पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत ए तृष्णा बुझे जास जपत हर दरगे सिजे जास जपत कोट मिटे अपराध जास जपत हर होवे साध जास जपत मन शीतल होवे जास जपत मल सगली खोवे जास जपत रतन हर मिले बहुर न छोड़े हर संग हिले जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सह निवास जास जपत ए अग्न न पोहत जास जपत एहो काल न जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाता जास जपत मुश्किल कछु न बने जास जपत सुन

जिसके हृदय मंत्र दे हरि अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा। कहो नानक जिस सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा। गुर का शब्द निरिद अंतर तारे पंच जना स्यो संग निवारे है। दस इंद्री कर राखे वास ताके आत्मे होए प्रगास। ऐसी दृढ़ता ताके होए जा को दया मया प्रभ सोए। रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है। जेता बोलन तेता ज्ञान है। जेता सुनना तेता नाम। जेता पेखन तेता ध्यान। सहजे जागन सहजे सोए। सहजे होता जाए सोए। सहज बैराग सहजे ही हसना। सहजे चूप सहजे ही जपना। सहज

जा के सहज मन पया आनंद, ताको पेटिया परमानंद। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। सहज कथा में आत्म रसिया, ताके संग अविनाशी वसिया। सहजे आसन अस्थिर पाया, सहजे अनहत शब्द बजाया। सहजे ऋण चुनकार सुहाया, ताके कर पार ब्रह्म समाया। सहजे जाको पर्यो कर्मा, सहजे गुर पेट्यो सच कर्मा। जाके सहज पया सो जाने, नानक दास ताके कुर्बाने। गौड़ी मैला पंजवा, प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया। पुत्र कलत्र कुटुंब संग जुरिया, भोजन अनेक प्रकार बहु कपरे। सर पर गमन करेंगे बपुरे, कवन स्थान जो कबहु ना तरे। कवन शब्द जित दुर्मत हरे, रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना। ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना, शिवपुरी का होएगा काला। त्रैगुण माया बिनस बिताला, गिर तर तरण गगन अरतारे। रव सस पवन पावक नीरारे, दिनस रैन बर्त अर पेदा। सासत सिमरत बिन सेंगे बेदा, तीरथ देव देहोरा पोथी। माला तिलक सोच पाक होती, तोती दंडौत प्रसादन पोगा। गमन करे गो सगलो लोगा, जात वर्ण तुर्क अर हिंदू। पस पंखी अनेक जोन जिंदू, सगल पसार दिसे पासारा। बिनस जाए गो सगल आकारा, सहज सिफत भगत तत ज्ञाना। सदा आनंद नेचल सचताना, तहां संगत साध गुण रसे। अनपौ नगर तहां सदवसे, तह पौ परमा सोग ना चिंता।

जो इस मारे तिसे वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाई, ऐसा कोई जो दुबदा मार दवावे, इसे मार राज जोग कमावे रहाओ। जो इस मारे तिसको पौना है, जो इस मारे सो नाम समाहे, जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगे सिजे, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस

जो इस मारे सो नहीं चलता नहीं, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाय न परे, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छुटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै किरपाल कृपा निज, तिस पै खलासी होई।

मन अपने में फिर चेत बिनस जाए माया के हेत हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग जा के काम उतरे सब भूख जा के काम ना जो है दूत जा के काम तेरा वड गमर जा के काम होवे तू अमर जा के चाकर को नहीं दान जा के चाकर को नहीं बान जा के दफ्तर पूछे ना लेखा ताकि चाकरी करो विशेखा जा के ऊन नाही काहू बात एक है आप अनेक है पात जा की दृष्ट होए सदा निहाल मन मेरे करता की काल ना को चतुर नाही को मूड़ा ना को हीन नाही को सूरा जित को लाया तित ही लागा सो सेवक नानक जिस पागा गौड़ी महला पंजवा बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी त्यों जीवे साकत नाम बिसारी एक निमख जो सिमरन में जिया कोट दिनस लाख

बोले कूर साकत मुखकारा, बिन सिमरन गर्दब की न्याई, साकत थान परिष्ट फिराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंध न पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीचे तिस कुल नहीं जाती, जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत कराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर के बचन मोह परम गत पाई, गुर पूरे मेरी पैज रखाई, गुर के बचन से आयो मोह नाओ, गुर प्रसाद मोह मिलिया थाओ, रहाओ, गुर के बचन सुन रसन वखाणी, गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी, गुर के बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर के बचन मिटिया मेरा परम, गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म, गुर के बचन कीनो राज जोग, गुर के संग तरिया सब लोग, गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर के बचन पाया नाव निद, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा, तिसकी कटिये जम की फासा, गुर के बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर पेटिया पार ब्रह्म, गौड़ी मैला पंजवा, तिस गुर को सिमरों सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर।

गीते जिन गुरुओं को दीना जियो अपना दासरा आपे मुरलियो आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुरु को करी नमस्कार कल कलेश पै परम दुख लाथा कहो नानक मेरा गुर समराथा गौड़ी मैला पंजवा मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो रहाओ नाम बिना जो पहरे खाए जो कूकर जूठन में पाए नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिगार नाम विसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन में रोग नाम त्याग करे अनकाज बिनस जाए चूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत न लावे कोट कर्म कर तो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना आराधा चोर की न्याई जम पुरबादा लाख अडंबर बहुत विस्तारा नाम बिना चूठे पासारा हर का नाम सोई जन ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी मैला पंजवा आद मध जो अंत निवा है सो साजन मेरा मन चाहे हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख पूरन प्रतपाले रहाओ बिन सतनाही छोड़ न जाए जह पेखा तह रया समाए सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता पाई पूत पिता प्रभ माता जीवन प्राण आधार मेरी रास प्रीत लाई कर हृदय निवास माया सिरक काटी गोपाल कर अपना लीनो नगर निहाल सिमर सिमर काटे सब रोग चरण ध्यान सर्व सुख भोग पूरन पुरख नवतन नित बाला हर अंतर बार संग रखवा

पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया से ही होए भगत जिना कृपारिया हों वारिया हर वारिया रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया मैं तक की ओर संता ले हो उबारिया।

नारायण हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो राव तज हो मैं गुरु ज्ञान पजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो जो दी सह सो संग न गयो साकत मूड लगे पच मोयो मोहन नाम सदा रव रहे हो कोट मदे किने गुरमुख लयो हर संतन कर नमो नमो नौ निद पावे अतुल सुखो नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निदो काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दो ते रहो दुख अंधेरा करते मिट्यो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो जिन सेव्या सो पार परयो जन नानक गुरमुख जगत तरयो महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत परम गए मेरे मन सब सुख पायो रहाओ बल तो जल तो तौ क्या गुर चंदन शीत लायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो पावक सागर गहरो चर संतन नाव तरायो ना हम कर्म ना कर्म सुच प्रभ गह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ नाथ कृपाल दीन समरथ संत ओटायो निर्गुनी आरे की बेनती देहो दर्श हर आयो नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के पोगा इन संग अंध न जानी हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहानी रहाओ हौ सूरा प्रधान हो को नाही मुझे समानी जो बनवंत अचार कुलीना मन में होए गुमानी जो उलझायो बाद बुद्ध का मर्त्या नहीं बिसरानी पाई मीत बंदव सके पाछे तिन्हों को संपानी जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी आंग बुद्ध सुच कर्म कर ए बंधन बंदानी दयाल पुरख

सिगार मिठ रस भोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे नानक सा तन मिले।

कर वास नाही पुछो सखी सहेलिया बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसे साथ सुहेलिया सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमति सो जानिया नानक नाम ना छोड़े सातन नाम सहज समानिया मिल सकी सहेलड़ियो हम फिर रावे हा गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया साच की मत सदा नौतन

हम कर साजने आया, मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहती, मुंद मन उमा हो, साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो, कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया, नानक पिर तन करे।

सबदे सुहावे ता पत पावे दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुणसारे सतगुर मेली ता फिर रावी बिगसी अमृत बाणी नानक सा तन ता।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे किसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई न पावे हाथ निग्रह बे बाने नानक सच कर।

तेरा मैल सच्चा जियो, नाम सच्चा वापारो, नाम का वापार मीठा, भगत लाहा अंदिनो, जिस बाज वखर कोई न सूजे, नाम लेवो खिन खिनो, परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया, नानक नाम।

हा तन बिनो करे जियो हर के गुण सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे रह न साके गुर बिन महल न पाई है जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए तन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यों चित लाए सतगुर सेवे पाओ करे जियो विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा पाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर के शब्द समाओ हर गुण सारी ताकंत प्यारी।

नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मिलाए। ता मिली है हर मेले जियो हर बिन कौन मिलाए, बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए। गुर परम चुकाए यूं मिली है माए तासा तन सुख पाए, गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए। कामन रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे, नानक कामन हर वर पाया।

चित लाये सदा सुहागन जा सतगुर सेवे गुर के अंक समाये गुर शब्द मेला ता फिर रावी लाहा नाम संसारे नानक कामन ना प्यारी जा हर के गुण सारे सातन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हों मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे सातन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार निवारे नानक कामन हर भर पाया सगले दुख विसारे कामन पिरो पुली

अन ना पानी, पानी अन ना पावे, मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाए। गुर आगे करो बिनंती, जे गुर पावे, ज्यो मिले तिवे मिलाये, आपे मेल ले सुखदाता, आप मिलिया करे आए, नानक कामन सदा सुहागन, ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर के सह सुवाए, मन मोहन मोह लिया जियो, दुबदा सह समाए, दुबदा सह समाए, कामन वर पाए, गुरुमती रंग लाए, एहो शरीर पूर कुसत परिया, गलताई पाप कमाए, गुरुमुख भगत जित सहज तुन उपजे, बिन भगती मैल न जाए, नानक कामन पिरे प्यारी, विच्चों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो, गुर के पाए प्यारे, रैन सुख सुती जियो, अंतर उर्धारे, अंतर उर्धारे मिली है प्यारे, अंदिन दुख निवारे, अंतर महल फिर रावे कामन, गुरमती विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सुहागन, गुर कै हेत अपारे, आवो दया करे जियो, प्रीतमत प्यारे, कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिगारे, सच शब्द सिगारे, हों मैं मारे, गुरुमुख कार्य सवारे, जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर विचारे, मनमुख काम व्यापी मोह संतापी, किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ न पाए, बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयानी पोली निगुणिया जियो, फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शनहारा, अवगुण बख्शनहारा, कामन कंत प्यारा, कट कट रहा समाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाए, सतगुर बूझ बुझाए, सदा आनंद रहे दिन राती, अंदिन रहे लिवलाई, नानक सहजे हर वर पाया, सातन नौनिद पाई, गौड़ी महला तीजा, माया सर सबल वरते जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहिथा जियो, शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंगाए, इन विद दुत्तर तरिए, गुरुमुख भगत प्राप्त होवे, जीव त्या यो मरिए, किन में दाम नाम किल विख काटे, पए पवित्र शरीरा, नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा, स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो, राम नाम की विद नहीं जानी, मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी, होमे पाप संसारे, जो आया सो सबको जासी, उबरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम वखाने, आप तरह कुल तारे, नानक नाम वसे कट अंतर, गुरमत मिले प्यारे, राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सच्ची जियो, राम नाम वा पारा, राम नाम वा पारा अगमा पारा, गुरमती तन पाईए, सेवा सुरत भगत के साची, विच्चों आप गवाईए, हम मत हीन मूरख मुगद अंधे, सतगुरु मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे, अंदिन हर गुण गाए, आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे, आपे सतगुरु आप शब्द जियो, जुग जुग भगत प्यारे, जुग जुग भगत प्यारे, हर आप सवारे, आपे भगती लाए, आपे दाना आपे बीना, आपे सेव कराए, आपे गुण दाता अवगुण काटे, हृदय नाम वसाए, नानक सद बलिहार।

थिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रैन रलिया करे कामन मिटे सगल अंदेसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ते हम जैसा मेरे मन अंध भया जियो वजी वादाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंदप हरख उपजिया दूध ठाउ गवाया अनहतवा जे वजह कर में फिर संग सेज विछाई दिनवंत नानक सहज रहे हर मिलिया कंत सुखदाई।

जो साध संत इकत्र हो गए हैं तहा तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एक अलेख ठाकुर जिन्हें सब कल तारिया तुद बचन गुर के वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैज रा

जपैन दाना जमपाल तिनको लगे नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर सो ज्ञाना बिनवंत नानक राज निचल पूरन पुरख भगवाना मोहन तू सुफल फल्या।

बेअंत गुण तेरे कथे न जाहि, सतगुरु पुरख मुरारे दिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौड़ी महला पंजवां श्लोक। पतित असंख

कर संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याए मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख सातो दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कमल आराध्य जम पंख बिखरा अगन सागर निमक सिमरत साधिय कल मले दहता शुद्ध करता दिन सरण आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया भगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाये तम अंग कूप ते उधार नाम मन वसाय सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत नाम।

बेअंत अगम अपारो शरण जोग समरथ मोहन सर्व दोख बिदारो रोग सोग सब दोख बिनसे जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल धारी गुण गाओ मना अचुत अविनाशी सबके ऊंच दयाला दिसंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे काल कंटक लोभ मोह नाशे जी जाके प्रभु बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूरन काला बिनवंत ना।

हर संत मान त्याग कर भगत खगौरी मोहे साधु मनते सखी वस आया फिर छोड़ न जाई तेरी रीत पली भगवंत नानक जरा।

गोविंद गाय कल कलेश मिटे क्रम नाशे मन चिंदिया फल पाई पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आई है। सखी इच करी नित सुख मनाई प्रभु मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवद पागी माए। सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं आप नड़ा फिर मिलिया प्रम खोयो सांत सह स्वामी परगास तया कौल खिलिया वर पाया प्रभ।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग करा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एक और रव रहा दूसर हुआ न होग पौड़ी ओम साध सत गुरु नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे अस

कछ व्यापत प्रगट प्रताप पाहु को जापत सो साधु ए पहुंचन हारा नानक ता कह सद बलिहारा। श्लोक तन तन कहां पुकारते माया मोह सब कूर नाम विहूने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तद्दा तूर पुनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जेह रुच या मनुआ तन नहीं बांछे सुर्ग नाचे अत प्रय प्रीत साध रज राचे तंदे कहां व्यापे ताहू जो एक छाद अनकते न जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूरन भगवान। श्लोक अनक

तप करते सास सास सुमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छदाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई इत उत नानक तिस बिसरो नाही श्लोक आ

ने ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो बिथम ए माया, कर कृपा सतसंग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक। किरत कमावन शुभ अशुभ कीने, तिन प्रभ आप, पस आपन हो।

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवार नहारा। श्लोक रात

0: पौड़ी।
1: रे मन बिन हर जय रचो, कहते बंधन पाहे, जे विद कतहु ना छूती है।

जोड़ा ते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रेरे दरगे कह न को आओ बैठ आदर सुख देव ओआ महली पावे तू बासा जन्म मरन न होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नाम।

या माया में जन्मे मरना, जो जो हुक्म तिवे त्यों करना, को ऊन ना को पूरा, को सुगर ना को मूरा, जित जित लावो तित।

पूरक कुंभक रेचक कर माता ज्ञान ध्यान तीर्थ स्नानी सोम पाक अपरस उद्यानी राम नाम संग मन नहीं एता जो कछ तीनो सौ अनेता हो आते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसे गोपाला। श्लोक कुंट चार दह दुष्प्रमे कर्म किरत की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख। पौड़ी तक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को।

परमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो। श्लोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट न जाहे पंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नहीं सुमार। पौड़ी थक्का खूना कछ नहीं तिस समरथ के पाहे जो देना सो दे रहे हो पावे कहते जाए। खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास। खेले बिगसे अनद स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल। खेद ना दुख ना दान ते।

लोग आस अनित गुरुमुख मिटा नानक नाम अरोग पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जपनीत कहां विशासा देह का विलम न करहो मीत न बारक न जोगने न बिरधि कछ बंद ओ बेरा न बूझिए जो आए परे जम

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक पाग नानक आए सफल के जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोखे शास्त्र देव सब आम न कत्तो कोए आप जुगा दी हुन होवत नानक एक कै सोए पौड़ी।

ने चरना काल काल अनेक पछतावे बिन हर भगत कहां स्थित पावे कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुरु जा को दिया। श्लोक काले सब दिवस सास

काल ते जो साकत प्रवकीन अनेक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहु को आए कर कृपा जी आप दिवाए गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जे जीवत जपया प्रगट पे नानक ने छपया श्लोक चित चित वो चरणार बिंद ऊद कवर बिग सांत

सभागा चार कुंट देह दुष्क्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ चिंत

पौड़ी जजा जाने हो कछुआ बांध्यो जो नलनी परम सुआ जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी जो जाने मैं कथनी करता व्यापारी बसबा जो फिरता साध

मिटे तुम्हारो, राम नाम से कर व्योहारो, चूरत चूरत साकत मुआ, जा कह हृदय होत पाओ बिया। चरह कसम मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरह काम क्रोध दुष्टाई, नानक जा को कृपा गुसाई। श्लोक। यतन करो तुम अनक विद, रहन न पाओ मीत, जीवत

बिनस्तो कास्यो करिए संग ज्ञानो या विद सही चित झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंधकूप ते कढ़ो जे हो वो सो प्रसन्न। ज्ञा कै

नानक मनो न बिसरे गुण निद गोविंद राय। पौड़ी टहल करूं तो एक की जाते बिरथा न कोए।

या डेरा को श्रम कर काले जाका तसू नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जाको दृष्ट पूरन भगवान है डेरा ने चल सच।

साध संग अहं बुद्ध विकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल। तेरी जा मैं जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपतत रहे हों हों आवे जाए। टहत टहत अब

मनुआ जी तै हर मिले ते सूरतन वेश। ना को जाने आपनो एक टेक आधार, रेण दिन सिमरत रहे सो प्रभ पुरुष अपार। रेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए, हुक्मे बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक। तन मन तन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे, नानक प्रम को काटी है चूके जमकी जो। पौड़ी। तत्ता तास्यों प्रीत कर गुण निध गोविंद राय, फल पावे मन बाँचते तपत तुहारी जाए। त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ, गत पावे मत होए परगास मैली पावे ठाओ। ताहू संग न तन चले गृह जो बन ने राज, संत संग सिमरत रहो यह तुहारे काज। ताता कछु न होई है जो तात निवारे आप, प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप। श्लोक। था के बहु विध काल ते तृप्त ना तृष्णा लाथ, संच संच साकत हुए नानक माया न साथ। पौड़ी। थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव, अनिक बंच बल छल करो माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार, मन के कामना आवई अंते अवसर बार। हित पावो गोविंद पजो,

नानक नाम ते आईए कारज आवे रास पौड़ी। तद्दा तावत तो मिटे संत संग होए बास तुरते।

जाके मंत्र नाम बसाही, नाम निधान गुरुमुख जो जपते, बिख माया में ना ओए खपते। नन्ना कार ना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। निध निधान हर अमृत पूरे, तें बाजे नानक अनहद तूरे। श्लोक

कौड़ी। पप्पा परमित पार न पाया, पतित पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपे मिल साधु। पर पच त्रोह मोह मिट नाई, जाको राखो आप गुसाई, पात साओ छत्र सिर सो, नानक दूसर अवर्ण को। श्लोक। फाहे काटे मिटे गमन, फतेह पई मन जीत, नानक गुर ते थित पाई, फिरन मिटे नितनीत। पौड़ी।

आवे। बांध्यो आपन हों हों बंदा, दोष देत आगे को अंदा, बातचीत सब रही सियानप, जिसे जनाबो सो जाने नानक। श्लोक पै पंजन अग दुख नास, मने अराद भरे संत संग जे रिद बस्यो, नानक तेना प्रमे। पौड़ी पब्बा परम मिटावो अपना, या संसार सगल है सुपना, परमेश्वर नर देवी देवा, परमेश्वर साधिक ब्रह्मेवा। परम परम मानुख डह काए, दुतर महा बिखम ए माए, गुरुमुख

मन मूर्ख कह करें पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया। मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते परे पराग। श्लोक मत

निर्लेपा पूरन कट कट पुरख विशेखा ओआ रस में ओआहु सुख पाया नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक यार मीत सुन साजनो बिन हर छूटन नाहे नानक ते बंधन कटे गुर की चरणी पाहे। पौड़ी यैया जतन करत बहु विदिया एक नाम बिन कह लोस दिया याहू जतन कर होत छुटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरन तारे सबको वाहे जपे बिन उबर न हो याहू तरन तारन समराथा राख लेहो निर्गुण नरनाथा। मन बच कर्म जे आप जवनाई नानक ते मत प्रग

हेरो काट काट सगल के पूर रहे भगवान, होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हों छुटके होए आनंद ते हों नाही ते आप, हटे दुख जन्म मरन संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला, संते संग होत कृपाला, पूरे कछु न किन्हू किया, नानक सब कछ प्रभु।

पाव जल ते काडू प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी। खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए। खिमा गई सच संचयो।

खरा दिलासा गुर दिया, आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप, आगे पाछे आप, नानक सो सराही है, जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक। आए प्रभ शरणागति, कृपा निद दयाल, एक अक्षर हर मन बस्त, नानक होत निहाल। पौड़ी। अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचारे, अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना, अक्षर नाद कथन वख्याना, अक्षर मुक्त जुगत पै परमा, अक्षर कर्म कीर्त सुच परमा, दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, पुस्तक कह न जाए।

हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है भी होवन हार हे संत के सदा संग निधारा आधार हे ठाकुर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दी जय नाम दान राखो ही है परोए।

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा।

हैं अष्टपदी। सिमरो सिमर सिमर सुख गावो कल कले स्तन माय मिटाओ। सिमरो जास विसंगर एक नाम जप अगन अनेक। वेद पुराण सिमरत सुदाखर कीने राम नाम इकाखर। किनका एक जिस जीव बसावे ताकि महिमा गनी नावे। ताकि एक है दर्श तुहारो नानक उन संग मोय उदारो।

प्रभु के सिमरन दूख जम नसे, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन तरे, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभु के सिमरन अन दिन जागे, प्रभु के सिमरन पौ न व्यापे, प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, प्रभु के सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, प्रभु के सिमरन बिनसै दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु के सिमरन दरगे मानी, प्रभु के सिमरन होय सो भला, प्रभु के सिमरन सो फल फला, से सिमरन जिन आप सिमराए, नानक का कहला गुरु पाए, प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब किछ सुझे, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माहि सुनाए, प्रभु जी बसे स्वाद की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरुष प्रदान, प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभु को सिमरे से परोपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सब बलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिन अनंत घनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन कभो न झूरे, प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सहज समानी, प्रभु के सिमरन निचल आसन, प्रभु के सिमरन कमल विगासन, प्रभु के सिमरन अनहद जुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिन को प्रभु मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर पगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेत उपाय, हर सिमरन तय शुद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते, हर सिमरन तारी सर करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पारा श्लोक, दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ, अष्टपदी, जय मात पिता सुत नीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई, जय मां प्यान दूत दम दले, ते केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माए उदारी, अनित पुने चरण कर्त नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नाम पावो सु

धनेरे सगल सृष्टि को राधा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया लाख करोड़ी वंदना करे हर का नाम जपत निस्तर है कनिक माया रंग सिखना बुझावे हर का नाम जपत आभावे जे मार के हो जाते के लाते हर नाम संग होत सोएला ऐसा नाम मन सदा ते आई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत ते पार कराही अनेक विघ्न जह आए संगारे हर का नाम तत्काल उधारे अनेक जोन जन्मे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मैला मल कभू न धोवे हर का नाम कोट पाप खोवे ऐसा नाम जपो मन रंग नाम पाई है साध के संग जे मार्ग के गने जाए न कोसा हर का नाम उहा संग तोसा जे पैंदे महा अंग गुबारा हर का नाम संग जियारा जहाँ पंख तेरा को न जानू हर का नाम तह नाल पहचानू जय महा प्याम तप बहु काम ते हर के नाम की तुम ऊपर छान जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर्ष है ते नानक हर हर अमृत बरख है।

हर जस पर संत दिन रात हर हर औसत साठ समाट हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत तब करे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत पछवाए वियोग जन वाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप सब दीना हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते आठ पैर जन हर हर जपे हर का पगत प्रकट नहीं छपे हर की पगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते करे पार जात ए हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत हृदय वसे संत प्रताप दीर्घ सब नसे संत का संग बड़ भागी पाये संत की सेवा नाम ध्याये नाम तुल कछ अगर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जात पात ज्ञान सब ज्ञान खत शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म कर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनेक प्रकार की ये बहु जतना पुन दान हो में बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु पासी नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिरजीव महा उदास कपि सरथीव अगन माए होमत प्राण कनक अश्व है वर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम अच्छादन निमख निमख कर शरीर कटावे तो भी हो मैं मेल न जावे हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत जप पाहे मन कामना तीरथ दे छुटे गर्भ गुमान न मनते हुटे सोच करे दिन और रात मन की मैल न तनते जात इस देही को बहु साधना करे मन से कभू न भिख्या करे जल तो वह बहु दे अनीत शुद्ध कहा होए काची वीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहुमूच बहुत श्यांत जम का पौ व्याप है अनेक जतन कर प्रसन्ना ध्याप है पेट अनेक अगर नहीं बुझे कोट उपाव दर गहने सिजाय छूट अपना ही ऊप बयाल मोह व्याप है माया जाल अवर करतूत सगली जमदाने गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे सात जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सब गावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए हो मैं चोरे जे को जन्म मरण से डरे सात जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक पाके बल बल जासा सगल पुरुख में पुरुख प्रदान साफ संग जाता मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सबसे ऊंचा जाता मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने से बुरा मिटाना देखे सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेता निर्तन को

आपन संग आप प्रवराते तुमरी युस्तक तुमते होए नानक अवरना जानस कोए। सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग जुर्मत मलहरिया।

संग मचे। जो छदना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर कराने। छोड़ जाए किसका श्रम करे, संग सहाय किसका हरे। चंदन लेप उतारे धोए, गर्दब प्रीत पसंद संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काट लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेट अंतर मल माया, छप सुनाए कछ करे छिपाया। बाहर ज्ञान त्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुहान। अंतर अगन बाहर तन सुहारा, गल पाथर कैसे करे अथाहा। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक ते जन सह समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लिहो और निभावे। कहां बुझारत बूझे डोरा, निष्कैय तो समझे पोरा। कहां विषन पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहा उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा करे। संग सहाय सो आवे ना चीत, जो बैराई तासो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसे।

त्याहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बार तेरे तुमरी कृपा में सुख गनेरे।

सारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जन अपना हुकुम मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगनत साओ अपनी देरास, खात पीत बरते अनत उलास। अपनी अमान कछ बहुर सावले, अज्ञानी मनी रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोए, बहुर उस

सबका के जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन कहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी मन किस प्रभु को कभू ना बिसारी।

जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कहै। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेखे विस्माद,

खोत साध के संग मिटै अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस बुंचा, साध संग होए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कथू धावे, साध संग अस्थित मन पावे, साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध

सकल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक ओ अपरस सगल निस्तार है। अष्टपदी।

अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट वन प्रमेय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब काब विचारे, कई कोट नरतन नाम दियावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिरे, कई कोट पर दुख न करें, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख मिट जाए।

सत्र सगल समग्री अपने सूत धारे, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे। कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर्थात।

नानक आप अलिपत रहा भरपूर। कई कोट पताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बोजो नी फिरे।

हुक्मे तार अदर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रिया समाई। प्रभ पावे मानु गत पावे, प्रभ पावे ता पाथर तरावे, प्रभ पावे बिन शास्त्र राखे, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे, प्रभ पावे ता पतित उधारे, आप करे आपन विचारे, दो आश्रिया का आप स्वामी, खेले बिकसे अंतर जामी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे, कहो मानक ते क्या होए आवे, ज्योतिष पावे सोई करावे, इसके हाथ होए ता सब पिछले, ज्योतिष पावे सोई करे, अनजानत भिक्षा में रखे, जे जानत आपन आप बचे, पर में पूला दे दिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे, कर कृपा।

कबहु सिद्ध साधक मुक्त ज्ञान, कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा वरना कोए, कबहु साध संगत हो पावे, उस स्थान ते बहुर ना आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम

निर्धार अनित तपस्या करे अंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार अनित जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगह को कैसे गवे।

तब इसको सुख नाही कोय। जब इह जाने में किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी नीत तब लग नेचर नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभु कृपा से बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हों छूटे। सहस खटे लखो सावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग दुखिया के करे न तृप्त आवे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पागी किसे प्राप्त होए। करण करावन

रचिया समाए, आप उपदेश है समझे आपे रचिया सब के साथ, आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार। उसते तिन कहो किस होए, थान सनंतर एक कैसो ए, अपने चलित आप करने हार, कौतक करे रंग अपार, मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी, गुरु प्रसाद किने वख्यानी, सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने दिल्ले चीना।

पिया वो सास गिरास सब कछवर तय कुछ किया जैसा करे तैसा कोठिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे बड़ पागी नानक जन से श्लोक।

पाप जपिए हर बिंद का हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगे नानक उजल मथा बड़ता गीते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करें विचार से तनवंत गनी संसार।

निरंजन जानिया गुरु प्रसाद आपन आप सुजय किसकी जानू तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत अंगन की संकेल ख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा किसकी कटिया जन की फासा पार ब्रह्म की जिस मन पूख नानक किसे न लागे दुख जिसको हर प्रभु मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं बुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तक सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सूखम सोई अस्थूल न किस जन्म न किस मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनक जुगत रखाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड तारण तार रहे हो ब्रह्मंड अलक अभेद पुरुष प्रताप आप जपाए तनानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभावंत सगल संसार उदर तिन मंत प्रभु के सेवक सगल उदारन प्रभु के सेवक दूप विसारन आपे मेल ले कृपाल गुरु का शब्द जप पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बट पागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुष को उत्तम करमान जो किस करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुबाए हो वै सो होए करने हार पछाने सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिस माहि समाए ओए सुख निदान उन्हू बने आए आप उसको आप दीनो मान नानक प्रभु जन एको जान श्लोक

अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई ना है। रे मन मेरे सना हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचै कोए किस दिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल कट सो है तनवंता होए क्या को गर्भ जा सब किस किसका दिया दरबै आप सूरा जे को कहावे प्रभ की कला बिना कह धावे जे को होए बह दा तार किस दिन

अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुर्मत मल हिरे, गुर बचनी हर नाम उचरे। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हाटे। सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वड पागी है। सतगुर सिख का हल्त पलक सवार है, नानक सतगुर सिख को जी नाल समार है। गुर के गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह। आप उसको कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास। सेवा करत होए ने कामी, किसको हो प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मतले। बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ भरम। सह श्यान लया न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइये। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। पेखत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगे गवे। सुनकर बचन करन आघाने, मन सुन तो खातम पतियाने। पूरा गुर अखियो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हो संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तुस लय मिलाए। जेबा एक पुस्तक अनेक, सतपुर पूरन विवेक। काहू बोल न पहुँच प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई। अनेक भगत बंधन मुक्त करे, चरण कमल हृदय सिमरे। सब बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने। क्यों हर रस्ता वह जन कोए, अमृत पी वह अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुण पास। आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। मोह माया के संग ना लेप, मन में रखे हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख सहते नासे। तपत माए ठाट वरताई, अंध भया दुख नाठे भाई। जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। पहुंचू का निरपो हो बसे, सगल व्याध मनते खेनते। जिसका साथ तिन कृपा भारी, साध संग जपना मुरारी। ठित पाई चूके क्रम गवन, सुन नानक हर हर दश्रवन। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाकार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिंदु जाना ही कोए, सर्व निरंतर को सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग, कहे प्रभा साध के संग। रच रचना अपनी कल तारी, अनेक बार नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजन, दिखिया सगली चार। हर हर नाम कमावना, नानक इहो धमसार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर उपास सब मीत विसारो, चरण कमल में उधारो। करण कारण सो प्रभ संगरत, दृढ़ कर गहो नाम हर वत्स। यो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आसरा को मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंट उठ भावे, सो तन हर सेवा ते पावे। जिस सुख को नित बाचे मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा को करे पली करनी, सा शोभा पज हर की सरनी। अनेक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर औखद लाए। सर्व निदान में हर नाम निदान, जप नानक दरगे परवान। मंत्र बोधो हर कह नाए, दैज स्थावत आवे ठाए। ताको बिघन ना लागे कोए, जाके हृदय बसे हर सोए। कल पाती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पौ बिन से पूरन होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास। चित कर जाए बसे अविनाशी, कहो नानक काटी जम फांसी।
तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा। आवागमन मिटे प्रभु सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। त्यों रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनेक उपाव न छूटन हारे, सिमरत सासत वेद विचारे। हर की पगत करो मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए। संग ना चाल तेरे धना, तू क्या लगता है मूर्ख मना। सुत मीत कुटम अर्बनता, इनसे कहो तुम कवन सना था। राज रंग माया विस्तार, इनसे कहो कवन छुटकार। अखहस्ती रथ अखवारी, चूठा डंप चूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना, नाम दिसा नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने, पगत बिना भो डूबे स्याने। हर की पगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारे चीत। चरण कमल वाखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विच जाए। आप जपो अगरा नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ। सार भूत सत हर को नाओ, सह सुबह नानक गुन गाओ। गुन गाव तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हो मैं विक फैल। हो है अचिंत बसे सुखनाल, साफ ग्रास हर नाम समाल। चार स्यान सगली मना, साफ संग पावे सत धना। हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहा सुख दरगे जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जप एको सलाह, एको सिमर एको मनाह। एक के गुण गाव अनंत, मंथन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूरन पूर रहे हो प्रव्याप। अनेक विस्तार एक ते भये, एक अराध प्राशक गए। मंथन अंतर एक प्रव्राता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया।

अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रदान कर कृपा देवो हर नाम। साधना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो साथ साथ प्रभु में ध्यावो। चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार। प्रभु की दृष्टि मां सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ता में पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग। परे शरण आम सब त्याग अंतर पर गाओ सम दिन लिवलाग। बड़ पागी जपिया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभु होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख क्रम गया। इच पुनी सरदा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी। जिस पासा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे की आ जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिखते काडे जन्म जन्म का टूटा गांडे। गुरपुर सत्य है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो। भगत पाए तरी है संसार बिन भक्ति तन हो सी छार। सर्व कल्याण सुख निदनाम बूढ़त जाप पाए विश्राम। सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुणकास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंतन अंतर एही सुआव। नेत्रों पेट दर्श सुख होए मन विकसे साध चरण तोए। भगत जना के मंतन रंग बिरला को पावे संग। एक बस दीजे कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभ संग दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त प्रतपाल। आद पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपे सो हो पुनीत भगत पाए लावे मनहित। हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए एक निमख हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत। फली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग कर देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक सर्व गुण निर्गुण।

फिर जाप अष्टपदी जब अकार यो कचना दृष्टि ताप पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वरण चेन ना जापत तब हर्ष शोक कोक्षे व्यापत जब आपन आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकुट को किसको गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब शिव सकट को कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहा विनाशन जब पूरन करता प्रभ होए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान।

किनारा, बहु बेअंत उठते ऊंचा, नानक आपस को आते पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंच आकार, त्यो गुण में कीनो विस्तार। पाप पुण्य तह पई कहावत, कौ नरक कौ स्वर्ग बंसावत। आल जाल माया जंजाल, होमे मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की ओब्ख्यान। आपन खेल आप कर देख है, खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अवगत भगत है आप, जय पसरे पासा संत प्रताप। दो पाप का आपे धनी, उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतुक करे अनंत सोज, आपे रस को गन निर्जोग। जिस पावे तिस आपन ना इलावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथा अगनत अतोले, जो बुलावो त्यो नानक दास बोले। श्लोक जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तन हार। नानक एको पसरिया, दूजा कह विस्तार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार। जात पावे ता श्रेष्ट उपाए, अपने भाणे ले समाए। कुमते पिन नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए। जा को प्रभु जियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तप का देता, नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सबका कह हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखे तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस तज अवर कहा को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जा कह सब हाथ, अंतर बार जानो साथ। गुण निदान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपाल है जी अनुभव पात, जो जो रचियो सो तिस एहतियात। जिस पावे तिस लय मिलाए, पगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक इक जान्या। जन लागा हर एक कहनाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बने आए, हुकम बूझ परम पद पाए। किसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार। बंधन तोर पए निर्वैर, अन दिन पूजे गुर के पैर। ए लोक सुखी ए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले। साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभु परमानंद। राम नाम तक करो विचार, दुर्लभ देखा करो उदार। अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ। आठ पैर प्रत्येक कोने रा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। हलत पलत दोए लिहो सवार, राम नाम अंतर उधार। पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसे तिस साच परीखिया। मन तन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगे निभे खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे, नानक दौर न आवे जाए। किसते दूर कहा को जाए, उबरे राखन हार ध्याए। निरपौ जपे सकल पौ मिटे, प्रभु कृपा ते प्राणी छुटे। जिस प्रभु राखे तिस माही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अंकार, तिस जन को कोई न पहुंचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जा की दृष्ट, दर्शन पेखत कुदरत सृष्ट। चरण कमल जा के अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रदान। जिस मन बसे सोत निहाल, ताके निकट नावत काल। अमर पे अमरा पद पाया, साथ संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपाते संत भेटिया, नानक मन परगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु गीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्पट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा है।
नवनिद अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तहनाद, कहन न जाई अचरज विस्माद। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत। तरण माए आकाश दयाल, सर्वलोक पूरन प्रताल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा करम। कौन पानी बह संतर माहे, चार कुंट बह दिसे समाहे। तिस्ते पिन नहीं को ठाओ, गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमृत में देख, ससियर सूर नक्षत्र में एक। बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कभू डोले। सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाये गुणे अमोल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तार रहे हो स्वामी ओत पोत। गुरु प्रसाद धर्म का नाश, नानक तिन में यो विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ वचन, सर्व व्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिसकी यह रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, करण करावन हार तब जाने। अंतर बसे बार भी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस तब ते सगली उत्पत। तिस पावे ता करे विस्तार, तिस पावे ता एकंकार। अनिक कला लखी न जाए, जिस पावे तिस रहे मिलाए। कवन निकट कवन कही है दूर, आपे आप परपूर। अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्वभूत आप वर्तारा, सर्वनैन आप देखनहारा। सगल समग्री जा का तना।

आपन जस आप ही सुना। आवन जात खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया, सब कह मद अलिप तो रहे, जो किस कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता ले समाए, इसते होए सो नाही बुरा, ओरे कहो किने कछ करा, आप भला करतूत अतने की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच, ताकि गतमित कहीं न जाए, दूसर होए तासो जी पाए, तिस ताकि या सब परवान, गुरु प्रसाद नानक हो जान, जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रसोए, ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, तन तन तन जन आया, जिस पर साथ सब जगत तराया, जन आवन का एह सुहाओ, जन के संचित आवे नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक किस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जा का नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख।

संत जना की तूर मन मांग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद।

कुजा के रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अनुलीक लाल ए रतन सुनत कमावत।

जय शब्द अनाहद वाजे, सुन सुन अनद करे प्रभु गाजे, प्रगटे गोपाल महंत के माथे, नानक उदरे तिनके साथे, शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए, मिट गए बैर पहे सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव, आल जंजाल विकार से रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभधारी, नानक निभी खेप हमारी, प्रभु की उस

पास सुंदर चतुर तत्व का बेता संघर्षी एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा से जमते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन

दुख रोग बिन से पे परम साध नाम निर्मलता के कर्म सबते ऊंचता की शोभा बनी नानक ए गुण ना।

पहिरे हर दरगे पतवंत राम नाम तन संच वै साच सहा भगवंत। उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। श्लोक तीन ब्यापे जगत को तुरिया पावे कोय नानक संत निर्मल पय जिन मन वसिया सोए। पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखे फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग प्रमतो कणो सदा संगारे मीच। हरक सोग सहसा संसार हौ हौ करत बिहाए जिनकी ये तिसे न जाननी चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस कभो न टूटे ताप पार ब्रह्म पूरन तनी नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो महानरक में वास कर कृपा प्रभ राख।

चार पदार्थ अष्ट सिद्ध पज नानक हर नाम पौड़ी। चतुर्थ चारे वेद सुन सोध्यो तत विचार सर्व खेम कल्याण।

पौ बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला।

रस बेदियो अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जोन प्रमण कीने कर्म अनेक, रचनहार ने सिमरियो मन ना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त न रंच, नानक बिरले पाये जो ना रचे परपंच। श्लोक। खट शास्त्र ऊंचो कहे अंत न पारावार, भगत सो है गुण गावते नानक प्रभु के द्वार। पौड़ी खस्तम।

नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोबिंद रस गी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान प्रम बिनस्यो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर

पौड़ी। सप्तम संचो नाम तन, टूट न जाए पंडार, संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो, शरण परो हर राय, दुख हरे पव जल तरे, मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे, सफल जन्म पर।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगाश सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत, सगल धर्म पवित्र स्नान, सब में ऊंच विशेष ज्ञान, हर हर भजन पूरे गुर संग, जप करिए नानक नाम हर रंग।

हर नाम न जपें करत विपरीत, पर त्रै रमें बकें साध निंद, करन न सुनही हर जस बिंद। हिरे पर दर्ब उदर कहताई, अगर न निवरे तृष्णा न बुझाई, हर सेवा बिन ए फल लागे, नानक प्रभु बिसरत मर जमें अपागे। श्लोक दस दिस खोजत मैं फिरियो, जत देखूं तत सोए, मन बस आ

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इक ठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एव धर्म।

दान नाम स्नान, हर की भगत करो तज मान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंचकू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुरपूरे ते ए नेचो पाई है, नानक राम रमत फिर जोन न आई है। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या पूरन होत न काम, अतित उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरक सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसादियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभ पुरख

कुंट प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दशे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ एक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान।

नाम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरे कुटुंब स्यो गुण गोविंद प्रभ रमन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का।

सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर त्याय है, गुरमुख पावे कोए। महला चौथा, हौं मैं माया सब बिख है, नित जग तोटा संसार, लाहा हर तन खटिया, गुरमुख शब्द विचार। हौं मैं मैल बिख उतरे, हर अमृत हर उरधार, सब कार्य तिनके सिद्ध हैं।

संग स्यों गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर साबास। पौड़ी तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़िया है तुद जेवड़ होए सो आखिया है तुद जेहा तू है पड़िया तू कट कट एक वर्तदा गुरुमुख पर गड़िया है तू सच्चा सब सदा।

होए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म इक सोए। निर्वैरा नाल जे वैर चलाएंदे, तिन विच्चों तिस्तिया न कोए। सतगुर सबना दा कला मनाएंदा, तिस्दा बुरा क्यों होए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए। पौड़ी जिसनो साहिब वड्डा करे, सोई वड जानी। जिस साहिब पावे तिस बख्श ले, सो साहिब मन पानी। जे को उस दी रीस करे, सो मूड अजानी। जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवे, गुण आख वखानी। नानक सच्चा सच है, बुझ सच समानी। श्लोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है, निरपौ निर्वैर निरंकार। जिन जपिया इक मन इक चित, तिन लत्ता हो मैं पार। जिन गुरमुख हर आराध्या, तिन संत जना जयकार। कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की, तिसनो फिट फिट कहे सब संसार। सतगुरु विच आप वर्तदा, हर आपे रखन हार। तन तन गुरु गुण गावदा, तिसनो सदा सदा नमस्कार। जन नानक तिन को वारिया, जिन जपिया सिरजनहार। महला चौथा। आपे तरती साजियन, आपे आकाश। विच आपे जंत उपायन, मुख आपे दे गिरास। सब आपे आप वर्तदा, आपे ही गुणतास। जन नानक नाम त्याए तू, सब किलविक कटे तास। पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चे पावे। जो तुद सच सलाह दे, तिन जम कंकर नेड़ ना आवे। तिनके मुख दर उजले, जिन हर हृदय सच्चा पावे। कूड़ यार पिछा हां सटियन, कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे। मोह काले कूड़ यारिया, कूड़ यार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर तरती तरम है, तिस विच जेहा को बीजे, तेहा फल पाए। गुर सिखी अमृत बीजिया, तिन अमृत फल हर पाए। ओना हलत पलत मुख उजले, ओए हर दरगे सच्ची पहनाए। इकना अंदर खोट नित खोट कमावे, ओह जेहा बीजे तेहा फल खाए। जां सतगुर सराफ नदर कर देखे, स्वावगीर सब उगड़ आए। ओए जेहा चितवे नित तेहा पाएन, ओए तेहो जेहे दैव जाए। नानक दोही

रे कनेरिया जे कारवत होवे साई खाए बिन सतगुर सोजी ना पवे अंकार न विचों जाए अंकारिया नो दुख भुख है हाथ तड्डे कर कर मंगाए कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे मुलम्मा पाज ले जाए जिस होवे पूरब लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए ज्यो लोहा पारस पेटी है मिर संगत सुवरन होए जाए जन नानक के प्रभ तू तनी ज्यो पावे तिवे चलाए पौड़ी जिन हर हृदय सेविया तिन हर आप मिलाए गुण की साज तिन स्यो करी सब अवगुण शब्द जलाए अवगुण विकण पलरी जिस देह सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे आपने जिन अवगुण मेट गुण प्रगति आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो अंदिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुत संजम हर नाम ही तृप्तावे हर नाम तान हर नाम दीबाण हर नामो रख करावे जो चित लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सतगुर पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओ वेला ओ हथ ना आवे ओ अपना बीजिया आपे खावे नरक कोर मुह काले खड़िया ज्यों तस्कर पाए।

गोपे अपना सो परा नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया। पहला आगम निगम नानक आप सुनाए पूरे गुर का बचन ऊपर आया गुर सिखा वड्या।

मैं जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की, सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे, जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता, ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे, ता प्यो पीवे शब्द गुर केरा, सब कारा अंदेशा परम चुकावे, सदा आनंद रहे दिन राती, जन नानक अंदिन हर गुण गावे। महला चौथा, गुर सतगुर का जो सिख आखाए, सो पलके उठ हर नाम से आवे, उद्यम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृत शरणावे, उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किलिक पाप दोख ले जावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बेंदिया उठदिया हर नाम से आवे, जो सास दिरास आए मेरा हर हर, सो गुरु सिख गुरु मन पावे, जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक तूर मंगे तिस गुरु सिख की, जो आप जपे अवरे नाम जपावे। पौड़ी, जो तुद सच त्याय दे से विरले थोड़े, जो मन चित इक अराध दे, तिनकी बरकत खाए असंख करोड़े, तुदनो सब त्याय दी से खाए पए, जो साहिब लोड़े, जो बिन सतगुर सेवे खांदे पहन दे, से मोए मर जम्मे कोड़े, कोई हाजर मिठा बोल दे, बाहर विष कडे मुख खोले, मन खोटे दया विछोले। श्लोक महला चौथा, मल जूई परया नीला काला खिदोलड़ा, तिन वे मुख नो पाया, पास न दे कोई बहन, जगत में गू पड़ सगवी, मल लाए मन मुख आया, प्राई जो निंदा चुगली, नो वे मुख कर के पेजिया, ओथे भी मुह काला दुहा वे मुखा दा कराया, पढ़ सुनिया सबत जगत विच पाई, वे मुख सने नफरे, पौली पौदी फावा होए के उठ कर आया, अगे संगति कुड़मी वे मुख रलना ना मिले, ता वोटी पतीजी फिर आन कर पाया, हलत पलत दोवे गए नित पुखा कूके तिहाया, तन तन स्वामी करता पुरख है, जिन न्याओ सच बह आप कराया, जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो साचे मार पचाया, एहो अखर तिन आख्या, जिन जगत सब उपाया। महला चौथा, साहिब जिसदा नंगा पुखा होवे, जिसदा नफर किथों रज खाए, जे साहिब कै कर वथ होवे, सो नफरे हथ आवे, अनहोंदी किथों पाए, जिसदी सेवा कीती फिर लेखा मंगिए, सा सेवा औखी होई, नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे न कोई। पौड़ी, नानक विचारे संत जन चार वेद कहंदे, भगत मुखे ते बोल दे, से वचन हो वंदे, प्रगट पहारा जापदा सब लोग सुनंदे, सुख ना पायन मुग्ध नर संत नाल खांदे, ओए लोचन ओना गुणे नो, ओए अंकार सरंदे, ओए विचारे क्या करें, जा पाग तुर मंदे, जो मारे तिन पार ब्रह्म, से किसे ना संदे, वैर करें निर्वैर नाल, सर्म न्याय पचंदे, जो जो संत सरापिया, से फिरे पवंदे, पेड़ मुंडा हूं कटिया, तिस नाल सुकंदे। श्लोक महला चौथा, अंतर हर गुरु त्याय दा वड़ी वड़ियाई, तुस दित्ती पूरे सतगुरु कटे नाही, इक तिल किसे दी कटाई, सच साहिब सतगुरु के वल है, ता चक चक मरे सब लोकाई, निंदका के मुह काले करे हर करते आप वदाई, ज्यो ज्यो निंदक निंद करे त्यों त्यों नित नित चढ़े सवाई, जन नानक हर आराध्या तिन पैरी आन सब पाई। महला चौथा, सतगुर सेती गणत जे रखे, हलत पलत सब तिसका गया, नित चहिया पाए चगू सुटे, चखदा चखदा चढ़ पया, नित उपाव करे माया तन कारण, अगला तन पी उड़ गया।

सब पाप जगते का तिन सिर लया, उस अगे पिछे कोई नाही, जिस अंदर निंदा मोह अंब पया, जे सोयने नो ओ हाथ पाए ता खेहू सेती रल गया, जे गुर की सरनी फिर ओह आवे ता पिछले अवगुण बख्श लिया, जन नानक अंदिन नाम से आया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब दू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याए दे सच सेवन सच्चे तेरा मान, ओना अंदर सच मुख उजरे सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाया।

पूरै सतगुरु से हुन सतगुरु मारे जे मेलन नो बहुते आलोचिए ना दे मिलन करतारे सत संगत तोई ना लहन विच संगत गुर विचारे कोई जाए मिले हुन ओना नो तिस मारे जम जंदारे गुर बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद की।

कोई पुत्र सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कार्य सब सवारे, जो इच्छे सो फल पाए सी, पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे, सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे, सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे, जन नानक मांगे तूर तिन जो गुर सिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे वड्याई, जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए, डरिये ता जे किछ आप दुखी चै, सब करता अपनी कला वधाए, देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सब आन निवाए, अपने आप भगता की रख करे, हर स्वामी निंदका दुष्टा के मौका ले कराए, सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए, अन दिन नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुर सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहिब आप है सच था हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवे सच वणंजले गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे किसदा कदे न होवी पला, उस दे आख्या कोई न लगे नित ओजारी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके उसदा काला भया, कर्म तरती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए, गला ऊपर तपावस न होई।

जन नानक को सब सोजी पाई, हर दर किया बाता आप सुनाए। मैला चौथा होंदे प्रतख गुरु जो बिछड़े, तिनको दर टोई नाहीं कोई जाए। मिले तिन निंदका मोह फिके, थुक थुक मोह पाही। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित पंबल पूसे खाई। जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहा फिराई, तिनकी पुख कदे ना उतरे नित पुखा पुख कुकाही। ओना दा आख्या को ना सुने नित हौले हौल मराही। सच गुर की वड्याई वेख न सकनी, ओना अगे पिछे थाओ नाही। जो सतगुर मारे तिन जाय मिले, रेंदी खोंदी सब पत गवाई। ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके, जे उस मिले तिस कुश्त उठाही। हर तिन का दर्शन ना करो, जो दूजे पाए चित लाही। कुर करते आप लिख पाया, तिस नाल क्यों चारा नाही। जन नानक नाम अराधू, तिस अपड़ को ना सकाही। नावे की वड्या

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें, जिसके मस्तक हाथ तरया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे तैज रखे प्रभ सोई। पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विण काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले, से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ को टोया, कूक पुकार को ना सुने को औखा होय होय रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बलद कर नित पलके उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किछ तिद्दू किछ गुज्जा ना हो।

चरण तोया गुर सतगुर पिछे तर गया जो लोहा कार संगोया जन नानक नाम से आए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा वड पागिया सोहागनी जिना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत प्रगासिया नानक नाम समाए पौड़ी एवं शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत गुहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत सब आत्म राम पछाणिया ता इक रविया इको ओत पोत इक देखिया इक मन्या इको सुनिया श्रवण स्रोत जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा सब रस तिन कह रिदे है जिन हर वस्या मन माहे हर दरगे ते मुख उजले तिनको सब देखन जाहे जिन निरपो नाम से आया तिनको पौ कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको तुर लिखिया आहे ते हर दरगे पहनाई है जिन हर वुथा मन माहे कोय आप करे सब कुटम स्यो तिन पिछे सब जगत छदाहे जन नानक को हर वेल जन तिन वेख वेख हम

0: से जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी दिठा तिना ले छाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तो वै पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुरु अमर है, जिस अंदर हर उधारिया। सच सच्चा सतगुरु पुरख है, जिन काम क्रोध बिख मारिया। जान डिठा पूरा सतगुरु, ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुंवारिया। गुरमुख जिता मनमुख हारिया, गुरमुख जिता मनमुख हारिया। श्लोक महला चौथा, कर कृपा सतगुर मेले उन, मुख गुरमुख नाम ते आए सी। सो करे जी सतगुर पावसी, गुर पूरा करी वसाए सी। जिन अंदर नाम निदान है, तिनका पौ सब गवाए सी। जिन रखन को हर आप होए, होर के ती चक चक जाए सी। जन नानक नाम ते आए तू, हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा, गुर सिखा के मन पाव दी, गुर सतगुर की वड्याई। हर राखो पैज सतगुरु की, नित चढ़े सवाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दीवान हर, तिन सब आन निवाई। जिन्नी दिखा मेरा सतगुर पाव कर, तिनके सब पाप गवाई। हर दरगे ते मुख उजले, बहु शोभा पाई। जन नानक मंगे तूर तिन, जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हौ आप सलाही सिर्फ सच, सच सच्चे की वड्याई। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने न पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया, से तृप्त रहे आघाई। एहो हर रस से ही जान दे, ज्यो गूंगे मिठाई खाई। गुर पूरे हर प्रभ सेविया, मन वजी वधाई।
1: श्लोक महला चौथा, जिना अंदर उमर थल से ही जानन सूलिया। हर जाने से ही बिरहो हौ तिन विट्टो सद कुम कोलिया। हर मेलो सज्जन पुरख मेरा, सिर तिन विट्टो तन रोलिया। जो सिख गुर

कर कृपा नानक मेल गुर पै सिर वेचिया मोलिया। महला चौथा, औगुणी परया शरीर है क्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण वे हाजी है मल हो मैं कड्डे तोए। सच वणन जय रंग स्यों सच सौदा होए, तोटा मूल न आवई लाहा हर पावे सोए। नानक तिन सच वणंजिया जिना तुर लिखिया प्राप्त।

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यो उबली मजी ठह रंग गह गहा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू लै अतरती।

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया। हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया। तुद आपे आप रखिया, सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया। तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर को सिरजन हारिया। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो, तिस काला मोह जम मारिया। तिस अग्गे पिछे टोई नाही, गुर सिखी मन विचारिया। सतगुरु नो मिले सही जन उबरे, जिन हृदय नाम समारिया। जन नानक के गुर सिख पुतो, हर जप्यो हर निस्तारिया। महला तीजा, हौ मैं जगत पुलाया, दुर्मत बिखिया बिकार। सतगुर मिले ता नदर होए, मनमुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल ले, जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी, सच सच्चे की सिफत सलाह है, सो करे जिस अंदर पिजे। जिन्नी एक मन एक अरादिया, तिनका कंध ना कबहू छिजे। तन तन पुरख सवास है, जिन सच रसना अमृत पिजे। सच सच्चा जिन मन पामदा, से मन सच्ची दरगह लिजे। तन तन जन्म सच्चियारिया, मुख उज्जल सच।

चौथा साकत जाए निवें गुर आ गए मन खोटे कूड़ कूड़ आ रे जा गुर कह उठो मेरे पाई बह जाहे कुसर बगुलारे गुर सिखा अंदर सतगुर वरते चुन कड्डे लद्दो वारे ओए अगे पिछे बह मोछ पाइन ना रलनी खोटे आरे ओना दा पख सो उथे नाही जाए कूड़ लैन पेडारे जे साकत न रखावाई लोचिए बिख कड्डे मुख उगलारे हर साकत सेती संग ना करियो ओए मारे सिरजन हारे जिसका यो खेल सोई कर वेखे जन नानक नाम समारे। महला चौथा सतगुर पुरख अगम है जिस अंदर हर उरधारिया सतगुरु नो अपड़ कोई ना सके जिस वल सिरजन हारिया सतगुरु का खड़क संजो हर भगत है जित काल कंटक मार विडारिया सतगुरु का रखन हारा हर आप है सतगुरु के पिछे हर सब उबारिया।

पौड़ी सच सुत्या जिनी आराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे। हौ बलिहारी तिन कौ जे अंदिन सच लवे जिन मंतन सच्चा पामदा से सच्ची दरगे गवे। जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे।

चौथा सतगुर सेविए अपना पाए नाम अपार पौजल डुबदिया कढ ले हर दात करे दातार तन तन से सहा है जे नाम करे व्यापार वन जा रहे।

जन भगत है सच सच्चा जिनी अराध्या, जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच ला दिया। सच साहिब सच जिनी सेविया, काल कंटक मार तिनी साध्या। सच सच्चा सब दू वड़ा है, सच सेवन से सच रला दिया। सच सच्चे नू

रंग सुभाए सतगुर सेती मन रता रखिया बणत बनाए जिहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया श्लोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विस

गुरमुख जापे शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, ज्योतिष पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी, तू करता सब किछ जानदा, जो जी अंदर वरते, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणते, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनते, तू कट कट इक वरतदा, सच साहिब चलते, सतगुरु नो मिले सो हर मिले, नाही किसे परते। श्लोक महला चौथा। एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाई है चित, क्यों सास गिरास विसारी है, बहंदियां उठदियां नित, मरण जीवन की चिंता गई, इहो जीड़ा हर प्रभु वस, ज्यों पावे त्यों रा

दुख विहाए, सतगुर पुरख निर्वैर है, आपे लए जिस लाए, नानक दर्शन जिना विखा लियोन, तिना दरगे लए छड़ाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अंकारी, अंतर क्रोध जुए मतहारी, कूड़ कुसत ओह

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड़े मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले सच्चार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका वरते सब जाहर। महला पंजवा, मुंडो पुल्ले मुंडते किथे पाइन हाथ, तिन्ने मारे नानका जे करण कारण समरथ।

आपो आपनी आपे पछतानी अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े कानी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साह के से परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अज

पंजवा अब खद सबे की तेन निंदक का दारू ना है आप पुलाए नानका पच पच जो नी पाहे पौड़ी पंजवा तुस दिता पूरे सतगुरु हर तन सच अखुट सब अंधे से मिट गए जम का पौ छुट काम क्रोध बुरे आया संग साधु टुट विन सच्चे दूजा सेम दे होए मरसन बुट नानक कौ गुर बख्शिया नामे संग जुट श्लोक महला चौथा तपा न होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया अगों दे सदिया सत्य दी पिखिया ले नाही पिछों दे पछताए कै आन तपे पुत विच बहा लिया पंच लोग सब हसन लगे तपा लोभ लह

सुख ना पाएन मुगद नर संत नाल खांदे ओए लोचन ओना गुणा नो ओए अहंकार सड़न दे ओए बेचारे क्या करें जा पाग तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे न संदे वैर करन निर्वैर नाल तर्म न्याय पचंदे जो जो संत सरापिया से फिरे पवंदे पेड़ मुंडा हूं कटिया तिस डाल सुकंदे। श्लोक महला पंजवा। गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया पन्नन करण समरथ प्रभ सदा समाले मित्र तू दुख सबाया लथ। महला पंजवा। खुद आवंत ना जाने लाज कुलाज कु

गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरुष सुने सो

ए पूरे सतगुरु पावे गुर सिखा अंदर सतगुरु वरते जो सिखा नो लोचे सो गुर खुशी आवे सतगुर आखे सो कार कमावन सो जप कमावे गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे विन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े तिस गुर सिख फिर नेड़ ना।

नानक आख सुनावे जे बिन सतगुर के मन मने कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवर तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम

तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना थान थनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना नानक प्रभ शरणागत।

काम क्रोध लोभ मोह संग सादा पखे कर कृपा प्रभ आपनी हर आप परखे नानक चलत ना जापनी को सके न लखे। श्लोक महला पंजवां।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुण्या अमरा पद पाई, तुद जेवड तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन सुआओ जिना सतगुर पेटिया। महला पंजवा। दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग के, वत्स सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तणी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी, तोसा दिच्चे सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा। अंतर चिंता नैनी सुखी मूल न उतरे पुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो दुख। महला पंजवा। मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच न लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमिल इक पछाणिया पौड़ी। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समरथ अपना बिनसे सब मंदा, पतित उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत वत्सल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा, नानक जा

बिखे कौड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाओ पौड़ी। ए निशानी साधकी जिस पेटत तरिए जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिए पव सागर संसार बिख सो पार उतरिए हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिए।

जिन हर उठा चित गाली अल पला लिया कम न आवे मित। महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम नाम तन कीता पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी तो वो ना चली खसम नाल लब मोहे विगुते करतब करन पलेरिया मद माया सुते फिर जून पवायन।

लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे न कोए, जिस गुर पेटे नानका तिस मन वसिया सोए। पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाउ मिठा, साध आया तिन हर जना चख साधी डिठा, पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा, एक निरंजन रव रहा पाव दोया कुठा, हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुठा। श्लोक महला पंजवा।

जोड़न हारा संत नानक पादर पदरो पौड़ी सोई सेव्यो जी अड़े दाता बख्शिंद किलविक सब विनाश होन सिमरत गोविंद हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत।

पंजवा जीवन पद निर्वाण इको सिमरी है, दूजी नाही जाए किन बिद तीरी है। डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन, तन तन होसी चार जाने कोए जन। रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया, जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया। रंग रते निर्वाण सच्चा गावही, नानक शरण द्वार जे तुद पावही। पौड़ी जम्मन मरण ना तिन को, जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हो।

दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए पौड़ी। जिस सर्व सुखा फल लोड़िए सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म इक नाम ते आवो, कोई सगल की रेण का हर संग समावो।

एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ जियो हमारा खनिए हर मंतन संदड़ी वत। महला पंजवा जे कर गए प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोजक कैसूल। पौड़ी सब निधान कर जिस दे हर करे सो होवे जप जप जीवे संत जन पापा मल तोवे चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे गुरपुरा जिस पेटी है मर जन्म ना रोवे प्रभ दर्श प्यास नानक घणी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा पोरी परम वंजाए प्री मोहब्बत हिक तू जिथों वंजे जाए तिथाओ मौजूद सोए। महला पंजवा चढ़ के कोड़े कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी हंसा से ती चित उलासे कुकड़ दी ओडारी। पौड़ी रसना उचरे हर श्रवणी सुने सो उदरे मिता हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता नानक लड़ लाए।

14 अब मोहे जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाये, सो जल बिन भगवंत न पाये, जे पावक सुर न

तू सतगुर हौ नौ तन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौरी कबीर जी जब हम एको एक कर जानिया, तब लोगे काहे दुख मानिया। हम अपत्ते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई रहाओ। हम मंदे मंदे मन माही, साझ पाथ काहू स्यो नाही। पत अपत ता की नहीं लाज, तब जानोगे जब उगरे गोपाज। कहो कबीर पत हर परवान, सर्व त्याग पज केवल राम। गौरी कबीर जी नगन फिरत जो पाये जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिये पाई, खुश रे क्यों ना परमगत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी संध्या प्राप्त।

देव कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण

उपजत बिन सत रोवत रहबो रहाओ। जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कौ का की माया। जस जंती में जियो समाना, मुए मरम को का कर जाना।

तोती, तित लागे कंचुआ फल मोती, कवन सो कार जो निरपो कही है, पौ पज जाए अभय होए रही है। रहाओ तट तीरथ नहीं मन पति।

इस पर चाय परच रहो एस गौड़ी कबीर जी। जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना, ना जाना बैकुंठ कहाँ ही जान जान सब कहे कहाँ ही रहाओ। कहन कहा उनने पति यही है तो मन माने जाते हूँ मैं जई है। जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग होए नहीं।

एक पंच पनिहारी टूटी लाज परे मतहारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कूटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी। अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। रहाओ जोगी जति तपि ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी, साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभ कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। ऐसो अचरज देखो कबीर, दद के पोले बिरोले नीर, रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठा सह ही गय मरे, माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चूगे नित पेड, राम रमत मत प्रगति आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे। ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हौ तप का हीना, अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत वर्ष तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी। काशी मगहर सम बिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी, कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री राम। गौड़ी कबीर जी। चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा, इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उरवार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेहे ना हर को नाम, हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर, गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंदा, सत राम झूठा सब तंदा। गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके, जमते उलट पए है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट पए है मीता, साकत उलट सुजन पए चीता, अब मोहे सर्व कुशल कर मानिया, सांत पई जब गोविंद जानिया। रहाओ तन में होती कोट उपाद, उलट पई सुख सह समाद, आप पछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ, कहो कबीर सुख से।

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यों गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुखमन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रहो जे

संगम मन में नावो, लोचा समसर इहो व्यवहारा, तत विचार क्या और विचारा, अब तेज बाय पृथ्वी आकाशा।

बोल अब मोहे राम अपना कर जानिया सह सुभाए मेरा मन मानिया रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया राम भगत बैठे कर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज पागी गौड़ी कबीर जी जिह मरने सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द प्रगासिया अब कैसे मरो मरन मन

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

कहो कबीर हर चरण दिखावो, पाछे ते जम क्यों ना पठावो। गौड़ी कबीर जी आपे पावक आपे पवना, जा रहे खसम ता राखे कवना। राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहा समाए। रहाओ काको जरे काए हुए हान, नटवट खेले।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे। विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप न रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पे हो, ए मन लीन पे।

सिद्ध पय लिव लागे रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कल्प कर तारे जो हर हरे सो हुए ना आना कह कबीर राम नाम पछाना।

तो समरथ निज पत है दाता, कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवरना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो, हर ठग जग को

आई, जन्म मरण कट परम गत पाई, रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए, अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना, सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार, चरण कमल

जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक,

वो कोई कुशल कुशल करते जग बिन सह कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आ गए जियो देही ऐसे पितर तुम।

गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया अंजन माय निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है गुरमत मनुआ अस्थिर राखो इन विद अमृत पियोई है रहाओ गुर के बाण बजर कल छेदी प्रगटिया पद परगासा सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका नेचल शिव कर बासा तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है इहो जग बेदिया पाई दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे डोर रही लिवलाई उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुर्मत पागी कहो कबीर अनुपव इक देखिया राम नाम लिवलागी गौड़ी बैरागन तिप दे उल्टत पवन चक्र खट पे दे सुरत सुन अनरागी आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पई अवरे नातर था बेगाना रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर्म

ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बन जा रहा रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती मन तरंग बटवा।

पंडित गुणी सूर हम दाते एक कहें बद हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुरु मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने विकारा हर पद दृढ़ कर रही।

गज नव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बेहतर पाठ लगो अधिकाई गई बुनावन माहो कर छोड़े जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिये तोल न तुलिये पाचन शेर अढ़ाई जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कत आई।

होए महोए। जित कट नाम ना उपजै, फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे। रहाओ साध मिले सिद्ध पाये, के एहो जोग के भोग दो मिले।

सुने हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए। गौड़ी जेते जतन कर।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहे हो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो विसारे हो रे हीरा लाल अमो

उनमत मान हिरियो मन माही गुर का शब्द न तारियो रे। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मदरस लैत बिकारियो रे। कर्म पाग संतन संगाने कासट लोह उधारियो रे। तावत जोन जन्म प्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे। कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भगत निस्तारियो रे। गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे। चल त्रच्यो जगदीश काम सुआए गज बस परे मन बौरा रे अंकस कहो शीस। बिखे बाच हर रात समझ मन बौरा रे। निरपय होए न हर पजे मन बौरा रे। गयो न राम जहाज राव मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे। लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परे।

राम नाम तन कर संचौनी सो तन कथि न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गोविंद।

सतगुर ओट लयो गौड़ी। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, मैं नाही कछ आए न मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा। रहाओ इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंक की बार गगरिया फोरी। कह कबीर इक

गर्भ जोन में उर्द तप करता तो जठर अगर मैं रहता। लख 84 जोन प्रम आयो अब के छुटके ठौर न ठायो। कहो कबीर पज

रमैया गुण गाय जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए ज्यों संपै

कहां पया नर देवा तोखे, क्या जल बोरियो ज्ञाता, जीरे जाहेगा मैं जाना, अब जत समझ आना, जत जत देखो।

परम प्रकट होए नाचो, या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंगते डरपे, सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बहुरा, अब तो जरे

जोन में प्रमथ नंद बहु ठाकोरे भगत हेत अवतार लियो है पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब यो नंद कहाँ थोरे। रहाओ संकट नहीं परे जोन नहीं आवे नाम निरंजन जा कोरे कबीर को स्वामी।

आये नाम पदार्थ मने बसाये हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक तोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माए हमारा।

तब तुम नाहीं, अब तुम हो हम नाहीं, अब हम तुम एक भये हैं, एक कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कहता, अब बुद्ध

जो कामन फूली बस अनूप न पाई, कहत कबीर नवे कर मूसे दसवें तक समाई। गौड़ी माई मोहे अवर

दिखे रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पे मन बासन त्याग कट्यो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है थाना ना। ते बड़ पाग बस्यो मन जाके कर्म प्रदान मथाना ना। काट सकत

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्ही माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहां बोलते अक्षर आवा, जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लख न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहूं, कहूं ता को उपकार।

लिख अर मेटे ताहे न माना, ओंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल में पावा।

टट्टा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के न जाही, देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट कट पर चो पावा। ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगिया सगल जग खावा, सो ठग ठगिया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर में डर रहा समाई, जो डर डरे ता

जोत्रे भवन तन माहे समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर ना रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन की जय तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो

अब पौ पान परोसो आवा जो बाहर सो पीतर जानिया पया पेद पूपत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन माने मरमी होए सो मन को जाने मत कोई मन मिलता।

बल बल जे बिसंतना जस गावे, विसन मिले सभी सच पावे। वाह वाह वाही जानिए, वाह जाने एहो होए, एहो

निवारे, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रिये ओकंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब है मन माना।

फिरत खपत अज हूं न चेते, अब जग जान जो मना रहे, जह का बिछुरा तह फिर लह। बावन अखर जोरे आन, सकिया ना अखर एक पछान, सत

अंग माया ब्रह्म रमे सब संग ना ओ बढ़े न कटता जाए अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे अनद मूल परम पद पावे साध संगत उपजय विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कभो न बहो।

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोणिया।

हर त्यावें हर त्यावें तुझ जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पे जिन हर त्याया जियो, तिन टूटी जम की फांसी, जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो, तिनका पौ सब गवासी, जिन सेविया मेरा हर जियो, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जियो, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाम तुझी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करे हर पूजा जी, तप तापे जपे बेअंता, तेरे अनेक पढ़े वो सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुझ जेवड़ अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू ने चल करता सोई, तुझ आपे पावे सोई वरते जी, तू आपे करें सो होई, तुझ आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी, तुझ आपे

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाईया।

गुर प्रसाद वसै मन आए, दुख अनेरा विचों जाए। साच प्यारा आप करे, अवरी को साच ना दे, जे किस

हित रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ। नानक आखन वीरा वीर, हित रंग नाचो रख रख पैर। आसा मैला पैला पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया। अंधुले दे दिस मूंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा लिवलाए। रहाओ जी उपाय जुगत हथ कीनी, काली नाथ क्या वड़ा भया। किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्व निरंतर रव रहा। नाल कुटम साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया। आगे अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या वड़ा भया। रतन उपाय तरे खीर मथया, और पखलाए जे असी किया।

पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नजर करे सा सुहागण होए, आसा मैला पहला ग्रियो बन संतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज थाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन भगवान रहाओ, अधिक त्यास पेक बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ ना।

जिंद तन मन हर पै आ गए जिंद झूठ विकार महा दुख देह देख वरन दिसे सबके जो उपजे सो आवे जाए नानक अस्थिर नाम रजाए आसा मेला पहला एको सर्वर कमल अनूप सदा विदासे पर।

जो हर राते से जन परवान तिनकी संगत परम निधान हर वार जिन पाया तन नारी हर स्यों राती शब्द विचारी आप तरह संगत कुल तारे सतगुरु सेव तत विचारे हमरी जात पथ सच नाओ कर्म तर्म संजम सत भाओ नानक बस

एक तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यों जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला कौ किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकथ कथो गुरुमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठ मज्जन हर रस रेद, गुरुमुख निर्मल मैल न लागे, नानक हृदय नाम वडे तुर पागे, आसा मेला पहला, निर निर पाए लगो गुर अपने, आत्म राम निहारे।

गुर प्रसाद रतन हर लाभे मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ रमनी रवे बंधन नहीं टूटे विच हो मैं परम न जाई सतगुर मिले तहु मैं टूटे ताको लेखे पाई हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम सुख सागर उर्धारे भगत वचन जग जीवन दाता मत गुरमत हर निसारे मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए मनसा मने समाए नानक कृपा करे।

ऐसा गुरमत रमत सरीरा, हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ। अनत तरंग भगत हर रंगा, अंदिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम भगत जन रहे निरारा। सूची काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार, अपार।

ऐनक अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक कर।

चीने तत गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पड़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ पागे, पहरुवरा सब चोर न लागे।

नदर करे मेलावा होई राव सरोरड़े तन साच पछाणिया सह सुभाए अपना फिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामन कंते मन भावे कहत नानक पै पाव का करे सिदार सधी से जैर।

एक जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिप्पी वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मैला पैला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा ऊपर फुरमाइश तेरी लख उठ रखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निरा फल का।

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ताजी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जेवसे नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमस्यो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मरिया कर एक खटे एक रतीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राहो सच्चा नावन तासी है जा एनस लागे पाओ इक लोकी होर छमिछरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कभू निकूटस नाहे।

कर कर पगवे पेख पए, तौ कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े, छोड़ विलायत देश वे, पीर पे कांबर सालिक साधक, छोड़ी दुनिया खाए पए, साध सहज सुख रस कष्ट जियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए, दुखिये दर्द वंद दर तेरे, नाम रते दरवेश भये, खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी, सिखा सूत तोती कीनी, तू साहिब हो सांगी तेरा, प्रणवे नानक जात कैसी, आसा कर पंजवा महला पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मनवासे, फिर ना रहे जैसे पवे उदासे, मन मेरा दयाल सेती फिर ना रहे, लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ। फूल माला गल पहरोगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिगारो, पंच सखी हम एक पतारो, पेड़ लगी है जीड़ा चालन हारो, पंच सखी मिल रुदन करे हार, साहो पजूता प्रणवत नानक लेख।

सीमा सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंद्री पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा महला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कहिए भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला खुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाउड़ हुकुम ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई। जे को दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी सतरंज बाजी पक्के नाही कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

जो किछ करे पला कर मानो, सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुगे जुग जोगी, परम तंत में जोगं। अमृत नाम निरंजन काया, ज्ञान काया रस कोगं। रहाओ शिव नगरी में आसन बैसो, कल्प त्यागी बादं। सिंही शब्द सदा तुम सो है, एन स्पूरे नादं। पत विचार ज्ञान मत डंडा, वर्तमान विपूतं। हर कीरत रह रास हमारी, गुरुमुख पंथ अतीतं। सगली जोत हमारी सम्या, नाना वर्ण अनेकं। कहो नानक सुन करथर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। ऐसा मेला पहला, गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे, कर करनी कस पाई है।

रंग रच रहा एनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गया रहाओ पूरा साज प्याला सहजे तिसे पियाए जा को नजर करे अमृत का व्यापारी हो वह क्या मद छूछे पौ तरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम हो वह मुक्त वैकुंठ करे क्या सिर्फ तीरता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर कर जोगी खीवा अमृत धार है आशा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने की दर्द न आया करता तू सगना का सोई जे थकता सकते को मारे काम रोस न होई रहा सकता सिंह मारे पै वगै खसने सापुर सा।

हर दर्शन पावे वड भाग, गुर के शब्द सच्चे बैराग। हर दर्शन वर्ते वर्तारा, गुर का दर्शन अगम अपारा, गुर के दर्शन मुक्त गत होए।

गुर के दर्शन सदा सुख होए, गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवे परवार साधार, निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाई, गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख तां को लगे नकीर, जम काल किस नीड़ ना आवे, नानक गुरमुख

समाए सेवड़ पागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह है तिन बलिहार है जाओ दर साचे साचे गुण दाओ आपे देव है सह सुभाए नानक कीमत कह न जाए ऐसा मैला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई चिरी विछुने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विद होए हर अपरंपर

पाए। जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुगाए रहाओ। शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर। आखण आखे बके सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए। गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मो चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार। आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया।

सुख पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत्सर हर जल नाया, दुर्मत महल सब दुर्त गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण बिगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, उस तक निंदा गुर समझन आई, इस युग में लहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एकठो छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाए, गुरमुख ज्योति जोत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हो मैं मारे सदा उदासा, आसा मेला तीजा, लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दो संकर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे, रहाओ करणी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को था।

दोहागणी का मन देख सिंगार, पुत्र कलत तन माया चितलाए, चूत मोह पाखंड विकार। राव सदा सुहागन जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, सेज सुखाली अंदिन हर रावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे। सा सुहागन साची जिस साच

जेहे कर्म कमाए सब दे उचो ऊंचा होए नानक साथ समावे सोए। ऐसा मेला तीजा भगत रता जन सहज सुभाए गुर कै पैसा चै साथ समाए बिन गुर पूरे भगत न होए मन मुख रूने अपने।

अंतर निर्मल अमृत शरण आए, सदा सूचे साथ समाए। हर सब वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर। जहां जाओ तह वेखा सोए, गुर बिन दाता अवर न कोए। गुर सागर पूरा पंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार। गुर प्रसादी देवन हार, नानक बख्शे बख्शन हार। आसा मैला तीजा, गुर सायर सतगुर सच सोए। पूरे पाग गुर सेवा होए, सो बुझे जिस आप बुझाए। गुर प्रसादी सेव कराए, ज्ञान रतन सब सोजी होए। गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे, अंधन जागे वेखे सच सोए। रहाओ मोह गुमान गुर सब जलाए, पूरे गुर पे सोजी पाए। अंतर महल गुर शब्द पछाने, आवन जान रहे फिर नाम समाने। जम्मा मरना है संसार, मनमुख अचेत माया मोह गुबार। पर निंदा बहुकूर कमावे, विष्टा का कीड़ा विष्टा माए समावे। सत संगत मिल सब सोजी पाए, गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए। पौना मन्ने सदा सुख होए, नानक सच समावे सोए। आसा मैला तीजा पंच पदे, शब्द मरे तिस सदा आनंद। सतगुर पेटे गुर गोबिंद, ना फिर मरे ना आवे जाए। पूरे गुर ते साच समाए, जिनको नाम लिखिया तुरलेख। ते अंदिन नाम सदा त्यावे, गुर पूरे ते भगत विशेख। रहाओ जिनको हर प्रबले मिलाए, तिनकी गहन गत कहीं न जाए। पूरे सतगुरु दित्ति वड्याई, उत्तम पदवी हर नाम समाए। जो किछ करे सो आपे आप, एक कड़ी में थाप थाप। कह कह कहना आप सुनाए, जे सो काले थाए न पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए। जहां शब्द वसे तहां दुख जाए, ज्ञान रतन साचे सहज समाए। नावे जेवड होर पर नाही कोए, जिसनो बख्शे साचा सोए। पूरे शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए। आसा मैला तीजा, नृत्य करे बहु वाजे बजाए। यो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए। अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बले न सोजी पाए। गुरमुख भगत कट चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए। रहाओ गुरमुख निरत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए। मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर के सबल अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार। गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी पव जल तरे। गुर के वचन भगत खाए पाए, हर जियो आप वसे मने आए। हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, नेचल भगत हर सियो चित लाए। भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए।

होई। गुर प्रसादी मन से हर बूझे सोई, मैं सहुदाता एक है और नाही कोई। गुर कृपा से मन से ता सदा सुख होई। रहाओ इस जुग में निरपो हर नाम है, पाइये गुर विचार, बिन नामे जम के बस है।

तू कर कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इको ओंकार सतगुर प्रसाद रागा सा कर दूजा मेला चौथा। किस ही तरह किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तरह किया पुरम सके नाल जवाई। किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुहाई। हमारा तरह हर व्या समाई, हम हर स्यो तरह किया मेरी हर केक। मैं हर बिन पक तरा और न कोई, हूँ हर गुण गावा असंख अनेक। रहाओ जिन स्यो तड़े करें से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे। फिर न रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यो तरा किया जिसका कोई समर्थ ना है। ये सब तड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी। जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए। जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तड़ा जिन ए तड़े सब गवाए। मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अंकार वधावे। जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरह धर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे। आसा मेला चौथा। हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया। गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रव रया कट अंतर मुख बोलो। गुर अमृत बहना रहा, मैं मन तन प्रेम महा बैराग। सतगुर पुरख पाया वड़ पाग, दूजे पाए पवे बिख माया। पाग हीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया। गुर पूरे नानक हर पाया, गुर पूरे नानक हर पाया। आसा मेला चौथा।

जाए वडे पाग गुरु मुखार पाए नाम हीन कालख मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया वड़ा वड़ा हर पाप कर पाया नानक गुरमुख नाम दिवाया आसा महला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आंख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सत गुरु नाम दृढ़ाया रस गाए गुण कर

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मत कट कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रविया सब सांस ग्यासा, रहाओ नाम में सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा। पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उठापे, नानक नाम देवे हर आपे। आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस रसाई। हर हर नाम जप अनक तरंगा, जप जप नाम गुरमुख सालाही। मारिया काल जम कंकर पुयंगा, रहाओ हर हर गुर में भगत रखाई। गुर सुखा सिख देवे मेरे भाई, हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने। जो कुंचर नाए खाक सिर छाने, जे वड पाग होवे वड ऊचे, नानक नाम जपे सच सूचे। आसा मैला चौथा, हर हर नाम की मन भूख लगाई। नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई, नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता। नाम जपो नाम में सुख पावो, नाम रखो गुरमत मन चीता। रहाओ नामो नाम सुनी मन सरसा, नाम लाहा ले गुरमत बिकता।

दुख तंदा हर हर हर जस जपै वड पागी नानक गुरमुख नाम लिव लागी। एक ओंकार।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यों मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मती उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्त है तिस आ गए हम आदेश राओ। गावे राग पाक बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जो वे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चर।

जोगी जंगम श्रेष्ठ सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लागो मनुआ पेल। ऐसा मैला चौथा कब को पहले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बने आई हों हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। कब तो मेले पंच सत गायन कब को राग तुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे कब लग मेरा मन राम समारे। कब को लोगन को पति आवे लोक पति ने ना पत होए जन नानक हर हृदय सद त्यागो ता जय जय करे सब कोए। आसा मैला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे पाई हम जन के तो मैं पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे अन दिन हर लिव लाए जो इच्छो सोई फल पाओ फिर भूख ना लागे आए। आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत पले तुद पावे जिनकी पत पावे खाए। नानक आत्मा राजे हर गुण जो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हर अपने गुण गाहक वनज ले जाए।

हर अठवां के काफी महला चौथा आया मरण तुरा हो मैं रोई है। गुरमुख नाम से आए अस्थिर होई है। गुरु पूरे सावास चलन जाने लाहा नाम सो सार सब सुनाने।

जीवन मरण सुख होए जिना गुर पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। ऐसा मेला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुर प्रसादी बुझ सच समाया। जिन पुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया, दर्श कैश्चार मेल बुलाया रहाओ। अंतर नाम निदान गुरमुख पाइए, अंजन नाम से आए हर गुण गाइए। अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाइए, हूँ मैं गर्भ गर्भ आप खुआइए। नानक आपे आप खुआइए, गुरमत मन पर गास सच्चा पाइए।

सुन कौन दिन हर नाम कीर्तन करो, सतगुरु मो को हर नाम बताया, हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहाओ, हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर दिन रह न सको हम।

जैसे हंस सर्वर बिन रह न सके, तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हु प्रीत लाई दूजा पाओ, रिज तार किन्हु प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण, पद नानक सिमरत हर हर भगवान। आसावरी महला चौथा, माई मेरो प्रीतम राम बताओ री माई। हाँ हर बिन खिन पल रह न सको, जैसे कर हल बेल री जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पौ बहुत दिखाया, पाई मीत कुटुंब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख विमोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा, बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे, रहाओ एक फिरे उदासी तिन काम व्यापे, एक संचय गिरही तिन हुए नापे, एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुनाए, त्रैगुण मोहे मोहा आकाश।

जो तू कहे सोकार कमावा जन नानक गुरुमुख नेड़ ना आवा। आसा मैला पंजवा ससु ते फिर की नीवाक देर जिठानी मोई दुख संताप।

प्रीत दुखिया त्यागी लो गारीत त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधया ज्योत स्वरूप अनाद वाजया महा आनंद गुर शब्द विचार प्रेस राती तन सुहागन।

चार जित ग्रह वसै सो ग्रह सो बावंता गुरमुख पाई किन विरलै जनता सो करणी कामन गुरमिल हम पाई जज काज परथाए सुहाई रहाओ जिचर वसी पिता के साथ टिचर कंक बहु फिरे उदास कर सेवा सतपुरुष मनाया गुर आनी कर मैं तो सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सत संतत पूत आज्ञाकारी सुगढ़ स्वरूप पिछ पूरे मन कंत स्वामी सगल संतोखी देर जेठानी सब परवार माय श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृह जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख विहाए।

तप तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, फल खाके सिमरत वेद व्यास। जै बैसो तै ना ले बैसे, सगल पवन में सबल प्रवेश है। होची शरण पया रह न पाई, कौमी पाहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर के आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वस्या गुण गाए अनंता।

अमोल रत्न अमोलारास विष्ट सुभाई पाया मीत सौदा मिलिया ने चल सीत पौ नहीं तस्कर पौ न पानी सहज विहाजी सहज ले जानी हप के खटे दुख नहीं पाया सही सलामत कर ले आया मिलिया लाहा पै आनंद तन सहा पूरे बख्शिंद सौदा गुरमुख किने।

तावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अघाए, जन्म दोष परे मेरे पाछे, अब फकरे ने चल साधु पाए, सहज तुन गावे मंगल मनुआ, अब तांतो फुनकाल न खाए, करण कारण समर्थ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय, नाम तेरा जब जीवे नानक, ओत पोत मेरे संग सहाय, आशा मैला पंजवा, अरड़ावे बिललावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ, जे कोई उसका संगी होवे, नाले ले सिदावे, अनहोंदा अजगर पार उठाए, निंदक अग्नि माहे जलावे, परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते, सो नानक आप सुनावे, भगत जना को सदा आनंद है, हर कीर्तन गाए बिकसावे, आसा मेला पंजवा, जो मैं कियो सगल सिगारा, तो भी मेरा मगना पतियारा,

बस्तर भी कुखन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितना लेख है, पत शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु का वासा सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक अर बहुत फुरमाइस, मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिल बे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मुस्तक पाग तिन सब गुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभु मिले आता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

अस्त्र रख परे ते चाम इस ऊपर ले राख्यो गुमान एक वस्त बूझे ता हो वै पाक बिन बूझे तू सदा न पाक कहो नानक गुर को कुर्बान जिससे पाये हर पुरुष सुजान आखा मेला पंजवा एक तुके चौपदे एक कड़ी दिन को बहुत दिहारे मन न रह कैसे मिलो प्यारे एक पल दिन को कभू ना बिहावे।

सब अंत न जाने पंच दूत मिल फिर हो विछोड़ी क्रम क्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया।

खुद जन बकरा मोको कहाँ डवाई रहाओ हर मेरी ओट में हर का तान हर मेरा सखा मन माहे दीवान हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो गुरमुख तन छट्टी हर मेरा सा हो गुर कृपा से ए मत आवे जन नानक हर कै अंक समावे आसा मैला पंजवा प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई सतगुरु सेव सब फल पाई मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा मनसा का दाता सब सुख निधान है अमृत सर सब ही पर पूरा रहाओ चरण कमल हृदय अंतर धारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे संत सखी मिल मंगल गाया और हद बाणी नाद बजाया गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सह सुवाए आसा मेला पंजवा कर कृपा हर प्रगति आया मिल सतगुरु तन पूरा पाया ऐसा हर तन संचिय भाई कहे न जाने जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कत हो न जाए रहा कोट न आवे निकुट न जाए खाए खर्च मन रहा अगाए सो सत्सा हो जिस कर हर तन संचाना इस तन से सब जग वरसाना तिन हर तन पाया जिस खूब लिखे का लेना जन नानक अंतवार नाम गहना आसा मेला पंजवा जैसे किसान बोवे किसानी काची पाकी बाढ़ परानी जो जन में सो जानो मुआ गोविंद भगत अस्थिर।

कर में वस्त बाहर उठ जाता, सुनी न जाई सच अमृत का था, वार करते चूठी लग जाता रहा, वजो साहिब का सेव बिरानी, कैसे गुने अच्छा दियो प्राणी, तिस्यो लोक जो सद ही संगी, कामना आवे सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभ दीन दयाला, जो पावे त्यों कर कृतपाला, आसा मेला संजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहा उहा उन संकाम, बिन हर नाम अवर सब छोरा, कृत अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ, भगत पंडार गुरबाणी लाल, दावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल सो लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान, नानक को गुर दीक्षा दीन, प्रभ अविनाशी कट कट चीन, आसा महला पंजवा, अनद विनोद परे पुर तारिया, अपना कार्य आप संवारिया।

साथ पूरा गुरु पूरी बनत बनाए नानक भगत मिली वड्याई आसा मैला पंजवा गुर कै शब्द बनावो।

बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पन्नवा बुद्ध प्रगास कई मत पूरी तमते बिनसी गुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई ने बूढ़त कोर अंध कूप में निक्षो मेरे पाई रे रहाओ महा अगा अगन का सागर गुर बोहित सारे रत्नागर दुतर अंध बिखम ए माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जात पाप कछ उक्त न मोरी गुरु नानक शरणागत तोरी आसा मेला पन्नवा तिप दे दूजा हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन में लह जाता हर रस के माते मन सदा आनंद।

हर साधु हर समाए लाख करोरी मिले न के जिसे प्राप्त तिस ही दे नानक चाक पे बिस्माद नानक गुरते आया साद ईत ऊत कस छोड़ न जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा मेला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके गुरमत अपनी धारी होए।

आज्ञा मान भगत हुए तुम्हारी, जो इव मंत्र कमावे नानक सो पौजल पारे उपारी। आसा मेला पंजवा दुख दे पई प्राप्त मानक दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अगर काज तेरे किते न काम, मिल सौद संगत भज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल करन के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तक संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहू नानक हम नीच कर्मा, शरण करे।

उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगन सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मानिया पाप मुआ बिख खाए प्रभाओ पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी तो चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप सहाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा महला पंजवा।

मिलत संग पयो मन निर्मल गुरपुर लखिन में तारे रहाओ सबकी रेन होए रहे मनवा सगले दिशे मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम त्याए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पारावारे तुमरी कृपा से गुण गावे नानक त्याय त्याय प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पंजवा तू बेअंत अविगत अगोचर एहो सब तेरा आकार क्या हम जंत करे चतुराई जा सब किछ तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार।

राम आधार अगद करे सास सास समारे ना पोहे अगनार पर कौन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी रिद अंतर।

कर्म कर्म जुगत बहुकर्ता करने हार न जाने उपदेश करे आप न कमावे तत् शब्द न पछाने नांगा आया नांगो जासी ज्यो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवं पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुर मिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद प्रम में सोई सगल जगत तंद अंद को जागे हर जन महामोहनी मगन प्रेह प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग

को किस पे करे पुकारा। निंदक की दत कत होना ही खसमे एवे पाना, जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुखमाना। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा मैला पंजवा बार तोए अंतर मन मैला, दोए ठौर अपने खोए इहां काम क्रोध मोह व्याप्या, आगे मुसमुस रोए गोविंद भजन की मत है होरा। गर्मी मारी सात न मरी नाम न सुने डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ गवाई भक्ति सार न जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा।

छुपाया, कूड कपट वंच निमुनिया दा, दिनस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले आसा मैला पंजवा। उद्यम करत हो वै मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वसगत राखे मन में एकंकारे, तेरा जन नृत्य करे गुण गावे, रबाब

राम नाम जप हृदय जापे मुक्ते सगल सुनावे कर संग साधु चरण पखारे संत तूर तन लावे मन तन अर्थ करे गुर आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पे खेलाए सरदा ताका जन्म मरण दुख पागे ऐसी नृत्य नरक निवारे नानक गुरुमुख जागे आसा मेला पंजवा।

रे आज के बस गुरकीनों के हर कुकर तिने लगाई रे रहाओ बाज फूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चुपी निर्नो पाया रे माल दुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया।

मन की और किसने आप सुनाये बिन नामे सब जग बोराया नाम मिले सुपाये क्या कहिए किस आप सुनाये जे कहना सो प्रभु जी पास सब किस की ता तेरा वरत है सदा सदा तेरी आस जे देह वड्याई ता तेरी वड्याई इत उत तुझे ते आओ नानक के प्रभु सदा।

मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मंथन मेरा ठार थियो राव तुमरी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिड़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे सहजे बिखिया पई थियो सुख निधान नाम प्रभु तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझ सतगुरु दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सुमानस देही पाई जित प्रभु अपने मेल लियो तन सुकल जुग साध संकीर्तन गाये नानक नाम अधा।

महाकोर ते बां पकड़ गुर काड लिए, निरपो पे सगल पो मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दास तेरी प्रव मेरे कारज सगल सवारे, गुण निधान साहिब मन मेला।

कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ न जाने मेरा पासा मेला पंजवा। कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म ना आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरोरे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ताके संग तरोरे। राव महा उद्यान पावक सागर भय, हर्ष सोग में बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना। तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पे जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राखनहार है, जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब कुमरा दाते, नानक सद कुर्बाने। आसा मेला पंजवा, मोह मलन नींद के छुट

काम क्रोध अहंकार गाखरो संयम कौन छुट्योरी सुर नर देव असुर त्रै घनिया सगलो पवन लुट्योरी दावा अग्न बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहोरी ऐसो समरथ वरण न सातो ताकि उपमा जात न कहोरी काजर कोट में पई न कारी निर्मल वरण बन्योरी महामंत्र गुर हृदय बस्यो अचरज नाम सुन्योरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई इको अंकार सतगुर प्रसाद राग आशा कर सतमा।

राला नानक जन गुरु पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया। आशा मेला पन्नवा पावत रलिया जो बन बलिया नाम बिना माटी संग रलिया कान कुंडलिया बस्तर ओढ़लिया सेज सुख लिया मन गर्बलिया रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर पगत बिना ले तरन गडलिया रूप सुंदरिया अनिक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया माया चलिया बिकार बिखलिया शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया। आसा मेला पंजवा एक बगीचा पेड़ कन करिया अमृत नाम कहा मैं फलिया ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाये पद निर्वाणी आस पास बिखुआ के कुंता बीच अमृत है पाई रे रहाओ सिंचन हारे एक कै माली खबर करत है पात पत डाली सगल बनस्पत आन जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास तरी।

जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अंकार, कर्म करत जी को जंजार, प्रभु कृपा से मन वस आया।

कहो नानक नित इवै त्याई गत होवै संतै लग पाई आसा मैला पंजवा उठत बैठत सोवत त्याये मार्ग चलत हरे हर गाये श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा दुख रोग सगले मन लखा राव कारज काम बाट काट जपी जय गुर प्रसाद हर अमृत पी जय दिन सरैन हर कीर्तन गाये सो जन जन की वाट न पाये आठ पहर जिस विसरे नाही गत होवे नानक तिस लग पाए आसा मैला पंजवा जा कै सिमरन सुख निवास पई कल्याण दुख होवत नास अनद करो प्रभ के गुण गावो सतगुर अपना सब सदा मनावो रहाओ सतगुर का सत शब्द कमावो फिर कर बैठे प्रभ अपना पावो पर का बुरा न राखो चीत तुमको दुख नहीं पाई मीत हर हर तंत मंत गुर दीना इन सुख नानक अंदिन चीना आसा मेला पंजवा जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत ओह चौकुंत माने दर्शन मांगो दे प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे राव जाके निकट न आवे कोई सगल सृष्ट हुआ के चरण मल धोई जो प्राणी काहू न आवत काम संत प्रसाद का को जपिए नाम साध संग मन सोवत जागे अब प्रभु नानक नीचे लागे आसा मेला पंजवा एको एकी नैन निहारो सदा सदा हर नाम समारो।

किलबिक बिनासे दुख दर्द दूर पै पुनीत संतन की तूर रहाओ। प्रभु के संत उदाहरण जोग इस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुरु दिया कृष्ण बुझी मन ने चलतिया नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरते पाए।

पै मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ। बिन सियो मन का मूर्ख टीठा, प्रभ का पावना लागा मीठा। गुर पूरे के चरण गए, कोट जन्म के पाप लहे, रतन जन्म इहु सफल भया। कहु नानक प्रभ करी मया।

संग चारे जागरे मन जागन हारे बिन हर अवर नाव सुकामा झूठा मोह मिथ्या पसारे राव गुर की बाणी स्यो रंग लाए गुर किरपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुर मंता। सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ परोए। कहो नानक तो।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परम बहु जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण ते आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभ शरण आये इहा सुख आगे गत पाए आसा मेला पंजवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे।

तू मेरी गत पथ तू परवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अन दिन जपो नाम गुण तास, नानक की प्रभु पै अरदास, आसा मैला तन्यवा। रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत दे गाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्ते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन

निसारे हो, खिसर गयो पूम पर डारे हो, साध मोहिला दी अंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे, नानक मेली सिरजन हारे, आशा मेला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे, उचित आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को, पहुँच न साके जन तेरे को, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जाए, केवल नाम हृदय में दी जाए, आशा मेला पंजवा, मन तृप्ता नो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद कली बनी, जा के गृह सब किछ है, पूरन सो पेटिया निरपै तनी रहाओ, नाम दृढ़ाया साध

तो जन पूरन रहे अधाई, कछु न थोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तनी अगम गुसाई, मानक की कहो केत चलाई, जाकी सेवा दस अस्त सिधाई, पलक दिष्टता की लागो पाई, जा

नानक नाही तिन कामी। आसा मैला पंजवा, जो मैं अपना सतगुरु त्याया तब मेरे मन महा सुख पाया, मिट गई गणित बिना।

तेरी देख चलत मन पै दिलासा, नानक दास तेरा परवासा। आसा महला पंजवा, अन दिन मूसा लाज पुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई, सोचत साचत रैन बिहानी, अनक रंग माया के चितवत, कबू न सिमरै सारंग पानी। रहाओ द्रुम की छाया नहीं चल ग्रे बांधिया, काल के फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सोथान मूड नहीं चल कर पाया। साध संग जप्यो हर राय, नानक जीवे हर गुण गाए। आसा मेला पंजवा, दो पुके नावा, उनके संग तू करती केल, उनके संग हम तुम संग मेल, उनके संग तुम सब को लोरे, उस बिना को मुख नहीं जोरे। ते बैरागी कहाँ समाए, तिस बिन तू ही दुहेरी री। रहाओ उनके संग तू गृह में माहर, उनके संग तू होई है जाहर, उनके संग तू रखी पलोल, उस बिना तू छुटकी रोल। उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साख जगत, उनके संग तेरी सब विथाटी, उस बिना तू होई है माटी। ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए, जोड़ बिछोड़े नानक छाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता।

कृष्णा जय ओ निर्मल ता हम जतना हम किछ नाही एक ओही आगे पाछे को सोई नानक गुरु खोए परम पंगा हम ओए मिल होए इकरंगा आसा महला पंजवा अनेक पांच कर सेवा करिए जियो प्राण तन आगे तरिए पानी पखा करो तज अभिमान अनेक बार जाइए कुर्बान सरई सुहागण जो प्रभु पाई तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ दासन दासी की पनिहार उनकी रेण बसे जी नाल माथे पाग तो पावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब ने मां कर्म कर्म अर्पो सब हो मां गर्भ मोह तज हो वो देन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही आराधो दिन सरेण ए सेवा साधो कहे कृपाल गोपाल गोविंद साध संग नानक।

जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट गृह बन बन।

अब मोर है मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आखा मैला पंजवा, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने, एक नाम संकन

प्रत पाले प्रभ आप कट कट सारी है, जिस मन उठा आप किस ना विसारी है, जो किस करे सो आप आपन पाणिया, भगता का सहाय जुग जुग जानिया, जप जप हर का नाम कदे न चूरी है, नानक दर्श किया।

पुरख विधाते हैं, बहुर बहुर जन्मा दे जो पयो कृपाल दीन दुख पंजन तो गुर मिल सब सुख लादे कहो नानक दिन।

मरण दुख लाथ रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, करी मोत रंग माने फिर बोर बोर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया तेरा सोदन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे।

कुटुंब बिखे रस्मा से मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक मानक गज मोतियन

चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाहे, नानक तप्त हरि मिले प्रेम प्री आशा मैला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ, ईते ऊते कट कट कट कट, तू ही मोहेना, कारण करना कारण करना, एक है सोहेना, संतन परसन बलिहारी दर्शन, नानक सुख सुख सोएना, आशा मैला पंजवा। हर हर नाम अमोला, ओ सहज सुहेला, रहाओ संग सहाई छोड़ न जाए, ओहो अगे अतोला, प्रीतम पाई बाप मोरो माई, भगतन का ओला, अलख लखाया गुरते पाया, नानक एहो हर का चोला, आसा मैला पंजवा। अपनी भगत निवाहे, ठाकुर आयो आहे, रहाओ नाम पदार्थ।

गुण रस रस गावे, एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे। आशा महला पंजवा, एक सिमर मन मानी रहाओ, नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही, प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये, सगले दुख जाही, जीवन को दाता पुरख विदाता, नानक कट कट आही। आशा महला पंजवा, हर बिसरत सो

प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संजम कर थाके, नानक साध शरण प्रभ संग वसे। आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। विकार माया माद सोयो, सूझ बूझ ना आवे,

पूरा निप्त बाजी हार मुका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह परया दीवान लेखे ना परया जिह कारज रह ओला सोए कामना करया ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीरत गाया मान तान तज

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभु गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरा।

ना रहाओ। टूटे अन परानहा रवयो सर्व थानहा लहो जम पयानहा पायो पेड़ थानहा तो चूकी सगल कान।

तिस निकट ना कदे दुख हा, जो हर हर जस सुने हा, सब को तिस मने हा, सफल सो आया हा, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला तन्यवा। मिल हर जस गाये हा, परम पद पाये हा, उआ रस जो बिदे हा, ताको सगल सिदे हा, अन दिन जा गया हा, नानक बढ़ पा गया।

किछ तिस सुजै हां पतित उधार ले हो हां नानक अरदास ते हो मेरे मना आसावरी मैला पन्यवा एक तुका।

उत्तर अवघट सर्वरनावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल सुनतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच

सुरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारसारा, तीर्थ मज्जन गुरु विचारा, अंतर

उजड़ पर मैं रहे न पाई, बिन बूझे को खाए न पाई, नाम बिहुने माथे छाई, साच तनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मुहे बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पे उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहया जाई, अकथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूजे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारन हारा।

जमन मरना हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवरना पाले हालत पलत निभी तुझ नाले सबद मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप।

जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरै अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जग उपजै बिन सह पत खोए, गुरमुख होवै बूझै सोए। महगो मोल पार अपार, अटल अछल।

जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना पारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरणा गुर बोहित शब्द पै तरना निरपौ आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सौ को कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म कर्म बहु संख असंख दिन पै भक्ति जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप सृष्ट उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पखे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक जन्म मरी जय गुरु प्रसाद।

शिव सहज कर गुर कर पार, आशा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कहे कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए।

साच अकूट पंच तीन नव चार सुमावे तरण गगन कल तार रहावे बाहर जातो उल्ट करावे मूर्ख हुए ना आखी सूजे जेवा रस नहीं कहया बूजे बिक्का माता जग सो लूजे उत्तम संगत उत्तम होवे गुण को पावे अवगण तोवे।

गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान, गुरमुख महली महल पछान, गुरमुख सुरत शब्द निशान, ऐसे प्रेम भगत विचारी गुरमुख साचा नाम।

न पावे बालक बिरद न सुरत प्राण पर जो बन बूढ़े अभिमान बिन नावे क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज न जाना परम फुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर पागे सतगुरु राखे सेवड़ पागे।

आवे मन झूठ अनीते, कहां चलो मन रहो करे, गुरुमुख राम नाम कृपा से खोजत पावो सहज हरे। रहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा, लग लोभ अहंकार सो पीरा, राम नाम बिन क्यों मन तीरा, अंतर नावन साच पछाणे, अंतर की गत गुरुमुख जाने, साच शब्द

मिले तह जाऊं। गुर प्रसादी कर्म कमाओ, नाम मेरा ताहर गुण गाओ, गुर सेवा से आप पछाता, अमृत नाम बसिया।

सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मनमुख मैला शब्द ना पछाने, गुरुमुख निर्मल नाम बखाने। हर जियो आ गए करी अरदास, साधु जन

को जाता, नानक राम नाम मन राता, आशा मेला पहला, मन में गल साकत देवाना, बन खंड माया मोहे हैराना, इत उपजाहे काल के चापे, गुरमुख खोज लह कर आपे, बिन गुर शब्द मन नहीं थोरा, सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो हो मैं कौरा, रहाओ यो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी, बिन समझे जम का दुख सहसी, आपे बख्शे सतगुरु मिले, काल कंटक मारे सच पीले, यो मन कर्मा यो मन तर्मा, यो मन पंच तत् ते जन्मा, साकत लोभी यो मन मूरा, गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा, गुरमुख मन अस्थाने सोई, गुरमुख त्रिभुवन सोजी होई, यो मन जोगी पोगी तप तापे, गुरमुख चीने हर प्रभ आपे, मन बैरागी हो मैं त्यागी, कट कट मन सा दुबदा लागी, राम रसायन गुरमुख चाखे, दर कर मैली हर पत राखे, यो मन राजा सूर संग्राम, यो मन निरपो गुरमुख नाम, मारे पंच अपने वश किए, हो मैं ग्रास इकत खाए किए, गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे, गुरमुख यो मन पगती जागे, अनहद सुन मानिया शब्द विचारी, आत्म चीन पय निरंकारी, यो मन निर्मल दर कर सोई, गुरमुख पगत पाओ तुम होई, एनस हर जस गुर प्रसाद, कट कट सो प्रभ

नानक हर जन के दासन दासा। आसा मैला पहला तन बिन से तन का को कही है, बिन गुरु राम नाम कत नहीं है, राम नाम तन संग सिखाई, एनस निर्मल हर लिवलाई, राम नाम बिन कवन हमारा, सुख दुख सम कर नाम न छोड़ो, आपे बस मिलावन हारा रहाओ, तनिक कामनी हेत गवारा, दुखदा लागे नाम विसारा, जिसको बसे नाम जपाए, दूत ना लाग सके गुण गाए, हर गुरुदाता राम गोपाला, ज्यों पावे त्यों राख दयाला, गुरमुख राम मेरे मन पाया, रोग मिटे दुख ठाक राया, अवर न औषध पंत न मंता, हर हर सिमरन किल विखानता, तू आप फुलावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा धार, रोग परम पेद मन दूजा, गुर बिन परम जपे जप दूजा, अमर पुरख गुर दर्शना देखे, बिन गुर शब्द जन्म के लेखे, देख अचरज रहे विस्माद, कट कट सुर नर सह समाद, पर पुर तार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही, जाके भगत हेत मुख नाम, संत भगत की संगत राम, बंधन तोरे सहज ध्यान, छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग, आसा महला पहला इक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने, राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म तर्म हो किया, बंधन पुत कलक

बंधन सा संचय तन जाए, बिन हर भगत न कभी थाए। बंधन वेद बाद अंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंध न पाए।

तिन गल सिलका पाया तुतन मोत्सरिया तन जोबन दोय वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पत गवाए जे तिस पावे।

कहां सो तेग बंद गाडे रड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, ऐठे दिसे नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थाक उठाते, जरवंड देवे पाई। राव कहां सो कर दर मंडप महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई। कहां सो पान तंगोली हरमा।

ओनी तुपक तावन चलाई ओनी हस चढ़ाई जिनकी चीरी दरगे पाटी तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी पटियाणी ठकुरानी इकना पेरण।

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई तंदा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो।

अंतर पंडित पांदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जाननी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा आप न चीने तामसी काहे पै उदासा एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे बिन गुर शब्द न छूट ही तम आवे जावे एक गिर ही सेवक साधका गुरमति लागे नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सो जागे गुर ते दर कर जानिए।

जय गुरमुख नाम त्याए मन मंदिर पी जय रहाओ कूड़ा लालच छोड़िए तो साच पछाणे गुर के शब्द समाये परमार्थ जाने यो मन राजा लोभिया लुभ तो लोभाई गुरमुख लोभ निवारिये हर्षो बनियाई कलर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पी जई कूड़ कूड़ गडावे लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसे हो मैं बिखमारी दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई मन मुख पत्थर से

हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है, लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है। आसा मेला पहला, क्या जंगल टूंडी जाए मैं कर बन हरियावला, सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानिए, गुर की कार कमाए महल पछाणिए, रहाओ आप मिलावे सच तामन पावई।

परखाए, गुरबिन किने न पायो केती कह कहाए, अनप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए, मन मुख जे समझाइए पी उजड़ जाए, बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए, जन्म मरे परमाइए हर नाम न लेवे, ताकी कीमत ना पवे बिन गुरु की सेवे,

मेरे छा तुर हाथ वड्याईया पाने पथ पाये साचो दूर न जानिए अंतर है सोई जह देखा तह रव रहे किन कीमत होई आप करे आपके हरे वेखे वड्याई गुरमुख हुए निहाल।

ले अग्न जलाई है। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फल अमृत होई। अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई, तिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदार जाई, औगुण आरे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मैला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया, लोकां दा क्या जाए जां कुद पाणिया। जो लग जियो प्राण सच दियाई है, लाहा हर गुण गाए मिले सुख पाए।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दर गए नाम हदूर गुरमुख जान सी, वेला सच परवान।

හරි ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरी खाने कर्म होवे ता परम पद पाये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब चेहरा क्या को करे प्राणे जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाने नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जाने जा तुद भावे ता गुरमुख बूझे।